0: जापान की प्रधानमंत्री सनाई तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्करे तैयबा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा लक्ष्य के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। इसके अनुसार दोनों देशों की समृद्धि, सुरक्षा और आर्थिक भविष्य आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के विधायी और संसदीय कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्यों के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में डिजिटल प्रयोग जैसे मुद्दे शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में विभिन्न राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह करेंगे। कार्यशाला में केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी उपस्थित रहेंगे। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सर्वोत्तम प्रथाएं साझा की जाएंगी और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो रही है। लाखों श्रद्धालु 57 दिन की यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। श्रद्धालुओं का पहला जत्था कल कड़ी सुरक्षा के बीच अनंतनाग जिले के नुनवान और गांदरबल जिले के बालतल आधार शिविर पहुंचा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोगों के मारे जाने और 90 लोगों के घायल होने की खबर है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। उधर सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के गृह मंत्रालय ने बताया कि ये कैफे राजधानी के हिजाज जिले में पैलेस ऑफ जस्टिस से 100 मीटर की दूरी पर है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी की है। और स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल रात स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल और क्रोएशिया के बीच जारी मैच के विजेता से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi and his Japanese

जनकपुर में अपने चारों पुत्रों के विवाह का शुभ कार्य संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ सभी सगे संबंधियों सहित अयोध्या लौटे। राजकुमारों की बारात की वापसी का समाचार पाकर अयोध्या में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। भेरी और शहनाई, नगाड़े और ढोल तथा शंख की मंगल ध्वनियां चारों दिशाओं में गूंजने लगीं। प्रसन्नता से झूमते नगर निवासियों ने घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों तथा नगर द्वारों को तोरण और ध्वज पताकाओं से सजाया। घर घर मंगल कलश सजाए गए। अयोध्या का ये सजा संवरा रूप देखकर ब्रह्मा आदि देवता भी सिहाते हैं। राजमहल की रचना कामदेव के मन को भी मोहित करने वाली है। सामूहिक उत्साह मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके राजा दशरथ के महल में सर्वत्र छा गया है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान, गायक कलाकार थी वाणी जयराम। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण, जगजीत सिंह के स्वर में।

अभी आपने सुना भक्ति संगीत का कार्यक्रम समर्पण। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ देर बाद यानी कि सुबह के 6:45 का समय होगा सुगम संगीत का। आप सुनेंगे रीना मिश्रा के स्वर में। सुबह के 7 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम जोहार चाईबासा का। सुबह 8 आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार सुबह के 8:15 पर। सुबह 8:30 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। सुबह के 8:40 का समय होगा लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत। सुबह के 9 का समय होगा कार्यक्रम विविधा का। सुबह 9:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सुबह 10 आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह के 10:30 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। प्रादेशिक समाचार का प्रसारण होगा दोपहर के 1:10 पर आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण होगा दोपहर के 1:20 पर। दोपहर के 2:55 का समय होगा प्रादेशिक समाचार का आकाशवाणी रांची से। दोपहर के 3 आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। शाम के 4 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का प्रसारण जारी रहेगा शाम के 4:02 पर। शाम के 5 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 5:02 का समय होगा कार्यक्रम विवरण का। शाम के 5:05 का समय होगा कार्यक्रम गुलदस्ता का, जिसमें आज आप सुनेंगे एक ही गीतकार के लिखे हुए गीत। किसान भाइयों को संबोधित कार्यक्रम खेती गृहस्थी आप सुनेंगे शाम के 5:30 पर, जिसमें चर्चा का विषय होगा कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां। उसके बाद आप सुनेंगे उड़िया लोकगीत। भेंटवार्ता सुनेंगे अल्प वर्षा में किए जाने वाली फसलों की खेती से लाभ। भेंटवार्ताकार होंगे देवेंद्र सोय और उनसे बातें करेंगे कमलेंदु महतो। कार्यक्रम के अंत में सुनेंगे कुरमाली लोकगीत संतोष महतो और साथी को। शाम के 6 आप सुनेंगे मुख्य समाचार आकाशवाणी रांची से। शाम के 6:02 का समय होगा क्षेत्रीय भाषा का कार्यक्रम हो अखड़ा। शाम के 6:30 का समय होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया। शाम के 7 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। आकाशवाणी रांची से सुनेंगे जिले में आजकल। शाम के 7:15 का समय होगा श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद। रात्रि के 8 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। समाचार संध्या का प्रसारण होगा रात्रि के 8:45 पर आकाशवाणी दिल्ली से। आकाशवाणी दिल्ली से सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार रात्रि के 9:00। रात्रि 9:15 का समय होगा आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम का। रात्रि के 10 आप सुनेंगे गजलों का कार्यक्रम महफिल। रात्रि के 10:30 का समय होगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरों के रंग। रात्रि के 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से। रात्रि के 11:05 का समय होगा अंग्रेजी में समाचार का आकाशवाणी दिल्ली से। और रात्रि के 11:10 पर हमारी आज की सभा संपन्न होगी। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी। और आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत रीना मिश्रा के स्वर में। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। आइए सुनते हैं अगला कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। पेश है कार्यक्रम जोहर चाईबासा। कार्यक्रम जोहर चाईबासा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म इजाजत के इस गीत से, आशा भोसले के स्वर में।

घरोंदा, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत रूना लैला और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म घर से, लता मंगेशकर के स्वर में।

अभी आपने सुना फिल्म गोलमाल का ये गीत किशोर कुमार के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी चायवासा से फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चायवासा। आइए अब सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
2: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
3: बोले सब ओड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे रखा गया। आम बोले रुड़ तबन में अल परिवार से मतलब पूरे ये ना
4: वरना मंगलोर आए को गांव बरगड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आउ का कहाँ बना है वो लोग आउ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम रे सुने पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
5: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे भक्त तो कहाँ तो घर आए में हमरे घर है बहुत दुख के बात है तो कम बात हो जाए है
6: मुतुम बुरन सिंह तमसोय अनिता तमसोय भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में ना आया यापा में रिया तपा में रिया वाह बेटा मिका
7: अन्य मुतुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्या हम दो कोदमरी कोड़ा उड़ो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा मैंने मैं पुरी उड़ी ने बागिया तो कि मैं दुना से यार की कोलो पुलिस कोलो मैं लड़ाई चलाओ तो मैं दूर रहने को यहाँ तब जाए तेरे काका गुंग हो उन्हें बुको को काका मेरे मिया
8: अलिंग मुनि सुरेन तो ऐसे आप ही लेते ना लिंग से जा हुरा रे मिना हीरो जिता हुरा रे मिना हीरो तो बुगिन हुरा ते ससन का है वो आगे बिता हुरा इनका अले आया न तुम तेरी ना मिला आप ही लेते ना।
2: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
9: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
10: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
9: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
10: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
9: डायल कीजिए 8700014242।
10: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: अभी आपने सुना यह जरूरी संदेश। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं अगला गीत फिल्म सिंदूर से लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म सौदागर का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में। कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म मजबूर का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में।

अभी आपने सुना फिल्म मजबूर का ये गीत मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम जौहर चायबाज़ा। ये आकाशवाणी का चायबाज़ा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8 बजने वाले हैं। आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

nas. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के दो मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री

0: श्री सनाया तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। इनमें पाकिस्तान से संचालित सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। नई दिल्ली में कल भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाया तकाईची ने पिछले वर्ष 10 नवंबर को दिल्ली में हुई आतंकी घटना की भी कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने इस निंदनीय कृत्य के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के सजा दिलाने का आह्वान किया। श्री मोदी और सुश्री तकाईची ने अलकायदा, जैश ए मोहम्मद सहित संयुक्त राष्ट्र में सूचीबद्ध सभी आतंकी समूहों तथा संस्थाओं के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुगम और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए समान विचारधारा वाले देशों के बीच सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराया। दोनों नेताओं ने क्वाड ढांचे के अंतर्गत व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुगमता मजबूत करने के लिए आसियान सदस्य देशों के साथ सहयोग के महत्व का भी उल्लेख किया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत और जापान ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के रूप में आर्थिक सुरक्षा के महत्व का उल्लेख किया है। आर्थिक सुरक्षा सहयोग पर भारत जापान संयुक्त घोषणा पत्र में कहा गया है कि आर्थिक सुरक्षा साझेदारी आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और आपसी हितों पर आधारित है। दोनों देश 5 प्रमुख क्षेत्रों, सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा औषधि में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करेंगे। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में उनके परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा है। आयोग ने कहा है कि उसने संबंध में दोनों गुटों के दावों और प्रतिदावों पर ममता बनर्जी और पार्टी नेता रणब्रत बनर्जी को अलग अलग पत्र लिखे हैं। आयोग ने यह भी कहा कि दोनों पक्षों को सोमवार शाम 5:30 बजे तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। ये घटनाक्रम तृणमूल कांग्रेस के अंदर पार्टी के संगठन की संरचना और पार्टी की ओर से कार्य करने के अधिकार को लेकर चल रहे विवाद के बीच आया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित सदस्यों को संसदीय और विधायी कार्य के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना है। इनमें समिति प्रणाली, वित्तीय निगरानी, संसदीय विशेषाधिकार और विधानसभाओं में उभरती डिजिटल पहल शामिल है। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। विचार विमर्श से केंद्र राज्य सहयोग को सुदृढ़ करने और 2047 तक विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के अनुरूप पंचायतों को बेहतर शासन, बुनियादी सुविधाओं, सार्वजनिक सेवाओं और समावेशी ग्रामीण विकास प्रदान करने के लिए सशक्त बनाने का मजबूत ढांचा विकसित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर का दर्शन करेंगे। ये यात्रा 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी।
4: बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज सुबह पवित्र गुफा की तरफ रवाना हो गया। अगले 57 दिनों की इस यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु नुनवन, पहलगाम और बालतल रास्तों से होते हुए बाबा बर्फानी के यहां अपनी हाजिरी देंगे। दोनों रास्तों पर अधिकारियों ने मेडिकल कैंप, आराम करने की जगहें, लंगर, पीने के पानी की सुविधा और मौसम की पल पल की जानकारी रखने जैसे व्यापक इंतजाम किए हैं। यात्रा को सुरक्षित रूप से पूरा करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस बीच यात्रियों का दूसरा जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलकर घाटी की तरफ रवाना हो गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
3: ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई अपने पिता और पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में सुरक्षा कारणों से शामिल नहीं होंगे। भारत में ईरान के प्रतिनिधि आयतुल्ला हकीम इलाही ने बताया कि धमकियों और निगरानी जोखिमों के कारण मुज्तबा खामनेई का सार्वजनिक रूप से सामने आना सुरक्षित नहीं है। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम 4 से 9 जुलाई तक ईरान और इराक में होगा। बिहार के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरिटा कल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इस पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि समारोह में इन दोनों भारतीय प्रतिनिधियों की उच्च स्तरीय उपस्थिति दोनों देशों के बीच सभ्यता से जुड़े संबंधों के महत्व का परिचायक है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के ड्रोन और मिसाइल हमलों में 27 लोग मारे गए और 90 लोग घायल हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार रात को हुई ये बमबारी यूक्रेन की ओर से रूस में नागरिक ठिकानों पर किए गए लंबी दूरी के हमलों के जवाब में थी। रूस पर किए जा रहे लगातार हमलों को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने 40 दिनों का ताबड़तोड़ हमला बताया है। सीरिया में कल राजधानी दमिश्क के एक कैफे में हुए विस्फोट में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई। सीरिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस घटना में 20 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल किसी भी गुट ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। सुरक्षा बलों ने हमले की जांच के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी है। दमिश्क के गवर्नर माहिर मारवान इदलिबी ने कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
5: स्पेन और पुर्तगाल फीफा फुटबॉल विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुर्तगाल ने आज क्रोएशिया को 2-1 से हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। इससे पहले स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर अंतिम 16 में जगह पक्की की। मंगलवार को डलास में प्री क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना पुर्तगाल से होगा। इससे पहले फ्रांस, नॉर्वे, कनाडा, मोरक्को, ब्राजील, पैराग्वे, बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी अंतिम 16 में पहुंच चुके हैं। प्री क्वार्टर फाइनल में सोमवार को इंग्लैंड का सामना मैक्सिको से होगा। अमरीका मंगलवार को बेल्जियम के साथ खेलेगा। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच 2 मैच की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। यह श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गोल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो में खेला जाएगा। यह श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है। उधर इंग्लैंड ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। लंदन में कल दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 40 रन से हरा दिया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने पहले सेमीफाइनल में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। रविवार को लंदन के लॉर्ड्स में फाइनल में इंग्लैंड का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: और खेल खबरों के बाद एक दुखद घटना। आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले में आज सुबह कंभम के पास एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। ये दुर्घटना खाद से लदे एक ट्रक के ऑटो रिक्शा को टक्कर मारने से हुई। घायलों को गिदलूर और कुंभम के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जाँच शुरू कर दी है। बात मौसम की। उत्तराखंड में मॉनसून पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग ने आज कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। नैनीताल और बागेश्वर जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग में भी कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने संवेदनशील क्षेत्रों को लोगों को सतर्क रहने और यात्रा करते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। दक्षिण पश्चिम

0: मानसून दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, केरल, माहे, उत्तराखंड और विदर्भ में मूसलाधार बारिश हो सकती है। दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना है। राजधानी में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास से रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। भारत और जापान के बीच कई महत्वपूर्ण समझौते होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, भारत और जापान मिलकर बनाएंगे सैन्य साजो सामान, मोदी और तकाईची में शिखर वार्ता। अमर उजाला ने जापान की प्रधानमंत्री के संतूर पर हाथ आजमाने का चित्र दिया है। पत्र लिखता है, संतूर बजाकर चौंकाया, पीएम मोदी समेत कई लोग हैरान। सुप्रीम कोर्ट द्वारा एआई से बने फर्जी फैसलों की कानूनी मिसालें देने पर सख्त रुख अपनाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने दिया है। दैनिक जागरण लिखता है, एआई से लिखे गए फर्जी फैसले जहरीली गैस जैसे, अदालत ने कहा फैसलों के प्रति जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। नीट जेईई में निर्णायक हो सकते हैं 12वीं के अंक, नीट पुनर्परीक्षा के नतीजे 20 जुलाई को, हिंदुस्तान की सुर्खी है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फिर राम मंदिर परिसर पहुंची एसआईटी, रडार पर हैं 100 लोग, ट्रस्टी से पूछताछ, नवभारत टाइम्स की खबर है। शेयर बाजार में निवेशकों पर 3 लाख करोड़ की बारिश, सेंसेक्स में 579 अंकों का उछाल, लोकसत्य की खबर है। अमीर युवाओं की पसंद बदली, 40% से ज्यादा भारतीय छुट्टियां मनाने के लिए अब कोरिया, मिस्र, जापान, मालदीव जैसे नए देश जा रहे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पत्र लिखता है, ट्रेवल इंश्योरेंस लेने वाले हर साल 10% बढ़ रहे। खामेनेई के अंतिम संस्कार यात्रा से पहले हवाई निगरानी हुई कड़ी, कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 करोड़ लोग जुड़ सकते हैं, राजस्थान पत्रिका की खबर है। कई समाचार पत्रों ने देश भर के कई राज्यों में हो रही बारिश का चित्र दिया है। देश बंधु की सुर्खी है, दिल्ली में मानसून ने दी दस्तक, लोगों को तेज धूप और गर्मी से मिली राहत, राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, राजस्थान और दिल्ली पहुंचा मानसून, 2 दिन अति बारिश का अलर्ट। हिंदुस्तान ने संपादकीय पन्ने पर भारत जापान के सभ्यतागत संबंध पर लेख प्रकाशित किया है, शीर्षक है, भारत जापान रिश्तों में नई गर्मजोशी।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस के प्रतिद्वंद्वी गुटों से पार्टी संगठन के चुनावों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के संबंध में परस्पर विरोधी दावों पर जवाब मांगा। जम्मू कश्मीर में पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा शुरू। ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामनेई सुरक्षा कारणों से अपने पिता अली खामनेई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होंगे। पुर्तगाल और स्पेन ने फीफा विश्व कप के अंतिम 16 में जगह बनाई और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका के खिलाफ भारत के 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला का कार्यक्रम घोषित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज जापानीज काउंटरपार्ट सनाए तकाईची स्ट्रांगली कंडेम टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन ऑल हिज फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशंस। Election Commission seeks responses from rival factions of Trinamool Congress regarding competing claims about parties' organizational elections and authorized signatories. Annual Sri Amarnath Yatra begins from both Pehelgam and Baltal routes in Jammu and Kashmir. Iran Supreme Leader Mojtaba Khamenei to skip father Ali Khamenei's funeral over security fears. Spain beat Austria 3-0 to enter round of 16 at FIFA World Cup. And BCCI announced a schedule for India's two-match test series against Sri Lanka to be played from the 15th to the 27th of next month. Prime Minister Narendra Modi and his Japanese counterpart Sanae Takaichi have unequivocally and strongly condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism from Pakistan. The 16th India-Japan Annual Summit joint statement said both leaders condemned in the strongest terms the terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir on the 22nd of April last year. The leaders also took note of the United Nations Security Council monitoring team report of 29 July 2025 mentioning the resistance front. We have a report.
3: Prime Minister Narendra Modi and Japanese Prime Minister Sanae Takaichi also strongly condemned the terrorist attack in Delhi on November last year. The two leaders called for the perpetrators, organizers and financiers of the reprehensible act to be brought to justice without delay. They also called for concerted action against all UN-listed terrorist groups and entities including Al-Qaeda, ISIS, Lashkar-e-Tayyaba, Jaish-e-Mohammed and their proxies. The two Prime Ministers stressed the need for resolute action to eliminate terrorist safe havens, dismantle terrorist financing networks and their nexus with transnational crime and halt the cross-border movement of terrorists. Towards the shared goal of a resilient and prosperous Indo-Pacific, the two prime ministers reiterated their commitment to advancing cooperation among like-minded countries. They welcomed the steady progress under the Quad framework and reaffirmed their commitment to enhancing practical cooperation. Saklan Akhtar for Akashwani News, Delhi.
2: India and Japan have reaffirmed the shared commitment to the salience of economic security as one of the foundational pillars of the India-Japan Special Strategic and Global Partnership. The India-Japan Joint Declaration on Economic Security Cooperation said the economic security partnership is underpinned by mutual trust, shared values and aligned interest, and is a recognition that the prosperity, security and economic futures of the two sides are deeply intertwined. It added that this declaration is a recognition that the synergy between the updated free and open Indo-Pacific and the mutual and holistic advancement for security and growth across regions, Mahasagar Initiative, provides both sides with the required impetus to furthering economic security cooperation. Election Commission of India, ECI, has sought responses from rival factions of All India Trinamool Congress, AITC, regarding competing claims about the party's organizational elections and authorized signatories. We have a report.
4: The Election Commission said in a statement that it has written separate letters to Mamata Banerjee and party leader Ritobroto Banerjee regarding the claims and counterclaims by both factions with respect to organizational elections and authorized signatories of the AITC. The Commission said both sides have been directed to submit their responses by 5:30 p.m. on Monday. The development comes amid a dispute within the Trinamool Congress over the party's organizational structure and the authority to act on its behalf before the Election Commission. Such disputes are governed by the Election Symbols Reservation and Allotment Order, under which the Commission examines rival claims, supporting documents and submissions from the contending factions before taking a decision where necessary. The ECI has not expressed any view on the merits of the rival claims and has sought written responses from both factions before proceeding further in the matter. Chirag Jha, Akashwani News, Delhi.
2: Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei will not attend the funeral of his father, former Supreme Leader Ali Khamenei, due to security concerns. According to the current leader's representative in India, Ayatollah Hakim Ilahi, threats and surveillance risks made it unsafe for the leader to appear in public. Early on Wednesday, Iran's Foreign Minister Sayyed Abbas Araghchi issued a sharp warning to the United States. In a social media post, Araghchi urged President Donald Trump to restrain its close ally Israel from threatening Iran after Israeli Defense Minister Israel Katz said that Iran's Supreme Leader Mojtaba Khamenei was marked for death. He said any threat against Iran's leadership would receive a strong response. Iran is scheduled to hold funeral ceremonies for former Supreme Leader Ali Khamenei from July 4th to July 9th in Iran and Iraq. Governor of Bihar, Lieutenant General retired Syed Atta Hasnain and Minister of State for External Affairs Pavitra Margarita will visit Iran today to attend the funeral ceremony of late Supreme Leader of Iran Grand Ayatollah Syed Ali Khamenei. Minister of External Affairs said The high-level representation in the ceremony underscores the importance of civilizational ties, including people-to-people connection within the two countries, providing a robust

0: झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि 12 से कम पंचायतों वाले प्रखंडों और अंचलों में एक ही पदाधिकारी बीडीओ या सीओ के रूप में कार्य करेंगे, जबकि 12 से अधिक पंचायतों वाले प्रखंडों में दोनों पद यथावत रहेंगे। बैठक में कुल 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी मतदाताओं से विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की।
1: हम लोगों ने उसके नीतिगत रूप से सहमति भी दे दिया, स्पेशल प्रोविजन भी हम लोगों ने उसमें डालने का सहमति दिया। आप लोगों से तफसीला गए, अब तैयारी चल रही है। समय आने पर मैंने भी फॉर्म भरा। चुनाव आयोग पूरे देश के कई राज्यों में एसआईआर का काम आरंभ, और मैं भी आपको के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि सभी लोग इसका इकरार बने और एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें।
0: झारखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में लगे करीब 50,000 कर्मियों और पदाधिकारियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। आयोग ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया है कि 7 अक्टूबर तक एसआईआर कार्य में लगे किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का तबादला आयोग की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों और हेल्प डेस्क मैनेजरों के साथ मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मिल रही शिकायतों के निवारण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बीएलओ घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी मतदाता को फॉर्म भरने या एसआईआर से जुड़ी कोई समस्या है तो वे टोल फ्री नंबर 1950 या बुक अ कॉल के जरिए संपर्क करें। मतदाता अपने बीएलओ से एसआईआर स्टिकर पर दिए गए नंबर, ईसीआई नेट ऐप पर बुक अ कॉल और कनेक्ट विद इलेक्शन ऑफिशियल्स फीचर टोल फ्री नंबर 1950 या सिटीजन सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। रांची के कांके में कांग्रेस की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान को लेकर बैठक हुई। इसमें झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू ने बीएलओ के साथ अभियान की समीक्षा की। मौके पर राजू ने कार्यकर्ताओं से मतदाताओं को जागरूक कर विशेष पुनरीक्षण अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
2: कांग्रेस पार्टी हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में, हर एक बूथ में वो एसआईआर प्रोसेस में बहुत अच्छी तरफ तैयार हुआ। लास्ट 6 महीने में ये प्रक्रिया के बारे में हम हर एक जिले में, हर एक ब्लॉक में बहुत अच्छी तरफ ट्रेनिंग दिया।
0: झारखंड हाई कोर्ट ने पेंशन लाभ से जुड़े एक मामले में कहा है कि एडहॉक आधार पर लंबे समय तक कार्य करने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन के हकदार हो सकते हैं। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया कि दशकों तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को केवल अस्थायी होने के आधार पर पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों तथा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों के आधार पर यह फैसला सुनाया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में अमोनिया गैस रिसाव हादसे से रेस्क्यू किए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने अपने घर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रम विभाग और राज्य प्रवासी श्रमिक नियंत्रण कक्ष ने विशेष राहत अभियान चलाकर श्रमिकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की, जबकि मृतका का पार्थिव शरीर भी सम्मानपूर्वक उसके गृह जिला पहुंचाया गया। सुरक्षित घर लौटने पर श्रमिकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। झारखंड सरकार आगामी 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन आयोजित करेगी, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन के क्षेत्र में संभावनाओं पर फोकस होगा। सचिव आईटी पूजा सिंघल और सचिव उद्योग अरवा राजकमल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। दो दिवसीय आयोजन के दौरान झारखंड एआई पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी, जीआरडी रेगुलेशन और पीपीपी पॉलिसी समेत कई नीतियों के ड्राफ्ट जारी किए जाएंगे और विभिन्न एमओयू पर हस्ताक्षर और डिजिटल पोर्टल्स की लॉन्चिंग होगी। गुमला सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर को नई अनुज्ञप्ति मिल गई है। जिले के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने इसे जिले की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि करीब 6-7 महीने के प्रयास के बाद लाइसेंस मिलने से अब जिले में रक्त उपलब्धता की समस्या दूर होगी।
3: सदर हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर पूर्व में वर्ष 2018 से चल रहे थे, वो 2022 में इसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होने के कारण समाप्त हो गई थी। ब्लड सेंटर तो चल रहा था लेकिन अनुपति नहीं थी, जो बंद होने के उपरांत हमारे जिला में ब्लड को लेकर काफी परेशानी होने लगी।
0: रांची में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने कल रात कई बार और पब में संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया कि अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इन स्थानों पर नाबालिगों का प्रवेश न हो और किसी भी तरह की अवैध या आपराधिक गतिविधियां न होने पाए।
4: स्पेशली जो अंडर एज ड्रिंकिंग है, कोई भी बच्चा अगर 21 साल से कम का है तो उसे किसी भी शॉप में या फिर वहाँ पे, चाहे वो सिगरेट हो या फिर लिकर हो, सब नहीं होना चाहिए। तो हमारा प्रयास यही है क्योंकि जैसे ही वो व्यक्ति सेवन करता है तो और रोड पे निकलता है, बाइक को चलाता है, उस टाइम पे एक्सीडेंट होने की भी चांसेस रहती है। तो एक लूप है, उसमें एक बच्चा कुछ भी गलत काम करता है तो उसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। तो इसी प्रकार से हमारा दायित्व बनता है कि उनसे इन सब चीजों में ना पड़ने दिया जाए और उनकी मदद की जाए इस तरह से।
0: झारखंड में मॉनसून सक्रिय होने से बारिश की रफ्तार तेज हो गई है। पिछले 3 दिनों में राज्य में औसतन 40 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई, जिससे बारिश की कमी घटकर 61% से 46% रह गई है। मौसम विभाग ने आज रांची समेत कई जिलों में बारिश तथा अगले 2 दिनों के लिए तेज हवा और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अखबारों की सुर्खियां, रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने राज्य मंत्री परिषद की बैठक की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर लिखता है, रिम्स 2 2 चरणों में होगा विकसित, 2800 बेड का होगा अस्पताल। प्रभात खबर की सुर्खी है, जमशेदपुर में हुए हिमांशु हत्याकांड के विरोध में आज भाजपा ने बुलाया बंद। हिन्दुस्तान के शब्द है, रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमले मामले में 2 आरोपी एनआईए की रिमांड पर। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य पुलिस सेवा के 12 अधिकारियों को आईपीएस में प्रोन्नति पर चल रहा है विचार। और अब अंत में मुख्य समाचार, झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव, छोटे प्रखंडों और अंचलों में अब एक ही पदाधिकारी संभालेंगे जिम्मेदारी, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिली मंजूरी। झारखंड में एसआईआर अभियान के दौरान 50,000 कर्मियों के तबादले पर निर्वाचन आयोग ने लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लंबे समय तक काम करने वाले अस्थायी कर्मचारियों को भी मिल सकता है पेंशन का लाभ। तमिलनाडु गैस रिसाव हादसे से बचाए गए झारखंड के सभी 42 प्रवासी श्रमिक सुरक्षित अपने घर पहुंचे, श्रमिकों ने राज्य सरकार के प्रति जताया आभार। और झारखंड में मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार, मौसम विभाग ने रांची समेत कई जिलों में बारिश और अगले 2 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आप सुनेंगे कुरमाली लोकगीत, कलाकार हैं विकास महतो और साथी।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत का कार्यक्रम माटी की महक। आज आपने सुना कुरमाली लोकगीत कलाकार थे विकास महतो और साथी श्रोताओं। आइए अब हम सुनते हैं कार्यक्रम विविधा।

0: कार्यक्रम विविधा सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को पूनम का नमस्कार। श्रोताओं कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है 3 जुलाई। जी हाँ श्रोताओं, 3 जुलाई को विश्व स्तर पर मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग और इसके पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। इसके अलावा दुनिया भर में 3 जुलाई को कुछ अन्य जुड़े प्रमुख दिवस भी मनाए जाते हैं, जैसे भारतीय ईसाई दिवस, बेलारूस स्वतंत्रता दिवस, संत थॉमस दिवस। श्रोताओं बातें हम आपसे और भी करेंगे, लेकिन सुनते हैं भेंटवार्ता, पर्यावरण और हमारी जिंदगी। भेंटवार्ताकार हैं प्रेम सिंह डांगिल, उनसे बातें कर रही हैं आशा पिंगवा।
1: सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए।
2: हाँ जोहार मैम।
1: जोहार।
2: मेरा नाम प्रेम सिंह डांगिल है और मैं चक्रधरपुर का रहने वाला हूँ। वर्तमान हम कोलान नितिर तुर्तुंग के महासचिव हैं। बस हमसे परिचय हुआ।
1: और आप कब से जॉब में हैं?
2: जी मैं 2008 से जॉब में हूँ। जी जी।
1: और तो आपको तो पता ही होगा जब आप यहाँ रहते हैं झारखंड में।
2: जी जी जी।
1: बखूबी जानते हैं यहाँ के पर्यावरण की स्थिति के बारे में।
2: जी बिल्कुल
1: जी।
2: अच्छे तरह से बखूबी जानते हैं और इसके बारे में आज जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उनसे भी हम वाकिफ हैं।
1: जी हाँ
2: जी।
1: तो प्रेम से जी ये बताइए कि 5 जून को तो हम आज 5 जून है तो हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो
2: जी,
1: हमारे
2: जी।
1: श्रोताओं को बताइए कि ये पर्यावरण क्या है।
2: पर्यावरण एक तरह से देखा जाए, अगर विज्ञान की भाषा में कहा जाए तो दो शब्द को मिलकर के बनाया गया है, परि और आवरण को लेकर के। तो हम उसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर जो एक आवरण है, एक घेरा है, जिसमें हम जो 63 करोड़ जो जीव जंतु रहते हैं, जिसमें सूक्ष्म पेड़ पौधों से लेकर के हर चीज जो है जो रहते हैं, उससे एक एक परिवार ही समझिए, एक परिवार है, पृथ्वी का एक परिवार है। जो उसको साधारण भाषा में हम कहें तो उसको एक प्रकृतिक हम बोलते हैं, प्रकृति या प्रकृतिक हम कहते हैं। जी जी।
1: तो ऐसे तो बहुत सालों से हम पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, तो हमें ये बताइए कि उसका उद्देश्य क्या है।
2: उद्देश्य खास उद्देश्य यह है कि हम भावी पीढ़ी को बचाने के लिए भावी पीढ़ी को एक समर्पित रूप से उसको जीवन सुरक्षित करने के लिए पर्यावरण का बहुत होना बहुत आवश्यक है। खास करके आप देखेंगे कि जीवन का आधार ही जल, जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ और वायु से जुड़ा हुआ है। तो अगर ये सब अगर नहीं रहेंगे, आने वाले पीढ़ी को अगर हम नहीं सौंपेंगे तो बाकी चीज उन चीजों के तुलना में नगण्य साबित होगी। इसलिए ये सबसे मूल्यवान और ये एक जागरूकता के माध्यम से ही ये जो है सवारा जा सकता है, और ये जो है यह व्यक्तिगत नहीं है, एक सामूहिक प्रयास के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसलिए हर साल ये एक जागरूकता फैलाई जाती है और लोगों को अवेयरनेस दिया जाता है कि हम पर्यावरण के प्रति सचेत हो, और इसको हम सभी की जिम्मेदारी है, यह व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक है। जी जी।
1: सभी को जरूरत है शुद्ध पर्यावरण।
2: जी जी जी।
1: क्योंकि ये सिर्फ जागरूक करना ही नहीं है, सिर्फ एक दिन का समय नहीं है कि हम एक ही दिन इसे मनाएं, ये हम सुबह से ही इसे महसूस करते हैं शुद्ध पर्यावरण की।
2: जी जी जी।
1: है कि नहीं? तो हमारे युवा पीढ़ी को तो आगे आना ही चाहिए, और हमें हमें चाहिए कि जो बच्चे हैं उन्हें भी इन्हें समझाना चाहिए कि पेड़ हमारे लिए कितना जरूरी है,
2: और खास करके एक एक कल्चर डेवलप होना चाहिए। जैसे कि विशेष मौकों पर आप देखे होंगे कि हम गिफ्ट डोनेट करते हैं या कुछ दान देते हैं, तो हम उसका स्वरूप बदलना चाहिए मेरे ख्याल से।
1: जी
2: कि हम उसके जगहों पर कोई पौधे रोपें, ये चलन शुरू होना चाहिए हर किसी में। जैसे कि आप जन्मदिन मना रहे हैं या किसी
1: बिल्कुल
2: खास मौके को आप याद करना चाहते हैं, तो उस मौकों पर किसी खास जगह में कुछ पेड़ ही रोपे। हर साल अगर हम 10 पेड़ रोपते हैं किसी खास मौके में, तो ये एक विशाल रूप ले लेगा। और एक बड़ा जंगल हम नहीं कह सकते, लेकिन छोटा अपना प्रयास हम कर सकते हैं।
1: जी हाँ, अपने जो मोहल्ले हैं वहाँ के, जहाँ रोड किनारे तो प्रायः खाली जमीन पड़ा रहता है, अपने घर के आसपास भी पेड़ रहते हैं, घर के आसपास तो हम फलों के वृक्ष भी लगा सकते हैं और अच्छे अच्छे
2: बिल्कुल
1: बड़े वृक्ष रोड के किनारे लगा सकते हैं, जिससे हमें शुद्ध पर्यावरण मिलता रहे।
2: बिल्कुल, और खास करके पेड़ों से आप सभी को, हम सभी को जानकारी हो कि
1: जी हाँ
2: जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे एक ठंडी महसूस होती है। हम सभी भी चाहते हैं कि पेड़ की छाओं में हम सभी रहें। तो ये पेड़ छाव एक तरह से देखा जाए तो हमें जो है एक सुहाना हवा भी देती है, साथ साथ में हमारे जो है एक छायादार उपलब्ध कराती है। तो
1: जी हाँ
2: अब पिछला सालों से आपने देखा होगा कि ये जो है विश्व संगठन ने एक एक ये रिपोर्ट जारी किया था कि 2015 से लेकर 2024 तक ये दशक जो है सबसे गर्म रहा है,
1: जी हाँ
2: और 2024 को घोषित किया था कि ये सबसे गर्म वर्ष रहा है। तो

0: कहीं ना कहीं जो है जिस दर से जो है जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जो है ना उद्योग धंधे जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं,
1: जी हाँ, और पेड़
0: तो
1: भी कट रहे हैं।
0: पेड़ भी कट रहे हैं, तो उनकी तुलना में जिस अनुपात में जो पेड़ कट रहे हैं उनकी तुलना में जो है पेड़ का जो है वृक्षारोपण नहीं हो पा रहा है।
1: जी हाँ,
0: तो ये जो है जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वैश्विक स्तर पर जो इसका एक बुरा असर पड़ सकता है,
1: जी
0: तो
1: हाँ,
0: इसके लेकर वैश्विक तापमान वृद्धि ना हो इसका इसके लेकर के एक विशेष कार्यक्रम आयोजित की जा रही, खास करके प्लास्टिक को उस पॉल्यूशन को खत्म करने के लेकर के विशेष जागरूकता फैलाई जा रही
1: जी हाँ,
0: है। जैसे 2000 ये जो अभी 25 का जो है थीम है बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को हर हाल में हराना है। तो ये जो है जो वैश्विक तापमान वृद्धि का जो है इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अगर इससे जुड़ा हुआ कई कई जैसे आर्थिक आर्थिक सामाजिक ये सारा चीज इसमें जो है परेशानी आ सकती है।
1: जी
0: जैसे
1: हाँ,
0: कि वैश्विक तापमान वृद्धि होगा तो जो है समुद्र जल में वृद्धि होगा या तो बाढ़ आएगी, तो इससे क्या होगा कि सामाजिक आर्थिक और जो है हर क्षेत्र में इसका प्रभाव पड़ेगा
1: जी हाँ,
0: जो एक दूसरे से लिंक है। जैसे हम झारखंड में खास करके है ना तीन चीजों का नाम दिया जाता है, जल जंगल जमीन,
1: जी हाँ,
0: ये अगर तीनों किसी कारण से उसका दुरुपयोग या अंधाधुंध दोहन होता है किसी ना किसी कारण से,
1: जी हाँ,
0: तो इसका प्रभाव केवल एक व्यक्ति पर नहीं पड़ता पूरे समूचे समाज पर पड़ता है, सभी समस्त जनजीवन पर इसका प्रभाव पड़ने लगता है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि हम सभी को जानकारी होगा कि हम शुद्ध पानी है ना, शुद्ध पानी का भी दिक्कत होने लगती है, और खास करके आप देखेंगे कि जंगल से ही जुड़ी हुई है ना बहुत सारी समस्याएं शुरू होने लगती है। जैसे कि कृषि योग्य आप देखे होंगे कि अब जो है तापमान वृद्धि होने से जो है कृषि योग्य भूमि की बंजर होने के कगार पर प्लास्टिक वगैरह है, मिट्टी का कटाव होने लगा है,
1: जी हाँ,
0: तो ये अन्न का उत्पादन जो है धीरे धीरे अब जो है कम होने लगा है। तो आने वाला समय में ऐसा स्थिति ना हो कि हम जो है खाद्य संकट से गुजरे, तो उस स्थिति को आने ना दे इसके लिए हम सभी को अभी से ही तैयार होना पड़ेगा।
1: जी हाँ, और खासकर जो है अपने जो जंगल है उसे
0: जी जी
1: बचाना होगा। अगर जंगल नहीं है, पेड़ नहीं है, तो बारिश भी नहीं होगी
0: जी बिल्कुल
1: और हमारा जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो जाएगा। बारिश नहीं होगी तो हमारी जमीन खाली बंजर रह जाएगी,
0: जी
1: खेती
0: जी जी
1: नहीं होगी,
0: जी
1: जिसका
0: जी जी
1: हमारी जिंदगी पर बहुत बुरा असर होगा।
0: जी जी जी
1: आप क्या कहते हैं?
0: बिल्कुल है ना, हमारे जनजीवन पर एक व्यापक असर पड़ेगा और सभी को हम भोजन नहीं खिला पाएंगे, जिससे क्या होगा कि अगर भोजन ना मिले तो इससे जो है बहुत गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी हम सभी के लिए।
1: जी हाँ,
0: और इसके लिए जो है खास करके जो है पेड़ों पर हम आधारित है, पेड़ जंगल इस पर ही आधारित है,
1: जी हाँ,
0: पेड़ है तो जीवन है ना,
1: जी
0: फसल
1: हाँ,
0: है, जंगल है, जमीन है, सारा चीज है, तो
1: जी हाँ,
0: इसीलिए पर्यावरण को केवल एक दिवस के रूप में नहीं मनाया जाना चाहिए, एक त्योहार है ना, हर दिन जो है उसके महसूस किया
1: दोबारा,
0: जाना चाहिए इसकी जरूरत को,
1: जी हाँ,
0: और खास करके इन समस्याओं के प्रति जो है कि आने वाली विकराल समस्याओं को लेकर के हम सभी को सचेत होना पड़ेगा।
1: जी हाँ,
0: और खास करके आप देखे होंगे कि अभी जो है धीरे धीरे जो है जंगल खत्म होने की वजह से हम जो है अब खास करके झारखंड हो या
1: हाँ,
0: भारत में भी हम ज्यादातर भूमिगत जल पर आधारित है, हमारा कृषि भी भूमिगत जल पर आधारित है और खास करके हम पीने का पानी भी भूमिगत जल पर आधारित है। तो ये जो है धीरे धीरे क्या है बारिश कम होने की वजह से और बारिश होने के बाद में बारिश के पानी को जो है उसको संरक्षित नहीं करने के वजह से क्या हो रहा है कि भूमिगत जल धीरे धीरे कुछ कमी हुई है।
1: हाँ, जी
0: तो ये अगर भूमिगत जल खत्म हो जाएगी तो हमारे लिए बहुत समस्या उत्पन्न हो जाएगी।
1: जी हाँ,
0: तो ये जो है भूमिगत जल को बचाने के लिए दिशा में भी हमें जो है नदी तालाब

0: और छोटे छोटे जो तालाब हैं उन सभी को भी हमको बचाना पड़ेगा। और खास करके ये जो है एक तरह से देखा जाए तो एक हम एक मरुस्थल तैयार कर रहे हैं। अब देखिए
1: हाँ
0: हम जी शहरों में खास करके या घरों गांव में भी हम पक्कीकरण की ओर ज्यादातर जा रहे हैं, है ना। जैसे कि सीमेंटेड किया हुआ है या उसके ऊपर में हम उसके उसका अलकतरा की रोड बना दिए हैं, तो ये जो है
1: जी
0: पानी को सोखती नहीं है, ये बहा के दूसरी जगह तक पहुंचा देती है। तो भूमि जो है अगर पानी को नहीं सोखती है तो भूमिगत जल कमी होने लगती है। तो ये भी हम सभी की बहुत बड़ी समस्या से हम गुजर रहे हैं। तो इस सब के प्रति भी हमको सचेत होना पड़ेगा। और खास करके ये जो है व्यवहारिक रूप से हमको जो है एक एक प्रत्येक व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा।
1: जी हाँ दानिल जी, आप बड़े शहरों में देखे होंगे, सुने होंगे कि पानी का जो जल स्तर है काफी नीचे चला गया है। गर्मी के दिनों में पानी सबको नहीं मिल पाता है, तो
0: जी जी बिल्कुल
1: ये तो बहुत ही बुरा असर होगा हमारे जीवन में।
0: जी जी जी
1: और खासकर आप गांव की ओर देखेंगे तो थोड़ा बहुत जंगल तो है जिसके कारण पानी की कमी हमें महसूस नहीं होती है, लेकिन
0: जी जी
1: यहाँ भी ऐसा कमी महसूस होने लगेगा।
0: जी जी जी
1: यहाँ तो पानी को बचाए रखना है, पानी को बचाने के लिए हमें जंगल को भी बचाना है,
0: जी जी जी
1: और जलावन के लिए जो लकड़ी करते हैं,
0: जी जी
1: अगर लकड़ी वो काट रहे हैं तो उसके जगह पर नए पेड़ लगाना चाहिए ताकि वो भी बचा रह सके जंगल को, है कि नहीं।
0: जी जी जी जी
1: असर पीने का समस्या नहीं है हमारे हमारे लिए भी कोई बहुत बड़ी समस्या तो है, साथ ही साथ जानवरों के लिए बहुत बड़ी समस्या है।
0: जी वन्य जीवन पिछले कई सालों से आपने देखा होगा कि जैसे जैसे औद्योगिकरण या हम विकास कहें आधुनिक की जरूरतों के हिसाब से, तो जैसे कुछ चिड़िया जैसे गौरैया हुआ, कुछ
1: हाँ
0: चिड़िया जैसे गिद्ध है विलुप्त होने के कागार हैं,
1: जी
0: जो बिल्कुल नहीं दिखते हैं। आप कभी कभी देखे होंगे आजकल जो है शहरों में झिंगुर की आवाज भी सुनाई नहीं पड़ती है।
1: हाँ हाँ जी हाँ
0: जो तो इन चीजों को है जो पर्यावरण को किसी ना किसी रूप में एक साइकिल रिसाइकिल का काम करते रहते हैं ये सभी, तो ये सभी अभी विलुप्त होने के कागार जो मिट्टी को किसी ना किसी रूप में उर्वरता बनाए रखने का काम करते थे या
1: हाँ
0: बैलेंस पर्यावरण को बैलेंस करने का काम करते थे, तो ये जो है वन्य जीव जीव जो है धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ये भी उस पर भी असर पड़ा है इस आधुनिकरण अंधाधुंध आधुनिकरण के कारण।
1: जी हाँ
0: तो इन सभी चीजों को भी ऐसा जो है इसलिए कुछ सीमित जगहों पर ही इसके बनाने की जरूरत है। हर जगह कवर ना, और उस जगह को संरक्षित करने की जरूरत है जहाँ जो है हमारे वन्य जीव या जो भी जीव है हमारे प्रकृति से जुड़े हैं उन सभी को संरक्षित किया जा सके, ऐसा तैयार किया जाना चाहिए।
1: जी हाँ प्रेम से जी, आपने बहुत सही कहा है कि गिद्ध गिद्ध जो है आजकल देखने को नहीं मिलता है, और जो झिंगूर आपने कहा
0: जी
1: बचपन
0: जी
1: में, पहले तो हमने बहुत ही उनका आवाज सुना है,
0: जी
1: मतलब
0: जी
1: इस मौसम में बहुत वो लोग आवाज निकालते थे, लेकिन अब उस वो आवाज भी गायब हो गई है। अब
0: जी जी
1: धीरे
0: जी
1: धीरे जितना भी जो पर्यावरण से संबंधित है वो जीव
0: जी
1: हमेशा
0: जी
1: के लिए
0: जी
1: खत्म हो जा रहे हैं, तो उन्हें भी बचाना बहुत जरूरी है। और पहले क्या
0: जी
1: था डांगिल जी, की बारिश समय पर होती थी तो अच्छा लगता
0: जी
1: था, गर्मी भी हमें पर्याप्त मिलता था, सब कुछ
0: जी
1: एक सही अनुसार समय के अनुसार ही होता था, लेकिन
0: जी
1: आज
0: जी
1: वैसा नहीं है।
0: जी जी जी
1: तो
0: तो
1: क्या,
0: जी
1: हाँ क्या कारण है डांगिल जी, आप भी तो मतलब भी देख रहे होंगे ये सब चीज, या और ये सब परिवर्तन आपने भी देखा होगा।
0: जी जी जी तो ये सब है, ये जो है सारा जो है सारा इसका जो है संबंध सारा प्रकृति पर
1: हाँ
0: है। और ये बारिश जो है समय पर ना होने की या मौसम संबंध जो भी आज हम जिस समस्याओं से गुजर रहे हैं या जो समस्या हम हमारे समय दिख रही है, ये जो है कहीं ना कहीं हम जो जल चक्र है जल चक्र पर असर पड़ा है। किसी न किसी कारण से समुद्र में जो है अम्लीयता बढ़ गई है या किसी कारण से जो जो है प्रदूषित पानी जो है समुद्र तक चली गई है या हमारे नदी तालाबों में चली गई है, तो उस पर थोड़ा सा जो है ये असर पड़ा है, इसलिए और खास करके आप देखे होंगे कहीं भी उस जगहों पर ज्यादा बारिश होती है जहां पर पेड़ पौधे होते हैं,
1: हाँ जी
0: तो ये जो है नमी को बरकरार रखते थे। तो इस कारण से और कहीं कहीं पर आप देखे होंगे कि जो है जहाँ पेड़ नहीं है या जिस जगह में पेड़ है, आजकल जो है मौसम में कुछ परिवर्तन होने की वजह से अभी जो है बादल फटने की भी कई घटनाएं हमें सुनने को जानकारी को मिलती है, जिससे जो है अति बाढ़ जो है जो कई हमारे समाचारों या कई घटनाएं घट चुकी है, तो ये एक गंभीर समस्या के लिए जल चक्र में कुछ परिवर्तन हुआ है जिसके वजह से जो है और जिसके वजह से जो है ये समय पर बारिश नहीं हो पा रही है, जो ये एक चिंता का विषय है।
1: आने वाली पीढ़ी को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम बचपन से उन्हें नहीं समझाए, नहीं सिखाए और नहीं बताए तो वो बड़ा होकर लापरवाह रहे।
0: जी जी जी बिल्कुल, और खास करके हम कहें ये केवल किताबों तक ही नहीं होना चाहिए, हमारे जो शिक्षा है वो व्यवहारिक होना चाहिए, जो व्यवहारिक रूप में इस्तेमाल हो, जो हम व्यवहारिक रूप में भी उसको जो है जैसे हम जागरूकता के लिए एक अभियान चला दिए, ये एक कागज या पेपर तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, हम सभी को जो है व्यवहारिक रूप में धरातल में भी ये जो है काम दिखने चाहिए, उस तरह को शामिल करना चाहिए पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए ताकि जो है युवाओं में बच्चों में अवेयरनेस जगे, और खास करके जो भी उस तरह के काम करते हैं उस सब उन बच्चों को या उन युवाओं को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए और सम्मानित किया जाना चाहिए, इससे जो एक जागरूकता बढ़ेगी और एक सबको एक ध्यान आकर्षित हम कर पाएंगे।
1: जी हाँ, और एक स्कूल में भी एक खास विषय होना चाहिए।
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी प्रेम सिंह डांगिल जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सभी श्रोताओं को पर्यावरण दिवस के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, इसी के साथ ही वाणी को विराम देते हैं। जोहार,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता, पर्यावरण और हमारी जिंदगी। भेंट वार्ता का अर्थ है प्रेम सिंह डांगिल, उनसे बातें कर रही थी आशा पिंगुआ। आइए अब सुनते हैं जरूरी संदेश।
3: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

इस संदेश के बाद कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म रोजा का ये गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और चित्रा की आवाजों में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का कार्यक्रम विविधा। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं फिल्म गुदगुदी के इस गीत से, कुमार सानू के स्वर में।

एक पहेली लीला, अभी आपने सुना इस फिल्म का ये गीत मोहित चौहान के स्वर में। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म रोग से, उदित नारायण के स्वर में।

कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं फिल्म लक्की का ये गीत सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में।

इस गीत के साथ ही समाप्त होता है हमारा आज का फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। ये आकाशवाणी का चाय बसा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
3: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
3: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
2: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
3: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
2: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से जी जानना चाहते हैं।
3: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
2: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है
3: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
2: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
3: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
2: श्रोताओ, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भू परपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
3: श्रोताओ, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
2: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
3: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
2: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
3: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है
2: जी।
3: लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
2: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
3: फिर धीरे धीरे शोध होते गए और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
2: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
3: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
2: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
4: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
5: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
6: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
7: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
8: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
8: अरे यहीं हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
8: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
8: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना नानी माँ।
8: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
8: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
8: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
8: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी।
9: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
9: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले। ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
9: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
9: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष।
9: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि? ये हमें कहाँ मिली है
9: निधि? ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा,
9: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
9: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
9: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
6: अच्छा।
9: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
6: अच्छा।
9: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
6: अच्छा।
9: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
6: एपिग्राफ।
9: शाबाश निधि।
6: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
9: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
6: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की,

0: ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
2: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
2: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
4: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओं, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
3: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
4: जी।
3: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
4: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
3: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
5: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कारंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा, तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह,
0: हाँ तो आसिफ खान अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपरचाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपत शाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते कि आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें।
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा,
4: हाँ,
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
5: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
4: अच्छा,
5: रानी माँ ने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
4: है? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
5: बिल्कुल है।
4: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
5: उसका भी इंतजाम है।
4: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
5: देखो है? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
4: नहीं नहीं बच्चा, किसी से नहीं कहेंगे।
5: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
4: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
5: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: पुरुष वेश में लड़ रही रानी की बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
6: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
0: ओ मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
6: हाथी को क्या संभालूं रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से छिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
0: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है गनू।
6: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
0: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
6: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
0: अच्छा तो गनू बेटा, ला तू अपनी कटार मुझे दे।
6: रानी माँ मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग,
3: उमंग। अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 होने को हैं। आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज़ और एफएम 100.5 पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सभी दोस्तों को रेणु
1: और मीनाक्षी का नमस्कार
0: जोहार। तो मीनाक्षी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से।
1: हाँ हाँ, और हमारे श्रोताओं को भी इस कार्यक्रम का इंतजार रहता होगा।
0: हाँ, सिर्फ जरूरतें पूरी करना ही जिंदगी नहीं है, कुछ ख्वाहिशों के साथ जीना भी जिंदगी है। यूं तो हम सभी जीते हैं अपने अपनों के लिए, मगर कुछ खुशियां और के नाम करना भी जिंदगी है।
1: वाह, सबसे लड़कर जमाने से आगे बढ़े तो क्या बढ़े, कभी कदम से कदम मिलाकर चलना भी जिंदगी है।
0: हाँ,
1: और अपनी खुदगर्जी पर गुरूर करके भी क्या हासिल होगी, कभी औरों के दर्द को अपना समझना भी जिंदगी है।
0: रास्ता भले बड़ा हो, छोटी शुरू हो, वो मायने रखती है।

होठों पे जो जमी थी वो सारी खामोशियाँ।

0: मीनाक्षी, सुबह सुबह मौसम कैसा लग रहा था?
1: हाँ, मौसम में बदलाव तो है ही,
0: काफी बदलाव
1: और
0: आ गए हैं।
1: अभी सुनने को आ रहा है कि काफी जगहों पर बारिश हो रही है, यानी मॉनसून अब अपना रंग दिखा रहा है,
0: सक्रिय हो गया है। और जुलाई महीने में कहा जा रहा है कि उतार चढ़ाव मौसम के होंगे, कभी झमाझम बारिश तो कभी
1: हाँ हाँ और जैसे कि
0: कमजोर
1: आज
0: पड़ सकता
1: आज से
0: है।
1: ही यानी 3 जुलाई को ही उत्तरी बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से महीने के पहले 10 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में अच्छी बारिश होगी, ऐसा अनुमान है। और लगातार बारिश के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट भी आएगी और लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।
0: हाँ, हालांकि ये ब्रेक भी हो सकता है मीनाक्षी, क्योंकि लोगों का उमस का भी सामना करना पड़ सकता है जुलाई महीने में, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार पूरे जुलाई महीने के दौरान सामान्य और सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान है। शुरुआती 1.5 सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन इसके बाद वर्षा की गतिविधियां में कमी आ सकती है। इसकी एक बड़ी वजह प्रशांत महासागर में विकसित हो रही अलनीनो की स्थिति है, जिसका असर मानसून की रफ्तार पर पड़ सकता है। इससे किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।
1: हाँ, अच्छी बारिश नहीं होने से किसानों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी।
0: हाँ, तो मौसम का जो भी उतार चढ़ाव होता रहे, हम लोग को तो गीत संगीत की दुनिया में चलना है और झूमते रहना है।
1: बिल्कुल, मौसम और
0: हाँ,
1: और आप कुछ बोलना चाह रही हैं?
0: हाँ, कह रहे ना कि मौसम की बात करते हैं, तो थोड़ा ये मौसम जो सुहाने आ गए हैं अभी आज का दिन, तो उसपे एक गीत संगीत सुनते हैं
1: और फिर होने के बाद मौसम ऐसे
0: हाँ, उसके बाद फिर जानते हैं कि इसका आनंद और किसको किसको हो रहा है।
1: तो क्यों ना श्रोताओं को पहले गीत सुनवा दें।
0: हाँ।

0: गाते हैं
1: उसकी खूबसूरती ही अलग
0: अलग
1: है।
0: है, एक उत्सव माहौल रहता है।
1: आसमान में काले बादल उमड़ते ही और बारिश की पहली बूंदों के साथ ही झारखंड के खेतों में रोपा गीत गूंजने लगते हैं। यह इस बात का प्रतीक भी है कि हमारे राज्य में खेती केवल अन्न उगाने का जरिया नहीं बल्कि लोक संस्कृति और सामाजिक एकता का एक खूबसूरत उत्सव है।
0: हाँ, और ये संस्कृति के जानकारों का कहना भी है कि आज के दौर में इन पारंपरिक गीतों को बचाना बेहद जरूरी है। ये गीत महज मनोरंजन नहीं है बल्कि झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर, सामुदायिक एकजुटता और ग्रामीण जीवन की जीवंत पहचान है। सच में एकजुट होकर लोग कितना अच्छा लगता है ना, एकजुट होकर गाते हैं बजाते हैं।
1: हाँ, एक परिवार जैसे मतलब मिलना जुलना होता है, गीत
0: हाँ,
1: गाते हैं तो ये पुरानी यादें भी ताजा
0: होती है। गीतों के जरिए ही सब जो किसान भाई बहन हैं अपने सुख दुख उल्लास और जीवन के गहरे अनुभवों को बेहद खूबसूरती से बयां करते हैं। सच कहें तो ये गीत और संगीत ही हमारी माटी की असली आत्मा है। और इसी तरह से कई जैसे कि नागपुरी है, खोरठा है, पंचपरगनिया है, सब में अपनी अपनी गीतों की अपनी एक
1: एक भाषा की अलग अलग
0: खूबसूरती है।
1: और गीतों इसी से हमारे झारखंड की पहचान भी है।
0: हाँ, गीतों में मौजूद समृद्ध लोक संस्कृति की झलक भी मिलती है। तो भाई बारिश तो हो ही रही है और फिर भी इन गीतों के माध्यम से लिए हम लोग
1: बिल्कुल हम अपने श्रोताओं को एक गीत जरूर सुनवाएंगे।
0: हाँ।

0: मेघ बारिश बादल, यानी ये सब हैं पर्यावरण से जुड़े हुए।
1: हाँ। सच में अभी तो ये सप्ताह भी चल रहा है ना,
0: वन पर्यावरण सप्ताह।
1: हाँ, वन महोत्सव का क्या चल रहा है जो, तो उसमें भी है कि हम लोगों को क्या करना है।
0: वन महोत्सव सप्ताह चल रहा है।
1: हाँ, तो ये जो पृथ्वी है ना मीनाक्षी, वो हमारा बड़ा घर है। अपने घर की तरह इसे भी साफ सुथरा रखना है।
0: बिल्कुल, जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, अपने घर को के कचरे को बुहार देते हैं, लेकिन अपने बड़े घर यानी पर्यावरण को दूषित हम करते जा रहे हैं।
1: हाँ,
0: तो ये तो हमारे पर्यावरण के लिए खतरा है
1: और
0: सचेत होने की जरूरत है।
1: हाँ, हरियाली आएगी कैसे जब हम पेड़ पौधे नहीं लगाएंगे, अच्छे से उसका रोपण नहीं करेंगे, तो
0: बहुत जरूरी है ये रेणु दी।
1: हाँ।
0: इसका संरक्षण बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तो जो घर होती है हमारी चार दीवारी होती है, जिसे हम अपना घर मानते हैं, उसमें हम सारी जरूरत की चीजें रखते हैं, और इसी तरह हमारा एक बड़ा घर है जिसे हम धरती का वातावरण कह सकते हैं, जो वो भी हमारा एक बड़ा घर है और हमें सुरक्षा प्रदान करता है।
1: सच में
0: बिल्कुल, क्योंकि अगर ये ना हो तो हम सूर्य की तेज किरणों से भी नहीं बच पाएंगे, और इसके अलावा तेज हवा है या फिर प्राकृतिक कोई भी आपदा विपदा है, तो हमें ये जो पर्यावरण है ये हमें सुरक्षित करता है।
1: हाँ, सच में। और लेकिन इसके बावजूद एक कारण और है कि हम अपने इस बड़े घर को ध्यान नहीं रखते। कारण होता यदि पर्यावरण में बहुत अधिक गर्मी हो जाए, बहुत अधिक ठंड पड़ जाए, या बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, तो उसका असर हम पर पड़ता है। कुल मिलाकर पर्यावरण में कुछ भी होता है उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन हम जो कुछ भी करते हैं ना, उसका प्रभाव भी पर्यावरण पर ही पड़ता है।
0: इसीलिए कहते हैं कि संतुलन, पर्यावरण का जो संतुलन है वो बेहद जरूरी है। अगर संतुलन बिगड़ेगा तो उसका प्रभाव जाहिर है कि हमारे जिंदगी पर पड़ेगा।
1: सच में ये पर्यावरण जो है ना, हमारा ये जो हमारा बड़ा घर है, जो पृथ्वी हमारा बड़ा घर है, हमें जीवन देता है। यही हमें हवा देता है, पानी देता है, भोजन देता है और जीवन जीने योग्य परिस्थितियां प्रदान करता है। लेकिन बदले में हम इसे क्या देते हैं? बस इसे गंदा करते हैं,
0: इसका संरक्षण नहीं कर पाते।
1: हाँ।
0: जो कि हमारे लिए ही ये नुकसानदेह है।
1: और इससे जो होता है धरती के तापमान को बढ़ाने का काम भी करता है।
0: पेड़ कटते जा रहे हैं, पेड़ लग नहीं रहे हैं, तो इसका दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही। गर्मी बढ़ रही है और ग्लेशियर्स के हैं, जितने बर्फ हैं वो पिघलते जा रहे हैं, तो इसका असर वो हमें मौसम पर भी इसका असर दिखता है।
1: हाँ, जो भी हम लोग है, जो कचरा जो होता है हम धरती पर फेंक रहे हैं, उसकी सजा

0: आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ती है।
1: उसका
0: जैसे
1: निपटान भी बहुत सही
0: जरूरी,
1: तरीके
0: जैसे
1: से
0: हम लोग
1: होना
0: आज के
1: चाहिए।
0: लिए सोचते हैं कि आज हम लोग पानी बर्बाद किए, जिस तरह से हम लोग जी लिए, लेकिन भविष्य के बारे में हम लोग नहीं सोच पाते कि आने वाली पीढ़ी भविष्य में उसका क्या होगा,
1: तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी हमें सोचना
0: ध्यान में
1: जरूरी
0: रखना
1: चाहिए।
0: होगा
1: हाँ
0: और घर को, वातावरण को, धरती को पेड़ पौधों से सजाना होगा।
1: बिल्कुल रेणु दी, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि जिस तरह हम अपने घर को सुरक्षित रखते हैं, घर में सुरक्षित रहते हैं, उसी तरह हम अपने वातावरण को,
0: को भी
1: अपने पृथ्वी को भी
0: सुरक्षित,
1: सुरक्षित रखें और इस तरह इस काबिल रखें कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी
0: उस
1: उसका
0: आनंद ले सके,
1: आनंद ले सके और अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सके।
0: जी सके।

0: हाँ रेणु दी, और एक और आज खास दिन है, जब हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं तो हम अपने श्रोताओं को ये भी बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी है आज।
1: हाँ सच में, ये तो पूरा वैश्विक पहल का उद्देश्य भी है कि एकल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग को उपयोग को पूरी तरह समाप्त करना है और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देना है।
0: क्योंकि प्लास्टिक तो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, ये हम सभी जानते हैं, तो उसके विकल्प क्या क्या हो सकते हैं ये भी अपने श्रोताओं को बताएं।
1: हाँ सच में, जैसे हम कहीं बाजार ही जाते हैं ना, तो कपड़े का या जूट का थैला लेकर जाएं। अधिकांशतः क्या कि हम लोग अगर अपने मन से ये काम करेंगे और तो वो होगा, एक दिन के लिए लोग कहता है कि चलो एक दिन मान लेते हैं, लेकिन एक दिन का ये दिन नहीं, दिवस नहीं है, ये पूरे सालों हम लोग ये ऐसा कर सकते हैं।
0: ये तो जागरूक करने के लिए या फिर याद दिलाने के लिए लोगों को ये दिन मनाया जाता है, लेकिन ये तो हमें अपने अपने बिल्कुल अपने हमें अपनी आदत में ये इसको
1: शामिल कर लें। कहीं भी निकल रहे हैं, स्कूटी दोपहिया से या चारपहिया से, एक कैरी बैग, कपड़े का झोला या जूट का झोला अपने साथ जरूर ले जाएं। अब वहाँ नहीं मिलता है, लाचार होके वो नहीं भी देता है तो बोले दे दो, दुकान वाले से लोग कहते हैं, फल वाले से, सब्जी वाले से, छोटे छोटे दुकानों पर ये प्लास्टिक अभी थोड़ा देखने को मिलता है।
0: जिससे एक बार आदत आपकी हो जाएगी ना, तो फिर आप हमेशा इसका ध्यान रखेंगे कि हाँ हमें प्लास्टिक के इस्तेमाल से बचना है। और एक और अहम बात है कि प्लास्टिक बैग को नष्ट होने में 100 से 500 वर्ष तक का समय लग सकता है।
1: मतलब कितना खतरनाक है। प्लास्टिक जो है, कचरा जो है समुद्र और मिट्टी को प्रदूषित करता है, जिससे समुद्री जीवों और जानवरों का जीवन खतरे में पड़ जाता है। ये दिन ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक आंदोलन का एक हिस्सा है, जिसकी शुरुआत प्लास्टिक के प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए की गई थी।
0: और अगर आप एक दिन प्लास्टिक बैग का उपयोग छोड़ सकते हैं तो इसे अपनी दैनिक आदत बनाकर पूरे वर्ष भी ऐसा कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले कहा कि इसे अब आप अपनी आदत बना लें कि हमें प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना है, और उसके दूसरे विकल्प, हेल्दी विकल्प जो भी हैं, वो
1: थैला वाला लेकर अपने घर से निकले। हम और आप जब जागरूक होंगे ना मीनाक्षी, तभी ये पर्यावरण संरक्षण में ये हमेशा योगदान होगा, हमारा भी योगदान इसमें चाहिए, सबका योगदान चाहिए, बच्चों को ये बात सिखाएं।
0: और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को त्यागना होगा और पर्यावरण

0: संरक्षण में योगदान देना ही सबका सबको बेहद जरूरी है।
1: हाँ, जैसे पहले बीच में होता था ना, पेपर का दोना है, ये पत्तल का दोना, हाँ, ये सब यूज होता था और बीच में अच्छा
0: लेकिन अब फिर से इसका ये जो
1: एकल प्लास्टिक वाला आने लगा।
0: हाँ, हाँ,
1: कि फल सब
0: लेकिन जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे इसका फिर से ये परंपरा में आ रही है।
1: हाँ, समय लगेगा। तो प्लास्टिक को अपने जैसे है कि प्लास्टिक को ना कहें, पर्यावरण को बचाएं, कुछ कदम बढ़ाइए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कीजिए
0: और धरती की पुकार सुनिए, प्लास्टिक के को बहिष्कार कीजिए,
1: कपड़े का थैला अपनाया जाए और प्लास्टिक को दूर भगाया जाए।
0: बिल्कुल।

0: और अब जोहार रांची कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है हमारे श्रोताओं का।
1: हाँ, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इतिहास के पन्ने पलटते हैं।
0: बिल्कुल, इतिहास के पन्ने में देखते हैं कि आज प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं।
1: हाँ।
0: तो 1908 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने महान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक बाल गंगाधर तिलक को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। आज के दिन यानी कि आज है 3 जुलाई।
1: हाँ, और 1886 ईस्वी में रामचंद्र दत्तात्रेय अरानाडे का जन्म हुआ, जो दर्शन के प्रसिद्ध विद्वान और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के अध्यक्ष थे।
0: और 1941 ईस्वी में अदूर गोपाल कृष्णन का जन्म भी आज ही के दिन हुआ।
1: हाँ, और 1952 में राहिंगटन मिस्त्री का जन्म हुआ, जो प्रख्यात भारतीय कैनेडियन उपन्यासकार हैं। और 1979 में आरती सिंह राव का जन्म हुआ, जो भारतीय निशानेबाज हैं। उन सबको देते हैं जन्मदिन की बधाई और भारत की बेटी पे। हाँ, भारत की बेटी पे ऐसे भी हम लोग को हमेशा गर्व रहा है।
0: बिल्कुल।

0: आज के दिन मीनाक्षी 1897 ईस्वी में हंसा मेहता का जन्म हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध समाज सेवी, स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षाविद थी।
1: और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हबीब उर रहमान लुधियानवी का जन्म भी आज के दिन 1892 ईस्वी में हुआ था।
0: और 1969 ईस्वी में दिगेंद्र सिंह का जन्म हुआ, जो महावीर चक्र से सम्मानित वीर भारतीय सैनिक हैं। अब नमन करते हैं उन्हें जो आज के दिन हम लोग से विदा हुए। 1948 ईस्वी में मोहम्मद उस्मान शहीद हुए, भारतीय सेना के उच्च अधिकारी, जो भारत और पाकिस्तान के प्रथम युद्ध में शहीद हुए।
1: 1982 में केदार पांडे का भी निधन आज के दिन हुआ।
0: 1920 में सरोज खान का निधन हुआ।

0: जो प्रसिद्ध भारतीय कोरियोग्राफर थी
1: अच्छा,
0: 1999 ईस्वी में।
1: 2020 में।
0: हाँ
1: हाँ, और 1999 में मनोज कुमार पांडे भी आज के दिन शहीद हुए। कैप्टन मनोज कुमार पांडे भारतीय सेना के अधिकारी थे जिन्हें सन 1999 के कारगिल युद्ध में असाधारण वीरता के लिए मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
0: सभी को करते हैं शत शत नमन।
1: नमन।

0: मीनाक्षी इतिहास का आखिरी पन्ना पलटते हैं और याद करते हैं राजकुमार को जिनका निधन आज ही के दिन हुआ था।
1: तो हिंदी फिल्मों के अभिनेता राजकुमार का निधन 1996 ईस्वी में आज ही के दिन यानी 3 जुलाई को हुआ। इनका नाम कुलभूषण पंडित था लेकिन फिल्मी दुनिया में अपने दूसरे नाम राजकुमार के नाम से ये प्रसिद्ध हुए।
0: और पारंपरिक फारसी थिएटर के संवाद अदायगी को इन्होंने अपनाया और यही उनकी विशेष पहचान बनी।
1: और इनके द्वारा अभिनीत प्रसिद्ध फिल्मों में पैगाम, वक्त, नीलकमल, पाकीजा, मर्यादा, हीर रांझा और सौदागर आदि हैं।
0: और फिल्मी दुनिया के सरताज अभिनेता राजकुमार 1996 में हमें छोड़कर चले गए लेकिन राजकुमार की एक्टिंग स्टाइल और उनके सफेद जूते और उनके डायलॉग आज तक सबके जेहन में जिंदा है।
1: और वो डायलॉग या संवाद क्या था?
0: ये फिल्म पाकीजा का में जो राजकुमार का बोला गया एक संवाद
1: है
0: था।
1: वो आपकी पांव देखे बहुत हसीन है, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा मैले हो जाएंगे।
0: हाँ, इस कदर लोकप्रिय हुआ कि लोग राजकुमार की आवाज में नकल करने लगे। उन्हें दिल एक मंदिर और वक्त के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त हुआ।
1: फिल्म उद्योग का नोबेल, फिल्म जगत का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया।
0: हाँ।
1: और अपने संजीदा अभिनय से लगभग 4 दशक तक दर्शकों के दिलों पर ये राज करते आए महान अभिनेता राजकुमार।
0: हाँ, और आज ही के दिन मतलब 3 जुलाई 1996 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह गए।
1: ये सौदागर फिल्म का गीत क्यों न अपने श्रोताओं को हम सुनवा दें?
0: हाँ।

0: और जो है रांची कार्यक्रम में कुछ ज्ञानवर्धक बातें यानी जरूरियों से जुड़ी है।
1: तो
0: क्या बताना चाहेंगी रेणु दी?
1: अरे अभी तो सभी लोग एसआईआर से जुड़े संशय और शिकायत के लिए सोच रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उसी पर जानना चाहेंगे, लोगों को बताना चाहेंगे।
0: यानी कि एसआईआर के बारे में सबको सही जानकारी नहीं मिल पा रही है।
1: हाँ।
0: और इसके लिए अगर आपको सहूलियत के लिए आपको बता दें कि टोल फ्री एक नंबर है 1950, या आप बुक ए कॉल ये कर सकते हैं, जिससे आप इसकी सहायता से आप अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। यानी अगर आपको किसी चीज के बारे में जानकारी अधूरी है या नहीं है, हाँ, तो आप एसआईआर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते
1: हैं। हाँ, अभी ऐसा आया है कि घर घर जाकर बीएलओ इम्यूनेशन फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं। यदि किसी मतदाता को फॉर्म भरने या इस अभियान से जुड़े कोई समस्या है तो वो 5 माध्यमों से निर्वाचन अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। पोर्टल पे जाना है, एसआईआर स्टिकर पे जाना है, या बुक ए कॉल आयोग के ESINET ऐप पर इस फीचर को वोटर आईडी नंबर डालते ही बीएलओ की सूचना आ जाएगी, जो 48 घंटे के भीतर कॉल बैक कर समस्या का समाधान करेगी। तो इस तरह से आप उसका समाधान ढूंढ सकते हैं।
0: बिल्कुल। तो इसके लिए अब आगे
1: जरूरी है कि आप जाके अपने बीएलओ से संपर्क करें और इकट्ठा करें। और चलते चलते देखो मीनाक्षी, ये जो
0: कार्यक्रम का वक्त बिल्कुल, हाँ, अब घड़ी की सुइयां भी हमें इशारा कर रही है कि अब कार्यक्रम से हम इजाजत लें।
1: हाँ, तो चलते चलते,
0: चलते, चलते बस अब श्रोताओं को
1: सेहत से जुड़ी बातें कर लेते हैं।
0: बिल्कुल, जैसे कि मॉनसून का समय है तो इस समय हमें अपने सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है।

0: अंदर हम खाने पीने में लापरवाह हो जाते हैं, तो जिसे लेकर हमें सजग रहने की जरूरत है।
1: हाँ, खासकर बासी खाना को अवॉइड करना है, ताजा और फ्रेश,
0: हाँ
1: ताजा खाना खाना है।
0: जो ताज़ा खाना आपके घर में उपलब्ध हो, बना हो, आप खाएं, यानी कि आप बाहर के खाने को खाने से परहेज करें। और तीखी गर्मी के बाद मॉनसून की शुरुआत तो जैसा कि हम देखें कि हो चुकी है, तो ऐसे में डॉक्टर हमें बदलते मौसम में थोड़ा सावधान रहने की सलाह देते हैं। और
1: पानी भरपूर पिए,
0: हाँ पानी पिए, और पीने के पानी को उबालने के बाद गुनगुना करके पीना शुरू करें, तो इससे आप बाहर की बीमारियों से बच सकते हैं।
1: बातें छोटी छोटी हैं और सब लोग जानते भी हैं, लेकिन उसको बरतना जरूरी है, मतलब वो काम करना जरूरी है।
0: छोटी छोटी बातें हैं ही हैं, जैसे कि आप कटे हुए फल हैं या सब्जियां हैं उन्हें बहुत देर तक बाहर
1: ना छोड़े,
0: या फिर कच्ची सब्जियों खाने, हाँ, खाने से भी परहेज करें।
1: इस मौसम में सलाद जो है काफी अच्छा से काट कर एकदम ताजा काटे और खाए, उसको रखकर घंटा एक घंटा बाद खा रहे हैं वैसा न करें।
0: तो कुल मिलाकर केवल घर का गर्म सुपाच्य भोजन, खिचड़ी सूप और हरी सब्जियां आप लें और आप सेहतमंद रहें।
1: तो इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए, और इस कार्यक्रम से रेणु
0: और मीनाक्षी को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, जोहार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहर रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद. कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म बागी के इस गाने से. आवाजें अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की है. इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है आनंद मिलिन ने. इस गीत को सुनना चाहा है जतुका किशनपुर से आलम दिलकश, शबाना नाज, रिजवान राही, इमरान राजा, आलम शेख और चांदनी नाज. ग्राम मुरुबंदा से कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, रीना देवी, पिंकी, संजू कुमारी, मंजू, सोनी बिजलानी, रीता, गीता, सीता और परिवार के सभी सदस्य. ग्राम चटक से संदीप कुमार एवं परिवार के सभी सदस्य. आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म बागी से ये गाना.

कार्यक्रम का अगला नगमा आप श्रोताओं के नाम बड़का गांव से दिनेश मालाकार, सुषमा मालाकार, नीरज मालाकार, विकास मालाकार, आशीष, संगीता मालाकार, रंजना, गुड़िया रानी एवं उनके मम्मी पापा, कुड़ू चौक कुड़ू से नसरीन सुल्ताना, निरोफर, नौसिन बाबू, सादिक मासूम, अशोक कुमार, अरुण, पप्पू, तौकीर और तौफीक। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म यारा दिलदारा से ये गाना। आवाज़ें उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की है, शब्दों में पिरोया है मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई है जतिन ललित ने।

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म मुस्कान से, आवाज़ें उदित नारायण और अलका याग्निक की है, शब्द रचना समीर के, संगीतबद्ध किया निखिल विनय ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं सीसीएल बड़का काना।

0: रंजना, रविंद्र वर्मा, रेणु वर्मा, रिया, उर्वशी, अमन, बेबी, सोना बाबू, आर के अकेला और राम सिंह। कुड़ू से आप हैं मोहम्मद अंसार, मोहम्मद ब्यास इलियास, भाई इरशाद इमरान, जुनाब आलम और रोशन रामा। बड़का काना से भानु पासवान, अशोक पासवान, सुधा, मंजू, रेखा, सुनीता और पूनम। न्यू एरिया मोरावादी से आप हैं गौरी शंकर, राजकुमार, चितरंजन, नंदू, संजीव, संजय, दीपक, प्रदीप, विशाल और विक्की। रातू से विक्की पाठक, सुनीता, श्वेता, सौरभ, सुधांशु, निंजा, निक्की और घर के सारे सदस्य। आप सबके पसंद से सुनते हैं फिल्म मुस्कान से ये गाना।
1: जाने मन चुपके चुपके सारी दुनिया से चुपके तुमने ऐसी बात कही, दिल मेरा खो गया।

फिल्म मुस्कान का ये गीत और भी लोग सुनना चाहते। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर और रियांश ठाकुर। और रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी और दतरंगी से भागवत वर्मा। और तो इसी के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है।

0: बहनों नमस्कार। बारिश के फुहार, ठंडे बयार, प्रकृति का श्रृंगार, हरियाली की बहार और ढेर सारा प्यार लिए हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो सखी राखी, आपके अपने कार्यक्रम गृहलक्ष्मी के साथ। हृदय तल से स्वागत है आपका, और आपके चुलबुले सी हंसमुख सी सखी रानी भी है आज आपके साथ, जो आपसे मुखातिब होने के लिए बेताब है।
1: हाँ बहनों, तो स्वीकार कीजिए मेरा भी प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सभी बहनें स्वस्थ होंगी, प्रसन्न होंगी और अपने परिवार के साथ बारिश के इस खूबसूरत मौसम का आनंद भी उठा रही होंगी।
0: दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था, इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था।
1: क्या बात है राखी। बहनों, कभी आपने महसूस किया है कि पहली बारिश की बूंदे जब धरती पर गिरती हैं तो मिट्टी की सौंधी सुगंध के साथ साथ मन का आंगन भी जैसे महक उठता है। ये बादलों का उमड़ना घुमड़ना पुरानी यादों के पिटारे खोल देता है ना?
0: बारिश जब अपनी अलहड़ता के साथ बरसती है तो चंचल मन थिरकने लगता है।
1: हाँ, गजब की ऋतु है ये, जिसके साथ उम्र के हर पड़ाव की अलग अलग यादें जुड़ी होती है ना राखी?
0: बचपन की बारिश, कागज की नाव पानी में तैराना, खेत की गीली मिट्टी में नंगे पांव उछलना कूदना, यौवन की बारिश, प्रियतम का इंतजार, सावन के झूले, मेहंदी लगे हाथ, बारिश की ठंडक के बीच छिपी वो ऊष्मा जिसे सिर्फ युवा मन ही समझ पाए।
1: हाँ, और प्रौढ़ावस्था की बारिश, हाँ, आपाधापी के बीच थोड़ा सा ठहर कर रिमझिम बरसती बूंदों को बैठ कर निहारना कुछ पुरानी यादों की पोटली खोल कर आंखों के सामने थिरकने लगती है।
0: ठंडी हवा के सेहरन के साथ कुछ चेहरे, नाना कोई एक खास चेहरा जो बस यादों में ही बस कर रह गया, वक्त की धूल के साथ कभी धुंधला ना पड़ा, वो चेहरा बड़ी आत्मीयता के साथ याद आता है। एक अनकहा सा मीठा सा दर्द दे जाती है ये रिमझिम, है ना सखियों?
1: हाँ, जीवन की संध्या बेला में भी बारिश अच्छी तो जरूर लगती है। जीवन में क्या कुछ बह गया, कितना कुछ भीग गया, सब धुंधला धुंधला सा याद तो आता ही है।
0: हाँ, खैर हम भी कहाँ कहाँ घुमा लाए आपको सखियों, है ना रानी? वैसे बरसात होती ही इतनी खूबसूरत है कि मन की यादों के गलियारे में भटकने लगता है ये मन। खुशियों का उत्सव है ये, प्रेम अपनत्व और आशाओं की बूंदों का इंतजार तो हर कोई करता ही है, और मेघ से कुछ कहने का मन भी तो होता है।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बहनों कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में, और आज मैं हूँ आपकी रेडियो सखी रानी,
7: और रानी के साथ मैं राखी। और रानी, अब बहनों को सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव, और इस संदर्भ में जानकारी दे रही हैं डॉक्टर शिल्पी झा, और उनसे बातें की है बहनों रानी शुक्ला ने, जो भी आपसे मुखातिब है।
4: बहनों, बारिश की रिमझिम फुहारें जब धरती को छूती हैं तो वातावरण में एक नई ताजगी और सुकून भर देती हैं। तपती गर्मी के बाद ये मौसम राहत, ठंडक और हरियाली का संदेश लेकर आता है। लेकिन इस खूबसूरत मौसम का एक दूसरा पहलू भी है, और वो है सेहत से जुड़ी चुनौतियाँ। बारिश के दिनों में जरा सी लापरवाही कई बीमारियों को न्योता दे सकती है। ऐसे में परिवार की देखभाल, साफ सफाई और सही खान पान की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। और आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और उनसे बचाव। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रही हैं विशेष अतिथि डॉक्टर शिल्पी झा। आप गांधीनगर अस्पताल रांची में डिप्यूटी मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर शिल्पी जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
8: नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच।
4: मैम, बारिश का मौसम राहत और ठंडक लेकर तो आता है, लेकिन इसके साथ बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है, इसका कारण क्या है?
8: इस मौसम में बीमारियों बढ़ने का मोस्ट कॉमन रीजन होता है वार्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट। और इस क्वेश्चन को जवाब देने के लिए मैं इसमें तीन पैरामीटर्स बताना चाहूंगी। पहला हो जाएगा ज्योग्राफिक फॉर्म, जिसका मतलब कि हमारा इंडिया है वो ट्रॉपिकल लगती है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो हमारी कंट्री से पास होता है, जिसकी वजह से ये हमारी कंट्री को ट्रॉपिकल साउथ रीजन और सब ट्रॉपिकल नॉर्थ रीजन में डिवाइड कर देता है। दक्षिण की तरफ जाएंगे तो हमारा इक्वेटर जाता है, जिस वजह से हमारी कंट्री में जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है वो देखा जाता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक टेम्परेचर होगी, बहुत गर्मी होगी और बहुत अधिक वर्षा होगी। तो इस सीजन में क्या होता है कि जब हमारी गर्मी ज्यादा होती है तो उस सीजन में वायरसेस, स्पोर्स, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, वो डॉर्मेंट स्टेज में रहते हैं, इनएक्टिव रहते हैं। बट जैसे ही मानसून का सीजन आता है तो हमारा टेम्परेचर कूल डाउन होता है, तो ये सीजन ये स्पोर्ट्स, वायरसेस और बैक्टीरिया के रेप्लिकेट करने के लिए बहुत अच्छा मौसम होता है। और इसी टाइम पे हमारे स्कूल भी खुलते हैं, तो बच्चे जब तक घर पे रहते हैं तो वो एकांत में रहते हैं, सेक्लूडेड प्लेसेस में रहते हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। बट जैसे बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो मानसून सीजन आफ्टर समर वेकेशन आ जाता है, एक बच्चा इन्फेक्टेड होता है तो वो दूसरे

0: या छींकता है तो उसके मुंह से जो ड्रॉप्स निकलते हैं या एरोसॉल से तो उसके बेंच पर या उसके पेंसिल पर जाते हैं, जो वो अपने फेलो फ्रेंड के साथ जब शेयर करता है तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है और ये ट्रांसमिशन चेन शुरू हो जाता है। इसमें एक और पैरामीटर है जिसे हम कह सकते हैं पुअर सैनिटरी बैरियर, यानी कि जब बारिश होती है तो एक पर्टिकुलर रेंज होता है, कितनी बार वो रेंज हमारा क्रॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बारिश का पानी अपने साथ जब बहता है तो वो काफी गंदगी, मल मूत्र, कीचड़ सब कुछ लेकर जाता है। और यही पानी जब आगे जाकर स्टैग्नेंट वाटर में बदल जाता है तो इसमें मच्छर वगैरह अपना अंडा ले करते हैं, जिसकी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीजेस होते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, आपने बहुत अच्छे से बताया कि आखिर बारिश के मौसम में बीमारियों का खतरा क्यों बढ़ जाता है। अब अगर हम उन बीमारियों की बात करें तो इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियां सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिनसे सतर्क रहना बेहद जरूरी है?
0: जी, तो इसी संदर्भ में बात करते हुए मैं बताना चाहूंगी, सबसे पहले वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, कि जो बारिश के पानी के साथ अगर कॉन्टामिनेशन हो जाए आपके पीने के पानी का तो उसे वाटर बॉर्न डिजीज कहते हैं। तो इसमें जैसे कॉलेरा, हेपेटाइटिस ए, टाइफॉइड या फूड पॉइजनिंग आता है। दूसरा हम कह सकते हैं वेक्टर बॉर्न, यानी कि जो बारिश का पानी हमारा एक जगह जमा हो जाता है तो उसमें मच्छर अपना अंडा ले करते हैं, जिसकी वजह से डेंगू, मलेरिया या चिकनगुनिया हो सकता है। तीसरा हो सकता है हमारा वायरल इन्फेक्शन, जिसमें कि कॉमन कोल्ड या वायरल फीवर, फ्लू आ जाते हैं। चौथा हो सकता है स्किन पर हम देख सकते हैं फंगल इन्फेक्शन, कि बारिश होती है आपके कपड़े गीले हो जाते हैं, प्लस हमारे शरीर में एक दो ऐसे पार्ट्स होते हैं जैसे एक्सिला होता है या ग्रॉइन, जहां ज्यादा पसीना होता है, तो वहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन, एथलीट फुट वगैरह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और आखिर में होता है हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कि अगर घर में नमी है या फिर ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है तो वहां पर एस्थमा या ब्रोंकाइटिस होने के केसेस दिखाई देते हैं।
1: जी, लेकिन अक्सर लोग शुरुआती संकेतों को समझ नहीं पाते, खासकर डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी बीमारियों में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, ताकि लोग समय रहते इन्हें पहचान सके।
0: जी, सबसे पहले शुरुआत करते हैं डेंगू से। तो डेंगू होता है एडीज एजिप्टी नाम के एक मच्छर के काटने के द्वारा। तो ये मच्छर जो होता है हमारा, यूजुअली ये दिन में या फिर अर्ली मॉर्निंग में इसके बाइट की वजह से आपको डेंगू के लक्षण दिख सकते हैं। डेंगू का लक्षण जैसे कि अचानक से बहुत हाई ग्रेड फीवर होना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, आंखों के पीछे बहुत दर्द होना, बहुत जोर से हेडेक होता है, ज्वाइंट और मसल में भी बहुत पेन होता है। और इतना ये उसकी तीव्रता इतनी अधिक होती है कि इसे हमारे लैंग्वेज में हम लोग मेडिकल टर्म्स में ब्रेक बोन फीवर कहते हैं। स्किन में रैश होना, उल्टी होना। अब चलते हैं मलेरिया की तरफ। मलेरिया भी मच्छर के ही काटने से होता है, बट इसका जो मच्छर होता है वो एक फीमेल एनोफेलिस होती है। इसमें तीन स्टेज होते हैं, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज और स्वेटिंग स्टेज। कोल्ड स्टेज मतलब मरीज को अचानक से बहुत जोर से ठंड लगती है, इतनी ठंड लगती है कि वो कंबल मांगता है, और ये स्टेज आधे घंटे तक लास्ट करता है। इसके बाद होता है हॉट स्टेज, इसमें जो पेशेंट को अभी ठंड लग रही थी अचानक से उसको गर्म लगने लगती है और जो ब्लैंकेट उसने मांगा था वही ब्लैंकेट वो फेंक देता है। और आखिर में होता है स्वेटिंग स्टेज, जिसमें कि पसीना बहुत तेजी से उसको बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है।
1: जी,
0: अब आखिर में आते हैं वायरल फीवर की तरफ।
1: जी,
0: वायरल फीवर जैसा हम नाम से समझ सकते हैं कि एक ऐसा बुखार है जो वायरस के इन्फेक्शन से होता है। तो ये जैसे हमारा वेदर चेंज हुआ इसकी वजह से देखा जाता है। इसमें भी वही फीचर्स होते हैं, मॉलस फटी चिल बॉडी एक, और ये जैसे मैंने बताया कि छींकने पर या हाथों में जब आपके ड्रॉपलेट्स पड़ जाते हैं तो फिर वही इन्फेक्शियस हाथ अगर आप किसी और के साथ शेयर करते हैं या सामान का आदान प्रदान करते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो ये कुछ अहम लक्षण है बहनों, जिनकी समय रहते पहचान बहुत जरूरी है। अब अगर बचाव की बात करें तो खानपान और पीने के पानी की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। बारिश के मौसम में खानपान और पीने के पानी को लेकर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए?
0: जी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है हमारा। इसमें सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि हमें बिल्कुल साफ और उबला हुआ पानी पीना है। बाहर का कोई भी जो सोर्स है वहां से हमें पानी नहीं पीना है। बाहर का खाना कम खाना है, घर का जो फ्रेशली कंज्यूम्ड कुक्ड फूड होता है उसे ही खाना है। हाथ हमेशा साफ कचरा है खाने खाने से पहले, और अगर कहीं पर आपके हाथ धोने की अच्छी फैसिलिटी नहीं है तो हाथ में हमेशा कोशिश करें कि स्टेरिलियम या सैनिटाइजर, जो हम कोविड एरा से आजकल फॉलो कर रहे हैं, उसे यूज करना है। और कभी भी बाहर में अगर कोई मान लीजिए कट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या सलाद है तो उसको बारिश के सीजन में बिल्कुल भी नहीं खाना है।
1: जी बिल्कुल, यानी सही खान पान और साफ पानी हमें कई बीमारियों से बचा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ घर और आसपास की साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी है। घर और आसपास की साफ सफाई का इस मौसम में कितना महत्व है, और मच्छरों से बचाव के लिए लोग क्या उपाय कर सकते हैं?
0: जी, इसे हम डील करेंगे चार एस से।

0: हमारा पानी जमा है वहां पर पोटेंशियल ब्रीडिंग स्पॉट हो सकते हैं कि जहां मच्छर आपका अंडा लेकर सकता है, जैसे कि पुराना टायर, कोई गटर जहां से पानी निकल रही है वहां पे पानी जाम है, या फिर जैसे हम घर में देखते हैं कूलर्स में पानी पड़े होते हैं, या फ्लावर वास होता है, या प्लांट्स के जो रहते हैं पुराना ड्रम जिसमें हमने पानी स्टोर करने के लिए रखा था समर सीजन में, और उसके बाद मान लीजिए कितनी बार हम लोग अपने घर में आसपास देखते हैं कि कोई टिन हो गया, कोल्ड ड्रिंक का कोई कैन हो गया, या कोई प्लास्टिक की बॉटल हो गई जो हम यूं ही फेंक देते हैं, वो भी उसमें भी जाके बारिश का पानी जमा हो सकता है। ये था पहला कारण। दूसरा हम लोग कर सकते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन की। इस सीजन में हमें हमेशा पूरे कपड़े के पूरे फुल स्लीव क्लोथ पहनने हैं
1: जी।
0: और मॉस्किटो रिपेलेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओडोमॉस हमारे यहाँ मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है
1: जी।
0: और मच्छर की एंट्री और को रोकने के लिए हम लोग मैश इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज में, डोर्स में। रात में मॉस्किटो नेट यूज करना है। ऑल्सो वेक्टर कंट्रोल के लिए हमारे यहाँ एक मछली आती है जो कि वो मच्छर के लार्वों पर फीड करती है
1: जी।
0: और अगर मान लीजिए कहीं पर बहुत सुविधा नहीं है, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका नहीं, लेकिन फिर भी जैसे कि अगर मान लीजिए कोई गांव में जैसे लोग हैं तो वहां पर अगर रोड टूटा हुआ है तो वहां पर भी बारिश का पानी जमा हो जाता है
1: जी।
0: तो वहां हम लोग एक तरीका अपना सकते हैं कि केरोसिन ऑयल जो होता है वो उन गड्ढों के ऊपर डाल दे, ताकि अगर वहां पर मच्छर के अंडे होंगे और वो लार्वा होगा तो वो तेल जो होता है वो सरफेस टेंशन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई को कट कर देता है, तो वो मच्छर का लार्वा वहां जीवित नहीं रह पाएगा और मच्छर का संक्रमण से हम लोग बच सकते हैं।
1: बिल्कुल, क्योंकि साफ सफाई और मच्छरों से बचाव ही सबसे बड़ा बचाव है
0: जी।
1: अब अगर हम खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों की बात करें, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत इस मौसम में ज्यादा प्रभावित होती है, तो उनके लिए क्या खास सावधानियां जरूरी है?
0: जी बिल्कुल, बच्चे और बुजुर्ग दोनों ही वल्नरेबल एज ग्रुप में फॉल करते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों के लिए सजेशन रहेगा कि वो कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा अंदर खेलें, बाहर जहाँ पे पानी जमा है वहां ना खेलें, घर का साफ सुथरा खाना और पानी पिएं, फ्लू जो वैक्सीनेशन है अवेलेबल है हमारा वो चाहे तो लगवा सकते हैं, हैंड वॉश प्रैक्टिस करना है खाना खाने से पहले, रोज नहाना है, अगर बाहर खेलते वक्त या स्कूल से आते वक्त कपड़े गीले हो जा रहे हैं तो उनको आने के साथ घर में तुरंत बदलना है, और खुद के शरीर को ड्राई रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि बच्चों के नेल्स को ट्रिम करना चाहिए क्योंकि नेल्स में अक्सर गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, जर्म्स बैठ जाते हैं, फिर वो उसी हाथ से खाना खाएंगे तो उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस उनके टॉयज को भी क्लीन करना है
1: जी।
0: और एक बात और ऐड करना चाहूंगी कि बुजुर्गों में हमें ध्यान रखना है कि हमें उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, तो उसके लिए हम जैसे फ्रूट्स हमारे सीजनल फ्रूट्स हैं ऑरेंज गुआवा, खान पान में हम उसे इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल्सो इस सीजन में ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है जिसकी वजह से आपको पसीना बहुत निकलता है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शरीर में बिगड़ जाता है, तो उसमें हम लोग नारियल पानी जैसा पेय पदार्थ यूज कर सकते हैं
1: जी।
0: एक और आखिर बात ये हो सकती है कि इस सीजन में हम कोशिश करेंगे कि उन्हें बाहर अकेले ना जाने दें, क्योंकि कितनी बार होता है कि घर में या आंगन में जब बुजुर्ग निकलते हैं तो पानी जो जमा रहता है उसमें फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी।
0: तो उसकी वजह से उनको सर में चोट या कोई गंभीर फ्रैक्चर हो सकता है
1: जी। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शिल्पी जी, कई बार लोग सर्दी जुकाम, गले की खराश या हल्के बुखार को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
0: तो मैं इस संदर्भ में हाईलाइट करना चाहूंगी ऐसे सिम्टम्स जैसे कि हाई ग्रेड फीवर, जिसमें कि आपको साथ में कंपन महसूस हो रही है या शिवर कर रहे हैं आप
1: जी।
0: अगर आपको वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो रहा है, बॉडी एक यानी कि शरीर में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, या फिर परसिस्टेंट खांसी है, तो ऐसे सिम्टम्स को खुद से ना ट्रीट करें, कोशिश करें कि घर के आसपास अगर कोई क्लिनिक है या पीएचसी कोई सेंटर है तो वहां जाएं, क्योंकि अगर आप जल्दी जाएंगे तो अर्ली अगर हम लोग डेंगू या मलेरिया का डायग्नोसिस कर पाएंगे तो उससे हम कॉम्प्लिकेशंस को बचा सकते हैं और पेशेंट की स्पीडी रिकवरी हो सकती है।
1: बिल्कुल, यानी समय रहते सही कदम उठाना बहुत जरूरी है
0: जी। बिल्कुल,
1: चलते चलते हमारी श्रोता बहनों के लिए आपका कोई खास संदेश ताकि वे बारिश के मौसम में खुद को और अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सके।
0: जी, आखिर में ये बात बताना चाहूंगी, फिर मैं इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगी। पहला हमारा खान पान यानी कि साफ पानी पीना है, घर का ही खाना खाना है, विटामिन सी और सीजनल फ्रूट्स खाने हैं। दूसरा हाइजीन हो जाएगा जिसमें कि हमें अपने शरीर को सूखा रखना है, गीले कपड़ों से बचाना है, अगर बारिश के सीजन में आपका सॉक्स या कपड़े गीले हो रहे हैं तो उसको इमिडिएटली चेंज करना है, हाथ धोना है, मच्छर को घर में एंट्री रोकने के लिए मैश लगाना है, ओडोमॉस वगैरह यूज करना है, और कहीं पर भी अगर फ्लड वाटर पानी एक्यूमुलेटेड है हमारा तो वहां पर हमें कोशिश करेंगे कि अवॉइड करना है। आखिर में एक्टिव रहना है, एक्सरसाइज करनी है, 7 से 8 घंटे का स्लीप लेना है
1: जी।
0: इससे आप

0: जी डॉक्टर शिल्पी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे कार्यक्रम में दिया। बारिश के मौसम में सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारी श्रोता बहनों के साथ साझा की। उम्मीद है कि ये बातें सभी के लिए उपयोगी साबित होंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैम।
2: बहनों, अभी आपने सुनी भेंटवार्ता, बारिश के मौसम में होने वाली सामान्य बीमारियां और बचाव, जानकारी दे रही थी डॉक्टर शिल्पी झा और उनसे बातें कर रही थी रानी शुक्ला। और जानकारियों के बाद फिर से चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में इस गीत के साथ।

0: बहनों, बरसात में प्रेम, विरह, दुख, सुख की सारी यादें सिमटी होती हैं। लगभग हर किसी के जीवन में कोई यादगार घटना घटी होगी जो बरसात से जुड़ी होगी। तो रानी, वैसे तो कई यादें और भी हैं, लेकिन एक संस्मरण है जो कि बहनों से साझा करती हूँ। कई वर्ष पहले की बात है, एक छोटे से कस्बे में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रही थी मैं। अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, प्लेटफॉर्म पर भागदौड़ मच गई और उसी भीड़ में मेरी नजर एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। उनके पास एक कपड़े की गठरी, एक छोटा सा बक्सा और कुछ पौधे थे जिन्हें वो अपने गमछे से ढक रहे थे। उस छोटे से लकड़ी के बक्से में शायद कुछ किताबें थी जो बारिश में भीग रही थी, क्योंकि बक्से में थोड़ी सी दरारें थी। मैंने उत्सुकतावश जाकर पूछा, इतनी बारिश में आप खुद को बचाने से ज्यादा इस बक्से को बचाने की चिंता क्यों कर रहे हैं बाबा? उन्होंने कहा, बेटा, इसमें मेरी पोती की किताबें हैं जो पढ़ना चाहती है। बड़ी मुश्किल से पैसे जुटाकर उसके लिए ये किताबें खरीद लाए हैं हम, और ये पौधे भी उसके लिए ही हैं जो लगाएगी वो अपने आंगन में। इतना कहते कहते उनकी आंखें चमक उठी। तभी सामने खड़ा एक नौजवान, जो शायद हमारी बातें सुन रहा था, उसने उनका बक्शा और छोटे पौधे उठाया और अचानक से ले गया और उसे अपने बैठने वाली जगह पर सुरक्षित रख दिया। बुजुर्ग दंपत्ति को वो अधिकार से बोला, दादाजी, आप चिंता न करें, ये बारिश अब आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। आपकी पोती की किताबें और पौधे सुरक्षित उसके पास पहुंच जाएंगे। और ये सब होते होते ट्रेन भी आ गई। उस नौजवान ने सहारा देकर उन्हें ट्रेन में बिठाया। रानी, मैं सोच रही थी कि क्या ये बारिश अपने साथ इंसानियत की कुछ बूंदें भी बरसाती है कभी कभी। आज भी जब मैं यात्रा कर रही होती हूँ तो वो घटना पर बस ही याद आ जाती है।
1: इसलिए तो कहते हैं राखी की बारिश सिर्फ बूंदे नहीं बरसाती, यादें भी बरसाती हैं।
0: सच में,
1: है ना?
0: और चलते चलते बहनों से बस कुछ कहना है। क्या कहना है?
1: आयोडीन की जानकारी देनी है बहनों को। बहनों, आयोडीन हमारे शरीर के लिए एक अत्यंत आवश्यक खनिज है जो थायराइड हार्मोन बनाने में मदद करता है। इसकी कमी से गर्दन में सूजन, घेंघा और हाइपोथायराइडिज्म जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है, और इसकी कमी से बचने के लिए दैनिक आहार में आयोडीन युक्त नमक शामिल करना सबसे सरल और प्रभावी उपाय है।
0: हाँ, आयोडीन युक्त नमक खाएं, आयोडीन की कमी से बचें बहनों, क्योंकि इससे घेंघा रोग जो होता है उससे भी बचना जरूरी है। और देखिए ना, चलते चलते अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। बता दें आपको कि कार्यक्रम की प्रस्तुति थी श्री गौरव पांडे की, और इसी के साथ अपनी सखी राखी
1: और रानी को दे विदा। नमस्कार। गृह लक्ष्मी।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। शुरुआत करते हैं फिल्म न तुम जानो न हम, इस गाने से। आवाज उदित नारायण और पामेला जैन की है। इस गीत को लिखा आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

अगम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

0: ಸ್ವಯಂ ಈ ಕಟ್ಪಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸೇನಾ.
1: आइए सुनते हैं फिल्म कसूर से ये गाना, कुमार सानू की आवाज है.

आइए सुनते हैं फिल्म जुल्म से ये गाना। आवाज़ें मनहर उदास और साधना सरगम की है, शब्दों में पिराया है प्याम साईदी ने, संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म खुद गर्ज से, आवाजें मोहम्मद अजीज और साधना सरगम की है, शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। श्रीमती सीतारामन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस न्यायिक के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला में हाल ही में आए भीषण भूकंप में मृतकों की संख्या बढ़कर 2,595 हो गई है। इस आपदा में 12,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जबकि 189 इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। स्थिति को देखते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि घटना के सामने आने के बाद से ही दूतावास संबंधित स्थानीय अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच महत्वपूर्ण साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को सकारात्मकता से प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इनमें पेट्रोकेमिकल, रेलवे, सड़क, ऊर्जा और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर में दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि अमरनाथ यात्रा देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्थाएं की हैं। फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। 7 जुलाई मंगलवार को उसका मुकाबला कोलंबिया या घाना से होगा।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में एमबीबीएस पीजी और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और अब समाचार विस्तार से। पंचायती राज मंत्रालय आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा, जिसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी। कार्यशाला की अध्यक्षता केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह करेंगे और केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल भी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला के दौरान वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी 16वें वित्त आयोग के ग्रामीण स्थानीय निकाय अनुदानों को लागू करने के दिशा निर्देशों पर चर्चा होगी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग के अनुसार परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी आज से 9 जुलाई की शाम 5 बजे तक मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आयोग ने अभ्यर्थियों से आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में अपलोड करने तथा आवेदन की हार्ड कॉपी 14 जुलाई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में जमा करने को कहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के सीसीएल डकरा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, सीसीएल और केंद्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारी मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा कि इस विद्यालय के शुरू होने से क्षेत्र के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा मिलेगी तथा उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार करना चाहूंगा। मुझे याद है जब 2020 में चुनाव में मैं आया था, मैंने वादा किया था और केंद्रीय विद्यालय खुलेगा और उसके बाद 2020 में मैंने प्रश्नकाल में लोकसभा में कई बतवा फिर केंद्रीय विद्यालय खोलने की आवाज उठाई और उसके बाद यह आश्वासन दिया कि केंद्रीय विद्यालय जरूर खुलेगा।
0: जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या मामले में पुलिस ने दो आरोपियों सहित तीन नाबालिगों को हिरासत में लिया है। जमशेदपुर के एसएसपी एहतशाम वकारिब ने बताया कि एसआईटी का गठन कर तकनीकी साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।
2: दो जो नीद बालक है, जुनाइल बालक है, अराउंड 16 एंड 17 इयर्स के है, उन दोनों को है किया गया। अब प्रीवियसली लास्ट टाइम हम लोग तीन लोग को ऑलरेडी जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक सोनू सरदार है और एक है राज लोहार और एक बालक जो कि 16 साल का था, वो भी उसको भी नियुक्त किया गया है जुनाइल जस्टिस के तहत।
0: इधर आदित्यपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड के विरोध में भाजपा और समर्थित संगठनों के बंद का आज व्यापक असर देखने को मिला। प्रदर्शन के दौरान आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार समेत 40 से अधिक भाजपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। आदित्यपुर नगर निगम के मेयर संजय सरदार ने कहा कि इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य प्रशासन का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित करना है।
3: मशाल जुलूस के स्थल पर उतरे थे रोड पर और आह्वान किए थे आदित्यपुर बंदी का। लोग प्रशासन के खिलाफ हम लोग सरकार को जगाने का कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन हर जगह नाकाम है, इस पर उनका नाकामी साफ साफ दिख रही है और हम लोग स्पष्ट और कड़े शब्द से मैं विरोध करता हूं। हत्यारा को अविलंब गिरफ्तार करे, फांसी की सजा दे।
0: रांची में कांके राम मंदिर से प्रोजेक्ट भवन ध्रुवा तक के मार्ग को अतिक्रमण मुक्त, जाम मुक्त, सुरक्षित, स्वच्छ और हरित बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्य योजना पर चर्चा की गई। अभियान के तहत सड़क,

0: फुटपाथ, पार्किंग, ऑटो स्टैंड और वेंडिंग जोन का सुव्यवस्थित प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य सरकार ने रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रस्ताव के अनुसार MBBS सीटें 176 से 250, PG सीटें 180 से 275 और सुपर स्पेशलिटी सीटें 11 से बढ़ाकर 100 करने की योजना है, जिसे केंद्र सरकार और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को भेजा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ी हुई सीटों के अनुरूप भवन, हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, उपकरण, फैकल्टी और अन्य संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। बोकारो जिले के तेलमुंगा गांव में एक बुजुर्ग दंपति और उनके दिव्यांग पुत्र को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले का संज्ञान लिया है। परिवार की ओर से पेंशन नहीं मिलने की जानकारी मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामले की जांच कर पात्र लाभुकों को शीघ्र योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में चकला कोल माइंस क्षेत्र के दो आंगनबाड़ी केंद्रों का स्वरूप बदला है। यहां बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण, बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं और आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र की सेविका ने बताया कि निजी कंपनी के सहयोग से आंगनबाड़ी की व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
1: अभी जो है वैसा पहले नहीं था। अभी यहाँ पे टीकाकरण होता है, यहाँ पे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का लाभ दिया जाता है। हमारी सेंटर में यानी मेरे एरिया में जितना भी लाभुक है टोटल जुड़े हुए हैं। संख्या लगभग यहाँ पे टोटल जनसंख्या का आधार पर 1560 है।
0: श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक सनातन अध्याय बताया। भारतीय शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 511 अंक चढ़कर 78,013 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 160 अंक ऊपर आकर 24,336 पर पहुंच गया। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,36,100 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,42,000 रुपए प्रति किलो है। ताइक्वांडो। झारखंड ताइक्वांडो संघ और जिला ताइक्वांडो संघ के तहत 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता लोहरदगा में आज से शुरू हो रही है, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों से 700 खिलाड़ी, प्रशिक्षक, टीम मैनेजर और रेफरी हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का उद्घाटन उपायुक्त संदीप कुमार मीणा करेंगे और उद्घाटन समारोह में पुलिस अधीक्षक और संघ अध्यक्ष सादिक अनवर रिजवी समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे। और अब अंत में मुख्य समाचार। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आज पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला 16वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों पर होगी चर्चा। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित। सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा की आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू। जमशेदपुर हत्याकांड में पुलिस ने 2 आरोपियों सहित 3 नाबालिगों को लिया हिरासत में। विरोध में आज भाजपा के बंद का आदित्यपुर में दिखा व्यापक असर। रिम्स में MBBS, PG और सुपर स्पेशलिटी की सीटें बढ़ाने की तैयारी। आधारभूत संरचना के विस्तार की प्रक्रिया तेज। और लोहरदगा में आज से 26वीं राज्य जूनियर एवं सब जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता शुरू। 700 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा FM 100.5 पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शिप्रा पोस। इनसे सुनते हैं ठुमरी और दादरा।

0: एचआईवी एक विषाणु है जिसका संक्रमण एचआईवी संक्रमित रक्त के उपयोग, संक्रमित नीडल या सीरिंज के उपयोग, संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कंडोम के यौन संबंध बनाने या संक्रमित गर्भवती माँ से उसके नवजात शिशु को हो सकता है। एचआईवी एड्स की जानकारी के लिए नाको टोल फ्री नंबर 1-097 पर संपर्क करें या नाको एड्स ऐप डाउनलोड करें। झारखंड राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी।
1: आखिरी गजल सुनते हैं हरिहरन की आवाज में।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: Years after the war between Kiev and Moscow began. At least 40 people were killed and 8 others injured after a passenger coach plunged into a deep ravine on the Shirani-Zob highway in Pakistan today. The accident took place in the Danasar area near the border of Balochistan and Khyber Pakhtunkhwa. According to the Medical Emergency Response Center, 40 bodies have been recovered from the crash site. The injured have been shifted to the trauma center in Zob for treatment. The Indian Meteorological Department has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and West Madhya Pradesh till tomorrow. It has also predicted thunderstorms accompanied by lightning over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Vidarbha. More from our correspondent.
1: According to IMD, heavy to very heavy rainfall is expected over Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh, Gangetic West Bengal, Karnataka, Jammu and Kashmir, Ladakh, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Telangana and northeastern parts of the country till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Chhattisgarh, coastal Karnataka, East Madhya Pradesh, East Rajasthan, Himachal Pradesh, Keralam, Mahi, Uttarakhand and Vidarbha for the day. The weather agency noted that thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds is likely to prevail over Delhi, Haryana, Punjab, Chandigarh, Rajasthan, Andaman and Nicobar Islands, Gujarat and Jharkhand till tomorrow. Meanwhile, the Met Department has said that Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya will experience hot and humid conditions till Monday. With Soumya Sharan, this is Vishnu PS for Akashwani News, Delhi.
0: Heavy rain continued in several parts of Maharashtra today, while Mumbai witnessed rain for the fourth consecutive day. The Indian Meteorological Department has issued an orange alert for Mumbai for the next 3 days, with more than 150 millimetres of rainfall recorded in parts of the city during the last 24 hours. The Brihan Mumbai Municipal Corporation has kept its emergency teams on alert.
2: With continuous downpour in the metro city, waterlogging was reported from low-lying areas. Central and harbour railway services were delayed by 10 to 15 minutes. Western railway services remained normal. Heavy rain also continued in the Konkan region. In Ratnagiri district, an average of 69 mm rainfall was recorded during the last 24 hours. Water levels in major rivers have risen and the Jagburi River in Kher Taluka in Ratnagiri district has reached 4.9 meters, close to its warning level of 5 meters. Authorities are monitoring the situation. Meanwhile, as a precaution during the active monsoon season, the 5 battalion of the National Disaster Response Force has pre-positioned rescue teams across vulnerable districts in Maharashtra and Goa. Teams equipped with flood rescue equipment and trained personnel have been deployed to ensure a quick response to any rain-related emergencies. With Nivedita's report, Anuja Kumar, AIR News.
0: In the FIFA World Cup, Switzerland defeated Algeria 2-0 to reach the round of 16 in Vancouver, Canada. Switzerland will face either Colombia or Ghana on Tuesday at the same venue, aiming to reach the quarterfinals for the fourth time in their history. In another match, Spain defeated Austria 3-0 in the round of 32 at Los Angeles Stadium in Inglewood, California, to book a place in the round of 16. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi describes Amarnath Yatra as eternal chapter in spiritual tradition and cultural unity of the country, extends greetings to devotees. Finance Minister Nirmala Sitharaman invites French investors to partner with India's journey towards Vikasit Bharat 2047, calls for strengthening India-France strategic partnership. Two-day orientation program for newly elected members of Legislative Assembly begins in West Bengal. India steps up humanitarian assistance to earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad. Nearly 2,600 people died, thousands still missing. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over Gujarat, Goa, Madhya Maharashtra, Odisha and parts of Madhya Pradesh till tomorrow. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला को मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। समाचार विस्तार से। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालतल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिन की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे।
4: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
5: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
6: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
4: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
3: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि अमरनाथ यात्रा सबसे प्राचीन तीर्थ यात्राओं में से एक है। ये देश की आध्यात्मिक विरासत और उसकी आस्था को रेखांकित करती है। तीर्थयात्रियों को लिखे एक पत्र में श्री मोदी ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में एक शाश्वत अध्याय बताया। प्रधानमंत्री ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान 5 संकल्प लेने का भी आग्रह किया। इनमें पूरी यात्रा के दौरान स्वच्छता बनाए रखना, सभी सुरक्षा और प्रशासनिक दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना, वोकल फॉर लोकल पहल के तहत अपने यात्रा खर्च का कम से कम 10% स्थानीय उत्पादों पर खर्च करके स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करने, एक पेड़ माँ के नाम अभियान को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन पर भाई बहन को एक पौधा उपहार में देना, ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन और विकसित भारत के दृष्टिकोण में योगदान देकर राष्ट्र प्रथम की भावना को आगे बढ़ाना शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार ने पूरे मार्ग पर उच्च स्तरीय व्यवस्था की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत और फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। पेरिस में भारत फ्रांस व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश तकनीक, नवाचार, ऊर्जा और डिजिटल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
7: श्रीमती सीतारमन ने फ्रांस की कंपनियों और निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस एआई के क्षेत्र में भरोसेमंद साझेदार हैं। उन्होंने आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर और इंडिया स्टॉक जैसे डिजिटल सेवाओं का भी उल्लेख किया और कहा कि दुनिया के लगभग आधे रियल टाइम डिजिटल भुगतान भारत में होते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर वैश्विक वित्तीय केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है और इस निवेश तथा वित्तीय सेवाओं के नए अवसर उपलब्ध हैं। समाचार कक्ष से अमीषा।
3: भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला में ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत मानवीय और चिकित्सा सहायता को और तेज कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर राहत कार्यों की तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि भारतीय सेना का फील्ड अस्पताल वहां प्रभावित लोगों को लगातार आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं दे रहा है। वेनेजुएला स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि दक्षिण अमरीकी देश में भारत के मानवीय राहत प्रयासों को जनता से इसकी सेवा की गुणवत्ता के लिए व्यापक प्रशंसा मिली है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्से रोड्रिगेज ने 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। 24 जून को देश में आए जबरदस्त भूकंप में मरने वालों की संख्या लगभग 2,595 हो गई है, जबकि 12,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 189 इमारतें नष्ट हो गई हैं। पिछले सप्ताह काराकस के उत्तर में 7.5 और 7.2 तीव्रता के दो जबरदस्त भूकंप आए जिनसे भारी तबाही हुई। अधिकारियों ने बताया कि हजारों लोग लापता हैं और बचाव तथा राहत कार्य जारी है। भारत ने वेनेजुएला के अधिकारियों से नाविक राकेश चौहान के शव के साथ छेड़छाड़ और अंग निकाले जाने की घटना की गहन जांच की मांग की है। कैराकस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया घटना अधिकारियों के सामने इस मामले को उठा रहा है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची भारत की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट गई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस यात्रा से भारत और जापान के बीच रणनीतिक साझेदारी और मजबूत हुई है। दोनों देशों ने साझा विकास, समृद्धि तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। जापान कैबिनेट के जनसंपर्क अधिकारी ने आज भारतीय पारंपरिक अभिवादन नमस्ते के महत्व का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाईची ने भारत यात्रा के दौरान हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जापान के अधिकारी ने बताया कि दोनों हथेलियों को जोड़कर किया जाने वाला ये अभिवादन अंजलि मुद्रा कहलाता है और यह सम्मान, विनम्रता तथा आदर का प्रतीक है। जापान के कई समाचार पत्रों और मीडिया संस्थानों ने नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन को प्रकाशित किया है। इनमें दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहित कई क्षेत्रों में बेहतर होते संबंधों को रेखांकित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाईची द्वारा शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा के बाद इन्हें मजबूत करने के लिए किए गए समझौतों के बाद जापान के मीडिया ने इन्हें प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज कोलकाता के न्यू टाउन कन्वेंशन सेंटर में पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए दो दिन के संसदीय और विधायी कार्य से संबंधित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि बंगाल को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने के लिए काम किया जा रहा है।
8: बंगाल की विरासत जो गौरवपूर्ण है, उस विरासत को भी पुनर्जीवित करते हुए आधुनिकता के समय नए युग की तरह 2047 तक विकसित भारत के सपनों को साकार करने के लिए बंगाल को विकसित बनाने का, बंगाल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण, बंगाल को उद्योग व्यापार की दृष्टि से बेहतर बनाना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए आप सब मिलकर काम करेंगे।
3: श्री बिरला को उद्घाटन समारोह से पहले गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1947 में बंगाल की तत्कालीन विधान परिषद में वर्तमान पश्चिम बंगाल को भारत में शामिल करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। युवा मामलों के विभाग ने आज नई दिल्ली में माय भारत के उद्योग संघ सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उद्योग जगत के हितधारकों को माय भारत के इकोसिस्टम से परिचित कराना और उद्योग संघों, कॉरपोरेट तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को इस पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना था। इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में देश के युवाओं की प्रमुख भूमिका है। युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि सरकार युवाओं के लिए चल रहे कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने पर काम कर रही है।
9: इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के साथ माय भारत पोर्टल के और यूथ मिनिस्ट्री के बारे में यहाँ पे मीटिंग आज हमने आयोजित की है। माय भारत प्लेटफॉर्म के साथ कैसे अलाइन कर पाए कि जिसके माध्यम से और विजिबिलिटी हमारी बढ़े और ज्यादा से ज्यादा हम डिस्ट्रिक्ट तक, विलेजेस तक ये सभी प्रोग्राम इनको लेके जाए कि जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हमारे देश के युवाओं को होगा और एक अच्छा आउटपुट उसके माध्यम से हमें मिलेगा और नेशन बिल्डिंग के लिए ये हमारे यूथ आगे बढ़ के काम करेंगे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान और गुजरात दौरे पर रहेंगे। राजस्थान में वे जोधपुर हवाई अड्डे की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। 480 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना को सालाना 20 लाख यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है। प्रधानमंत्री राजस्थान के बालोतरा में 1,06,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में 3 अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। नियुक्त किए गए अतिरिक्त न्यायाधीशों में सुनीता गंधम, अल्लापति गिरिधर और पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार ऐप के माध्यम से आधार में ईमेल सीधे अपडेट करने की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई है। ये सुविधा 1 जुलाई से 6 महीने की अवधि के लिए लागू है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में आंधी तूफान और बिजली गिरने की भी संभावना व्यक्त की है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी तेज बारिश जारी रही। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन्मुंबई नगर निगम ने अपनी आपातकालीन टीमों को अलर्ट पर रखा है।
10: सक्रिय मानसून को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा मोचन दल NDRF की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में राहत एवं बचाव दलों की अग्रिम तैनात की है। बाढ़ बचाव उपकरणों और प्रशिक्षित कर्मियों से बनी ये टीमें मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, धाराशिव, नागपुर तथा अन्य संवेदनशील स्थानों पर तैनात की गई है, ताकि वर्षा से जुड़ी किसी भी आपत्ति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: पंजाब और हरियाणा के अधिकांश हिस्सों के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में 5 से 8 जुलाई तक तेज बारिश, बिजली और गरज के साथ तूफान की संभावना है। इसे देखते हुए चंडीगढ़ स्थित मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं सरफिरोजी।
11: फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली है। एक अन्य मैच में कैलिफोर्निया लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश किया। आज अर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 11:30 बजे से खेला जाएगा। बेल्जियम, अमरीका और इंग्लैंड भी कल राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने श्रीलंका और भारत के बीच क्रिकेट टेस्ट श्रृंखला के मैचों का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। ये श्रृंखला 15 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाल अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट मैच 23 अगस्त से कोलंबो में होगा। ये श्रृंखला ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
3: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.4% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 291 अंक बढ़कर 77,793 पर, जबकि निफ्टी 105 अंक की वृद्धि के साथ 24,281 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अमरनाथ जी यात्रा को देश की आध्यात्मिक परंपरा और सांस्कृतिक एकता में शाश्वत अध्याय बताया। श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने फ्रांस के निवेशकों को विकसित भारत 2047 की यात्रा में भागीदार बनने का निमंत्रण दिया। भारत फ्रांस की महत्वपूर्ण साझेदारी को मजबूत करने का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए 2 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम शुरू। भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए मानवीय सहायता तेज की। भूकंप से लगभग 2,600 लोगों की मौत, हजारों लोग अब भी लापता। गुजरात, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप में स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म उपकार से ये गाना। महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज है, शब्द में पिरोया है गुलशन बावरा ने, संगीतबद्ध की है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म धूल का फूल से ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज है, शब्दों में पिरोया है साहिल लुधियानवी ने, संगीतवर किए इन दत्ता ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म गुमराह से। महेंद्र कपूर की आवाज है, साहिल लिध्यानवी ने इस गीत को लिखा, संगीतबद्ध किया रवि ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 पर। अगला प्रसारण बस थोड़ी देर में।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 कमांडो स्पेशल ब्रांच के 3 अधिकारी 3 वाहन लौटा दिए हैं। मंत्री ने 2 माह पूर्व एक सुरक्षा वाहन मांगा था, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने जवाब देने के बजाय उनके काफिले से 1 गाड़ी कम करने का आदेश दे दिया। इसे अपमानजनक मानते हुए मंत्री ने डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा वापस कर दी। अब वे बिना किसी बॉडीगार्ड के चल रहे हैं। वार्षिक अमरनाथ यात्रा आधिकारिक तौर पर आज से शुरू हो गई है। यात्रा नुनवान पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से सुचारू रूप से चल रही है। सुबह सुबह बेस कैंप से निकले हजारों यात्री बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारों के बीच कठिन रास्तों पर पैदल यात्रा करते हुए देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: हजारों की तादाद में यात्री इस समय धार्मिक उत्साह के साथ पवित्र गुफा में भगवान शिव के आशीर्वाद लेने और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यात्रा के दोनों रास्तों पर यात्रियों को पानी, भोजन और विश्राम स्थल उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि इस कठिन यात्रा के दौरान उनकी सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उत्साहित यात्रियों ने सुविधाओं और व्यवस्थाओं की सकारात्मक प्रशंसा की है।
2: बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, यहाँ पे आ सकते हैं, सभी आ सकते हैं।
3: जो प्रशासन ने इंतजाम किया है बखूबी, बहुत अच्छा।
1: इस बीच आज सुबह जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी करके यात्रियों से निवेदन किया है कि वो केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा का आरंभ करें। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं रेश बाक्षा।
0: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरनाथ यात्रियों को शुभकामनाएं देते हुए इस यात्रा को सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। उन्होंने तीर्थ यात्रियों से 5 संकल्प, स्वच्छता नियमों का पालन, स्थानीय उत्पादों पर 10% खर्च, पौधे उपहार में देने और राष्ट्र प्रथम की भावना को अपनाने का आग्रह किया। झारखंड हाईकोर्ट ने संविदा पर कार्यरत एनएचएम कर्मियों के नियमितीकरण मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अंतरिम राहत देते हुए अंतिम आदेश तक कर्मियों को नौकरी से हटाने पर रोक लगा दी है। साथ ही नियमित वेतन देने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 21 अगस्त तय की है। प्रादेशिक समाचार, आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भाजपा द्वारा बुलाए गए जमशेदपुर बंद को एनडीए के सहयोगी दलों जेडीयू और आजसू पार्टी का पूरा समर्थन मिला है। विपक्षी दलों की इस एकजुटता के बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। बंद के कारण व्यापारिक प्रतिष्ठानों और स्थानीय परिवहन पर व्यापक असर पड़ा है। जेडीयू विधायक सरयू राय ने बंद को सफल बताया है।
4: इन लोगों ने अपने ही दुकानों को बंद रखा है, ऐसा स्कूल बंद ही है। हम वो देख रहे हैं कहीं भी कोई दुकान खुला हुआ नहीं है और व्यवसायी संघ ने भी बंद का समर्थन किया है। तो अभूतपूर्व बंद हुआ है, लोग अपने ही बंद के तौर पर अपना दुकान परेशान बंद करके रखे हैं। इससे सरकार को समझना चाहिए कि जमशेदपुर के लोग कितना दुखी है।
0: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले की जांच आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। कोर्ट से मिली मंजूरी के बाद एनआईए ने मुख्य आरोपी अमन अंसारी और सयाम सुजान को 7 दिनों की रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की है। इस हमले के तार दुबई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े होने का संदेह है। आरोपियों पर यूपीए के तहत मामला दर्ज हुआ है। सारंडा जंगल में नक्सलियों की धमक खत्म होने के बाद राज्य पुलिस ने जवानों के रोटेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आईजी अभियान नरेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 3 महीने से वहां नक्सलियों की कोई हलचल नहीं है और मानसून के दौरान जवानों को बरसाती बीमारियों से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है। वर्तमान में क्षेत्र में 10,000 जवान तैनात हैं और बचे हुए 15 वांटेड नक्सलियों की घेराबंदी के लिए अभियान जारी है।
5: मॉस्किटो से जो प्रिवेंशन के जो भी एक्टिविटीज हैं वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, दवाइयां उनको दे रहे हैं और इसका एक रोटेशन भी हम लोग जल्दी जल्दी करा रहे हैं। अब रस्ता टाइप का कोई चीज नहीं रह गई है, सब तितर बितर हो गया है और कंटिन्यूस फोर्सेस की अभी भी मोटिवेशन उसी तरह से बनाए हुए है। चारों तरफ से फोर्सेस में घेर के रखा भी हुआ है, सूचनाएं हम लोगों को मिल रही है और जल्दी भविष्य में अच्छा काम होने की उम्मीद है।
0: इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ विमलेश।
0: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, विजेंद्र कुमार, जयजान, नूर,

0: नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द राहुल जी ने लिखते हैं,
1: खुद को बेहतर बनाना ही असली प्रतिस्पर्धा है। किसी से भी ईर्ष्या का सीधा मतलब ये है कि हमने सामने वाले व्यक्ति को हमसे ज्यादा श्रेष्ठ मान लिया है।
0: बहुत बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू, दिव्यांश और सूरज कुमार ढाकसे जी लिखते हैं,
0: प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। हमें आपका उमंग कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। हम आपका उमंग कार्यक्रम FM और DTH के रेडियो चैनल पर सुनते हैं। आपके उमंग कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक जानकारियां सुनने को मिलती हैं, जो हमें बेहद पसंद आती हैं। धन्यवाद।
1: छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
0: आप सभी श्रोताओं को हम धन्यवाद प्रस्तुत करते हैं संदेशों को भेजने के लिए। निवेदन है कि इसी प्रकार से हमारे उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए अब चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। इस सप्ताह श्रोताओं हम बात कर रहे हैं खनिज पदार्थों की।
1: अब तक हमारी चर्चा का विषय रहा कोयला, सोना और हीरा। तो अजीत जी, आज हमारा क्या विषय रहेगा? श्रोता बड़ी उत्सुकता से ये जानना चाहते हैं।
0: विमलेश जी, आज हमारा विषय बहुत रोचक होने जा रहा है। आज हम एक ऐसे खनिज की बात करेंगे जो पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाता है, और तो और हम उस पर चलते फिरते भी हैं। अच्छा चलिए, श्रोताओं को दीजिए कुछ हिंट।
1: ठीक है, तो श्रोताओं, उस खनिज का उपयोग हमारे कंप्यूटर, मोबाइल और अनेक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी किया जाता है। ये हमारे शरीर में भी पाया जाता है।
0: और ये कुछ पौधों में भी पाया जाता है, विशेषकर बांस और घास में तो पाया ही जाता है।
1: श्रोताओं, ये हमारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर्स में तो होता ही है, इंटरनेट के उपकरणों और अंतरिक्ष के उपग्रहों में भी चिप्स के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। और हाँ, इससे कांच भी बनता है। तो श्रोताओं, आपने समझ लिया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं।
0: अगर आप सोच रहे हैं कि वो खनिज पदार्थ सिलिका है तो आप बिल्कुल सही हैं। आइए अब जानते हैं कि सिलिका क्या है। विमलेश जी, आपसे करते हैं शुरुआत।
1: श्रोताओं, सिलिका सिलिकॉन और ऑक्सीजन से बना एक प्राकृतिक खनिज है। ये पृथ्वी की भूपरपटी में सबसे अधिक पाए जाने वाले खनिज पदार्थों में से एक है। आइए सबसे पहले जानते हैं सिलिका शब्द कहाँ से आया।
0: श्रोताओं, सिलिका शब्द लैटिन भाषा के सिलेक्स शब्द से आया है, जिसका अर्थ है चकमक या कठोर पत्थर। बता दें कि पृथ्वी की सामान्य रेत का अधिकांश भाग सिलिका से ही बना होता है। इसी सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन बनाया जाता है,
1: और इसी सिलिकॉन से बनते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगाए जाने वाले चिप्स। सुंदर क्वार्ट्ज क्रिस्टल वास्तव में सिलिकॉन का ही रूप है। अजीत जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, वो ये है कि क्या जिस रेत या धूल पर हम चलते हैं, क्या वही सिलिका है?
0: विमलेश जी, ऐसा कहना आंशिक रूप से सही है, पर पूरी तरह से नहीं। ये जानना जरूरी है कि साधारण रेत या धूल के कण पूरी तरह से सिलिका नहीं होते। धूल कई प्रकार के कणों का मिश्रण होती है, जैसे मिट्टी, जैविक पदार्थों के अवशेष और कुछ खनिज।
1: बता दें कि सिलिका सबसे अधिक रेगिस्तान और समुद्र की रेत में पाई जाती है, लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा क्यों?
0: ऐसा इसलिए कि रेगिस्तान बनते हैं बहुत सारी चट्टानों के टूटने से। इन चट्टानों में खनिज पदार्थों के रूप में सिलिका पहले से ही मौजूद होती है। चट्टानों के टूटने से सिलिका के कण रेत और मिट्टी में फैल जाते हैं, और जहाँ तक समुद्र की बात है, यहाँ सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है, क्योंकि नदियाँ समुद्र की ओर बढ़ती हुई पहाड़ों और चट्टानों को जब अपने जल प्रवाह से घिसती हैं, तो उन चट्टानों में मौजूद सिलिका के कणों को समुद्र तक ले आती हैं। श्रोताओं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि समुद्र तट की एक मुट्ठी रेत में मौजूद सिलिका के कणों ने हजारों किलोमीटर की यात्रा की है। तो विमलेश जी, हजारों वर्षों से मनुष्य सिलिका या रेत को देखता आया है, लेकिन ये विचार कैसे आया कि ये इतना महत्वपूर्ण है?
1: इसकी कहानी बड़ी रोचक है। 1824 में स्वीडन के रसायन शास्त्री जॉन जेकब वर्जिलियास ने पहली बार सिलिका से ऑक्सीजन को अलग करके सिलिकॉन की खोज की। लेकिन प्राचीन काल से ही मिस्र और चीन के लोगों ने इसके द्वारा कांच और आभूषण बनाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि ये बहुत चमकदार होता है। 1906 में पहली बार इससे पहला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया गया।
0: फिर धीरे धीरे शोध होते गए, और आज ये मानव सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। आज हम इसके बिना सौंदर्य प्रसाधनों, चिकित्सकीय उपकरणों, उद्योगों, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, सौर उपकरणों और उपग्रहों की कल्पना तक नहीं कर सकते।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी सिलिका खनिज के बारे में। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।

0: तो हमारा आज का प्रश्न है, सिलिका और सिलिकॉन में क्या फर्क है? आप हमारे IVRS नंबर पर यानी 8800-440-5559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIT NCERT को फॉलो जरूर कीजिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।
1: इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इतिहास के विभिन्न स्रोतों के बारे में विस्तार से बताया गया है और संदेश दिया गया है कि हमारी ऐतिहासिक विरासत महान है।
2: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता है?
3: है ना साथियों, अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहां छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगी,
4: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
5: हाँ, 2000 साल पहले।
6: नानी माँ।
7: हाँ निधि।
6: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
7: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
6: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
7: हाँ हाँ, बताती हूँ, जल्दी क्या है।
6: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
7: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
6: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
7: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
6: नाना नानी के शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
7: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
6: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है।
7: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
6: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
7: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना?
6: मामा जी, मामा जी।
8: अरे निधि, ओ आदिका, कैसी कट रही है तुम्हारी छुट्टियाँ?
6: बहुत अच्छी तरह मामा जी, आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
8: ये तो बहुत अच्छी बात है
6: जी, उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था। मामा जी, भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
8: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ, जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
6: ये किसी खुदरी से शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
8: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
6: अच्छा, भोज वृक्ष।
8: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
6: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
8: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
6: अच्छा।
8: और बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
6: ये किस भाषा में है?
8: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
6: मामा जी अब आगे भी बताइए ना।
8: हाँ, बताता हूँ। अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
6: अच्छा।
8: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
6: अच्छा।
8: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
6: अच्छा।
8: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं और शिलालेख को
6: एपिग्राफ।
8: शाबाश निधि।
9: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
8: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
9: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
8: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
6: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
8: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
6: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
8: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
0: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख?
1: आशा है श्रोता मित्रों, आपको ये कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। श्रोताओ, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह माना जाता है, लेकिन सच ये है कि इससे पहले भी बहुत से लोगों ने स्वतंत्रता के लिए स्थानीय रूप से अपनी आवाजें बुलंद की।
0: इनमें से बहुत सारे जनजातीय या आदिवासी समूह थे, जिनमें बिरसा मुंडा, सिद्धो कान्हू इत्यादि बहुत प्रसिद्ध हैं।
1: जी।
0: लेकिन आज श्रोताओं, आपको विशेष रूप से हम बताना चाहते हैं कि कई जनजातीय महिलाएं भी रहीं
1: जिन्होंने स्थानीय रूप से स्वतंत्रता का झंडा बुलंद किया। इनमें आज हम सुनेंगे कार्यक्रम रानी दुर्गावती पर, जो गोंड आदिवासी समुदाय से संबंधित हैं। उनकी वीरता के किस्से आज भी गोंडवाना भूमि यानी आज के छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में गाए और सुनाए जाते हैं।
0: तो आइए सुनते हैं श्रोताओं, कार्यक्रम रानी दुर्गावती।
10: हमारे देश के इतिहास में स्त्रियों के त्याग और महानता की अनगिनत कहानियां मिलती हैं। ऐसी कुछ विरल स्त्रियों में से एक है रानी दुर्गावती। दुर्गावती का जन्म मध्य प्रदेश के महोबा नामक स्थान पर सन 1524 में हुआ था। उसके पिता कीर्ति सिंह कालंजर के राजा थे। दुर्गावती अभी छोटी ही थी कि उसकी मां का देहांत हो गया। पिता ने उसे बचपन से ही घुड़सवारी और अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दी और ये देखकर बहुत खुश होते कि उनकी बेटी राजनीति और शासन की समस्याओं को सुलझाने में भी उतनी ही कुशल थी जितनी तीर चलाने में। एक बार की बात है,

0: शाबाश शाबाश मोती शाबाश, आज तुमने खूब साथ दिया। हाँ मैं जानती हूँ कि तुम थक गए हो, तुम्हें प्यास भी लग रही है, पर क्या करो, तुम तो शिकार के पीछे इतना तेज दौड़े कि अपने सब साथी पीछे छूट गए। चलो कुछ देर यहीं आराम करते हैं, तब तक बाकी लोग भी आ जाएंगे। ये लो, कुछ लोग तो शायद आ ही पहुंचे। अरे ये क्या, ये तो हमारे साथियों में से कोई नहीं, इसके कपड़ों से तो लगता है कि ये कोई मुगल सरदार है।
1: माशाल्लाह, ऐसी खूबसूरत लड़की और वो भी इस बयाबान जंगल में।
0: आपने मेरा रूप तो देखा, पर शायद ये नहीं देखा कि मेरे हाथ में तीर कमान भी है।
1: जी हाँ देख रहा हूँ, पर सच पूछे तो आप जैसी हसीन लड़कियों के हाथ में तीर कमान शोभा नहीं देते।
0: बस बस वहीं खड़े रहो, शायद तुम नहीं जानते कि मैं कालंजर की राजकुमारी दुर्गावती हूँ।
1: अखा तो आप ही हैं राजकुमारी दुर्गावती। अरे वाह, जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे आपकी सुंदरता और बहादुरी के किस्से तो दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस इलाके के सभी राजे रजवाड़े आपको पाने की हसरत रखते हैं। ज़हे नसीब जो आपके दीदार हुए। अब जरा
0: फिर आगे बढ़ रहे हो, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? कौन हो तुम?
1: मैं आसिफ खान हूँ, कड़ा का सूबेदार। आपको अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ, और आज जब ऐसा सुनहरी मौका हाथ आ ही गया है तो अभी आपको अपने साथ ले जाऊंगा।
0: जरा हाथ तो लगाकर देख आसिफ खान, तूने दुर्गावती का रूप देखा, अब दुर्गा का रूप भी देख।
1: अच्छा वाह, और
0: हाँ तो आसिफ खान, अब जरा अपनी बात दोहराओ। मेरी तलवार तुम्हारा लहू चखने को बेचैन है।
1: मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप तो मेरी बहन जैसी हैं।
0: ठीक है, पर आइंदा कभी किसी लड़की पर बुरी नजर मत डालना, वरना इस देश की बेटियों को दुर्गा और चंडी बनते देर नहीं लगती।
1: अजी मेरी तौबा, जो अब किसी की तरफ आंख उठाकर भी देखूं।
0: चल बेटा मोती।
1: आज की इस बेइज्जती को मैं कभी नहीं भूलूंगा दुर्गावती। तुमसे आज की हार का बदला ना लिया तो मेरा नाम भी आसिफ खान नहीं।
2: एक बार दलपच्छाह ने राजा कीर्ति सिंह को शिकार खेलने के लिए मनियागढ़ के जंगलों में आने का निमंत्रण दिया। शिकार की शौकीन दुर्गावती भी साथ गई। दलपच्छाह इस साहसी युवती पर मुग्ध हो गए और उसे अपनी पत्नी बनाने का निश्चय कर लिया। दोनों का विधिवत विवाह हुआ। डेढ़ वर्ष बाद दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया। बालक का नाम वीर नारायण रखा गया। लेकिन दुर्गावती के जीवन का यह सुख शांति का समय अधिक दिन नहीं रहा।
0: आधार सिंह जी, आप स्वर्गीय महाराज के मंत्री ही नहीं थे, आप उनके मित्र और चिंतक भी थे, आप ही बताइए मैं क्या करूं।
3: महारानी आप स्वयं योग्य हैं, मैं भला आपको क्या सलाह दे सकता हूं, पर हां इतना अवश्य जानता हूं कि स्वर्गीय महाराज अपने जीवन काल में बराबर राजकाज में आपसे सलाह लेते थे और आपकी राय की कदर करते थे। वे ये कभी पसंद नहीं करते क्या आप कायरों की भांति जीवन से मुंह मोड़ लें?
0: ठीक है आधार सिंह जी, घोषणा करवा दीजिए, कुमार वीर नारायण गोंडवाने के नए राजा हैं और रानी दुर्गावती आज से सिर्फ उनकी ही नहीं समस्त गोंड राज्य की माता है।
3: राजमाता की जय, राजमाता की जय हो, राजमाता की जय हो।
2: रानी दुर्गावती ने शासन की बागडोर अपने मजबूत हाथों में संभाल ली। उसने किसानों को अधिक उत्पादन के लिए प्रेरित किया, उद्योगों को प्रोत्साहित किया, पानी की समुचित व्यवस्था के लिए कुएं और तालाब खुदवाए, पुराने कुओं की मरम्मत करवाई। वह राज्य के सभी भागों के अधिकारियों को बुलाकर उनकी समस्याओं के बारे में बातचीत करती और कभी कभी स्वयं भी दौरा करती थी। राजकीय कोष और सेना की रानी स्वयं देखभाल करती थी। उसके कुशल शासन में गोंडवाना एक संपन्न राज्य बन गया। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर ने गोंडवाना पर अधिकार करना चाहा। आसफ खां के नेतृत्व में मुगलों की बड़ी भारी फौज गोंडवाना की ओर चल पड़ी। रानी पहले से सतर्क थी। आक्रमण हुआ। रानी की सेना बहुत बहादुरी से लड़ी। कई मोर्चों पर तो उसकी जीत भी हुई। लेकिन रानी के एक पुराने शत्रु रेवतीगढ़ के राजा सुधार सिंह ने धोखा दिया। सुधार सिंह साधु के वेश में इधर उधर फिरता और जासूसी करता। उसी ने अकबर को गढ़ा पर हमला करने के लिए प्रेरित किया था। इनाम जागीर पाने के लालच में वो इधर की खबर उधर पहुंचाया करता था।
4: अलख निरंजन।
5: साधु बाबा।
4: अब अच्छा,
5: यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? ये रानी दुर्गावती का किला है, साधुओं का जमघट नहीं।
4: अरे वो तो हम भी जानते हैं बच्चा, लेकिन साधु तो रमता राम होते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, अभी मुगलों की छावनी से चले आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ, बाप रे बाप, क्या लश्कर है बच्चा
5: है?
4: हाथी, घोड़े, तोप, बंदूक, बड़ा भारी इंतजाम है।
5: अच्छा?
4: हाँ,
5: बहुत बड़ी फौज है।
4: और नहीं तो क्या बच्चा, अरे मुगल लोग जब चूहे के शिकार पर भी निकलते हैं ना, तो शेर के शिकार की तैयारी करके चलते हैं। और फिर यहाँ, अरे यहाँ तो रानी दुर्गावती से मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त तैयारी करके निकले हैं बच्चा।
5: तो हमारे यहाँ भी जबरदस्त तैयारी है बाबा।
4: अच्छा,
5: रानी माने रसद, पानी, हथियार सबका ऐसा बंदोबस्त किया है कि मुगल साल भर भी घेरा डाले पड़े रहे तो भी गढ़ में किसी चीज की कमी नहीं होगी।
4: हैं? क्या कहते हो बच्चा, साल भर का इंतजाम है?
5: बिल्कुल है।
4: और भगवान ना करें कोई हारी बीमारी ऐसी हो जाए कि बाहर निकलना जरूरी हो जाए तो?
5: उसका भी इंतजाम है।
4: अरे हटाओ, बाहर मुगल फौज घेरा डाले पड़ी हो तो तुम्हारी रानी भला क्या इंतजाम कर देगी?
5: देखो हैं? तुम्हें बताने में कोई हर्ज नहीं, पर किसी और से ना कहना।
4: नहीं नहीं अच्छा, किसी से नहीं कहेंगे?
5: हाँ, हमारे महल से एक गुप्त सुरंग शहर के बाहर वाले बगीचे तक जाती है।
4: गुप्त सुरंगों का पता तुम्हारे जैसे मामूली सैनिकों को कैसे पता चलेगा? यूं ही डींग मार रहे हो तुम।
5: यूं ही डींग नहीं मारता साधु महाराज, मैं बदन सिंह हूँ, बदन सिंह, रानी माँ का खास सेवक। इतना सा था जब मुझ अनाथ को रानी माँ ने सहारा दिया था।
2: और पुरुषवेश में लड़ रही रानी के बहादुरी देखकर मुगलों के छक्के छूट गए। मुगल सैनिक जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दूसरे दिन फिर घमासान युद्ध हुआ। वीर नारायण घायल हो गए थे। उन्हें रणभूमि से दूर चौरागढ़ भेज दिया गया। रानी हाथी पर बैठकर लड़ रही थी कि तभी
6: क्या हुआ रानी माँ? अरे आपकी कनपटी में तीर लगा है माँ।
0: मेरा ध्यान छोड़ गनू, तू हाथी को संभाल।
6: हाथी को क्या संभालू रानी माँ, ये तो पहले ही भालों से चिप चुका है। अब तो कुछ देर संभला रह सके तो बड़ी बात है, लेकिन आप कितना खून बह रहा है।
0: ये खून तो वीरांगनाओं का आभूषण है कनू।
6: रानी माँ देर न कीजिए, आप मेरा ये घोड़ा लेकर यहाँ से शीघ्र निकल जाइए। चौरागढ़ में राजा साहब भी हैं, वहीं जाना ठीक रहेगा।
0: अब इसका समय नहीं रहा आधार सिंह जी, मुगल सैनिक चारों ओर से घिरते आ रहे हैं। आसिफ खान से मेरा पुराना बैर है, उसके हाथों अपनी दुर्गत कराने से अच्छा है आप अपने हाथों मेरा अंत कर दें।
6: नहीं नहीं रानी माँ, नहीं, ये पाप मुझसे नहीं हो सकेगा, इसकी आज्ञा मुझे मत दीजिए रानी माँ।
0: अच्छा तो गनू बेटा, तू अपनी कटार मुझे दे।
6: रानी माँ मेरी कटार से अपने प्राण लेकर तुम मुझे इस तरह पापी नहीं बना सकती माँ। मैं तुम्हारा महावत हूँ, तुम्हारे साथ ही रहूंगा।

0: श्रोताओं, इसी के साथ अब हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम रांची मेलोडीज बस थोड़े ही देर में।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: स्वयं ही घट पड़े भारतीय सेना।
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म लिबास के इस गीत से। लता मंगेशकर की आवाज है, संगीत पर किया राहुल देव बर्मन ने।

जीते हैं शान से, इस फिल्म से गाना सुनते हैं। आवाजें अमित कुमार, शब्बीर कुमार, शैलेंद्र सिंह, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति की है। शब्दों में पिरोया है इंदिवर ने, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से। आवाज़ें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की है, शब्द रचना मजरूह सुल्तानपुरी की, संगीत पद किया राहुल देव परमन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम रांची मेलोडीज यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य सरकार ने कैथी लिपि में लिखे पुराने भू अभिलेखों और खदियान को पढ़ने के लिए कैथी लिपि पाठ्य पुस्तक तैयार की है। विभाग के सचिव चंद्रशेखर के अनुसार वर्तमान में इस प्राचीन लिपि के जानकारों की कमी के कारण भूमि विवादों को दूर करने के लिए यह पहल की गई है। UIDAI ने आधार ऐप पर मुफ्त ईमेल अपडेट सेवा शुरू कर दी है। 1 जुलाई से 6 महीने के लिए जारी इस सुविधा से 2 दिन में 2.5 लाख से अधिक लोगों ने ईमेल अपडेट किया। इससे हर ऑथेंटिकेशन का रियल टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे आधार की सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ेगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने आज नगर पंचायत सरायकेला के इंदिरा टाणी मोहल्ले में घर घर जाकर SIR कार्य का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने पदाधिकारियों को त्रुटि रहित और समयबद्ध कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। गुमला प्रशासन और CUD लाइफ इंश्योरेंस ने डुमरी के लवाबार में वाटर लिफ्टिंग सिंचाई योजना का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सिरमी और ओखरागढ़ में नवनिर्मित विद्यालय भवन शिक्षा विभाग को सौंपे गए। इस दौरान स्कूल परिसरों में पौधारोपण भी किया गया। जामताड़ा पुलिस ने करमाटांड थाना क्षेत्र के सियाटांड और लकड़ाटार गांवों में छापेमारी कर 3 अशातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर DSP अमित कुमार के अनुसार इस कार्रवाई में अपराधियों के पास से 7 मोबाइल, 6 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। राज्य के 7 जिलों पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम, रांची, गुमला, खूंटी, सरायकेला, खरसावां, सिमडेगा में अगले कुछ घंटों में तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जन, वर्षपात और हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने किसानों को खेतों में ना जाने और सुरक्षित स्थानों में रहने की सलाह दी है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

0: आकाशवाणी रांची से नशर उर्दू प्रोग्राम में हम अपने तमाम सामईन का दिली खैर मकदम करते हैं। सामईन, आज के उर्दू प्रोग्राम में आपसे रूबरू है आपके दोस्त फौजिया तजीन। सामईन को प्यार भरा आदाब। और सामईन, हमारे साथ हैं हमारे साथी।
1: मैं आपका दोस्त हिदायतुल्लाह। आदाब फौजिया।
0: आदाब,
1: और कैसे हैं?
0: बखैर हूँ। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे और हमारे सामईन भी।
1: बिल्कुल फौजिया, और मौसम तो आप देख रही हैं, मौसम ऐसा है जो कि खैरियत से रहने नहीं दे रहा है।
0: बिल्कुल, जुलाई का महीना शुरू हो गया है सामईन, तो हम समझ ही रहे हैं कि बरसात का मौसम है, तो इस मौसम में तबीयत तो नासाज होनी ही है।
1: देखिए, और वैसे भी रांची जो है ये फर्स्ट हाफ में सख्त धूप होती है और सेकेंड हाफ में धुआंधार बारिश।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मौसम ऐसे तब्दील होता है जैसे कि लगता ही नहीं है कि सुबह निकले हैं कि छाते की जरूरत पड़ेगी और बाद में फिर छाते की जरूरत पड़ जाती है।
1: इसी को पल में शोला पल में शबनम कहते
0: बिल्कुल
1: हैं
0: बिल्कुल,
1: फौजिया।
0: जी हाँ।
1: तो ये जरूरी है कि हम अपना खास ख्याल रखें। ये कहा जाए कि बहुत सारी बीमारियों का दस्तक होता है।
0: बिल्कुल, तो सामईन, आज हम अपने प्रोग्राम में सबसे पहले इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि मौसम में बरसात में होने वाली बीमारियों से आप कैसे बचें।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है फौजिया, और इसके लिए एक तरह से बेदारी पैदा करना नहायत ही जरूरी है। मौसम बरसात में आम तौर से छतों के ऊपर पानी का जमाव होता है, पानी का संचार सही नहीं होता है, तो उसके वजह से मलेरिया के, डेंगू के बहुत सारे मच्छर जो है ना जन्म लेते हैं।
0: बरसात में हिदायतुल्लाह, सबसे पहले तो इन मच्छरों से और मक्खियों से ही बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती हैं, तो हम अपने सामईन से यही कहेंगे कि वो पानी का जमाव जो होता है उसे ना होने दें, और हम ये भी कहना चाहेंगे अपने सामईन से कि आप ज्यादातर हो सके तो आप घर के खाना खाने की कोशिश करें, बाहर के खाने से बचें, क्योंकि बाहर ठेले पर जो इतनी सारी मक्खियां भनभनाती हैं उससे बहुत सारे जरासीम होते हैं जो हमारे अंदर चले जाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं।
1: हाँ बिल्कुल फौजिया, ये बात तो है, इन साथ में ये बात भी है कि अगर आप अपने घर का भी खाना खाएं तो कोशिश करें कि ताज़ा खाना बनाकर ही खाएं, और अपने घरों को फेनाइल से ज़रूर पोछा लगाएं। यूं ही पानी से पोछा ना लगाएं, बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है होते हैं कोने में इधर उधर, तो ज़रूरी है कि पानी में फेनाइल डाल दें। और एक चीज़ और फौजिया, हम अपने सामीन को कहना चाहेंगे, अपनी बहनों को, अपनी माओं को कहना चाहेंगे कि आप अपने घरों में जो बर्तन मलते हैं और उसका जो स्कॉच होता है उससे भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आप उस स्कॉच को हफ्ता रोज से ज्यादा इस्तेमाल ना करें, या ये कहा जाए कि आप उसको इस्तेमाल करने के बाद एक बार खौलते हुए पानी में जरूर डालें,
0: या उसको सुखा कर रखें,
1: हाँ,
0: नम रखने से
1: हाँ,
0: भी उसमें कीटाणु पैदा हो सकते हैं।
1: बिल्कुल, सख्त धूप में जो है ना रखा जाए। जी,
0: तो ये सब तो बातें हो गई हिदायतुल्लाह, अब हम बातें करते हैं हमारे 1 से 7 जुलाई तक हम मनाते हैं वन महोत्सव सप्ताह। तो सामईन, वन महोत्सव पेड़ों का एक बहुत बड़ा त्योहार है जो हर साल जुलाई के पहले हफ्ते में पूरे मुल्क में मनाया जाता है। इसका आगाज 1950 में कन्हैया लाल मनिक लाल मुंशी ने किया था, ताकि लोगों में जंगलात की हिफाजत और शजरकारी यानी कि पेड़ लगाने के तई बेदारी पैदा की जा सके। इस खास मौके पर लाखों नए पौधे लगाए जाते हैं जिससे हमारी जमीन सरसब्ज और शादाब बनती है। वन महोत्सव हमें ये पैगाम देता है कि पेड़ पौधे न सिर्फ माहौलियात तवाजुन को बरकरार रखने के लिए जरूरी है, बल्कि इंसानी जिंदगी की बका और आलूदगी के खात्मे के लिए भी बेहद जरूरी है।
1: बिल्कुल फौजिया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इंसान तरक्की की आंधी और तरक्की के राह पर बहुत तेजी से दौड़ रहा है, लेकिन इन तरक्की की राह में वो सबसे बड़ी जो गलती कर रहा है कि जंगलों की कटाई, पेड़ पौधों की कटाई कर रहा है, और उसकी जगह पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो जा रही हैं। बेशक आप तरक्की के चाहे जिस पायदान पर कदम रख दें, लेकिन आप ये याद जरूर

0: रखें कि अगर हमें ऑक्सीजन मिलता है तो पेड़ पौधों और हरियाली से ही मिलता है, और यही पेड़ पौधे हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करते हैं। इस तरह से हमारी माहौलियात खूबसूरत बनती है। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी आने वाली नस्लें अच्छी रहें, सेहतयाब रहें, तो पेड़ पौधों की कटाई के बजाय आप उस पौधों को लगाने में ज्यादा तवज्जो दें।
1: बिल्कुल, मैं तो अपने सामईन से ये कहूंगी कि आप कोई भी खुशियां मनाते हैं, जैसे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे हो या शादी की सालगिरह हो या कुछ भी आप करते हैं, तो उसमें आप ये एहतमाम करें कि एक पौधा भी आप जरूर लगाएं, ताकि वो एक तनावर दरख्त हो जाए जिससे हमारा माहौल खुशगवार हो, हमारे माहौल में आलूदगी कम हो, जो हमारे आने वाली नस्ल के लिए बहुत बेहतर और कारामद होगी।
0: ये तमाम बातें तो है फौजिया, और हम और भी बातें करेंगे अपने सामीन से, लेकिन हम अपने सामीन को अभी लिए चलते हैं एक खूबसूरत नगमे की तरफ।
1: तो सामईन, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा।

0: सामीन, अभी आप लुत्फानंदोज हो रहे थे इस खूबसूरत से नगमे के साथ। अब हम बातें करेंगे हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक अजीम और निडर मुजाहिदे आज़ादी फ्रीडम फाइटर, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम, उनके विलादत के मौके पर।
1: बिल्कुल फौजिया, एलोरी सीतारमन राजू बरतानवी हुकूमत के खिलाफ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के एक अजीम और नीडर मुजाहिद थे और उन्होंने आंध्र प्रदेश के रंपा इलाके में मकामी आदिवासियों के हुकूक की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बड़ी बगावत की क़ियादत की।
0: बिल्कुल हिदायतुल्ला, जिसे रंपा बगावत कहा जाता है, उन्होंने मकामी आवाम को मुतहिद किया और बरतानवी फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का रास्ता अख्तियार किया। उनकी शुरुआत कुर्बानी और वतन परस्ती की वजह से उन्हें मन्यम विरुड़ू यानी जंगल का हीरो के खिताब से नवाजा गया। वो आज भी आवाम के दिलों में एक अजीम रहनुमा के तौर पर जिंदा है।
1: हाँ बिल्कुल फौजिया, और एक और शख्सियत है जिनकी पैदाइश भी 4 जुलाई को ही हुई थी और उनका नाम है गुलजारी लाल नंदा। तो आप उनकी हालात जिंदगी पर मुख्तसर रोशनी डालें।
0: बिल्कुल, गुलजारी लाल नंदा एक निहायत ही ईमानदार और सादा मिजाज सियासतदान थे, जिन्होंने भारत के वजीर आजम के तौर पर 2 मरतबा मुल्क की खिदमत की। जब भी वजीर आजम के ओहदे पर रहते हुए किसी रहनुमा का इंतकाल हुआ, तो उन्होंने आर्जी तौर पर हुकूमत की बागडोर संभाली और मुल्क को एक बड़े सियासी बहरान से बचाया। उनकी पूरी जिंदगी सादगी की एक आला मिसाल थी और उन्होंने हमेशा आवाम की भलाई और मजदूरों के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। अपनी दयानतदारी और खुलूस की वजह से उन्हें मुल्क का सबसे बड़ा एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया।
1: और फौजिया, एक और भी बहुत ही अहम शख्सियत की हालात जिंदगी पर हम बात करेंगे, इसलिए कि 6 जुलाई को उनकी यौमे वफात है। लेकिन इससे पहले हमारे स्टूडियो में मौजूद एक मकाला निगार जनाब महफूज आलम साहब जलवा अफरोज हैं। तो आइए सामीन सुनते हैं जनाब महफूज आलम से उनका मकाला, जिनका उन्वान है अच्छी हुक्मरानी आवाम की खिदमत की बुनियाद।
2: कामयाब जमहूरी निज़ाम के लिए अच्छी हुक्मरानी लाजमी शर्त है। यह वो मजबूत सतून है जिस पर जमहूरियत पायदारी के साथ कायम रहती है। जमहूरियत में आवाम अपने नुमाइंदों का इंतखाब करते हैं, जो आवामी फलाह को मद्दनज़र रखते हुए कानून साजी करते हैं। इन कवानीन का मकसद लोगों की बहबूद, हुकूक का तहफ्फुज़ और माशरती इंसाफ है। कवानीन का मौसर नफाज उनके मतलूबा नतायज को यकीनी बनाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अच्छी हुक्मरानी से क्या मुराद है। अच्छी हुक्मरानी से मुराद ऐसा निज़ाम है जो कानून साजी और नफाज को शफाफियत, जवाबदेही और अदल के साथ अंजाम दे। इसमें अवामी फलाह, इंसानी हकूक और वसी समाजी व इक्तसादी अहदाफ को तरजीह दी जाए। बदनवानी सिफर हो, कानून का इस्तेमाल जिम्मेदारी और बगैर तफरीक के किया जाए और तमाम शहरियों के साथ मुनसफाना सलूक हो। इसका बुनियादी हदफ अवामी खिदमात की शफाफ फराहमी, मसावी तरक्की का फरोग, अवामी एतमाद में इजाफा और हर फर्द के लिए यकसा मौके की दस्तियाबियत है। अच्छी हुक्मरानी हुक्मरानों को आवाम के सामने जवाबदेह बनाती है और कानून की हुक्मरानी को मुस्तहकम करती है। अच्छी हुक्मरानी की कलीदी खसूसियात होती हैं शफाफियत और बदउनवानी का खात्मा, इदारे ईमानदार और मुनसफाना हों, ज़ाती मुफादात से बालतर होकर काम करें, कानून की बालादस्ती, हर शहरी कानून की नज़र में बराबर हो, नफाज गैर जानबदाराना हो जो अकलियतों और कमज़ोर तबकात का इतमाद बढ़ाता है, अवामी नुमाइंदगी।

अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।

श्रोताओं, आइए आपको जानकारी दे दे हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी 4:35 से आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम। शाम 5 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। 5:02 का समय होगा युववाणी कार्यक्रम का। 5:30 श्रमिक लोक। शाम 6:02 पर खेती बारी। शाम 7 बजे प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे। 7:15 पर आदिवासी अखड़ा कार्यक्रम में आज का कार्यक्रम है हो भाषा में। 7:45 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम सहिया का। रात्रि 8 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा। 8:30 का समय होगा सुर्खियों में। 8:45 से हमारे दिल्ली केंद्र से समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। रात्रि 10 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनहरी यादें। रात्रि 10:30 का समय होगा शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम का, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे कलाकार सबिता राय को। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचारों का प्रसारण किया जाएगा। तो ये थी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी।

ये आकाशवाणी आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सांझ सरगम। सांझ सरगम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म परदेश के इस गीत के साथ। गायक हैं कुमार सानू, संगीत नदीम श्रवण का है और बोल हैं आनंद बख्शी के।

और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत है फिल्म बाजीराव मस्तानी से। गायक कलाकार हैं अरिजीत सिंह, संगीत संजय लीला भंसाली का है और बोल हैं एम टुरस की।

0: इस गीत के साथ ही हमारा आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। लीजिए सुनी प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। राज्य में एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि क्यूआर कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेस वार्ता आयोजित कर उन्होंने इस घटना को कानून व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया। देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें ओपीडी और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंध ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। हजारीबाग सदर अस्पताल परिसर में आज मिशन परिवार विकास अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत की गई। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ अगले 3 महीनों तक जिले के विभिन्न गांवों में घूमकर लोगों को परिवार नियोजन, सही उम्र में विवाह और बच्चों के बीच सुरक्षित अंतर रखने के प्रति जागरूक करेगा। देवघर उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने जनता दरबार में कम अनाज देने वाले डीलर और मोहनपुर प्रखंड में म्यूटेशन मामलों में लापरवाही की जांच के लिए समिति गठित की है। 1 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देते हुए उन्होंने अवैध भूमि कब्जाधारियों पर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। सांध्यकालीन सभा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूँ छवि। अब आपको आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में हम बता देते हैं आपको कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर बाद यानी संध्या के 5:05 पर आपको हम सुनवाएंगे कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। 5:30 से 6 तक आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी, जिसमें चर्चा की जाएगी कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां। मनोरंजन होगा उड़िया लोकगीत से दुखिया मार्डी और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अल्प वर्षा में किए जाने वाले फसलों की खेती से लाभ के बारे में बताएंगे। भेंटवार्ताकार हैं देवेंद्र सोए और उनसे बातें कर रहे हैं कमलेंदु महतो। कुरमाली लोकगीत आप सुनेंगे संतोष महतो और साथियों के स्वर में, साथ ही बाजार भाव भी बतलाया जाएगा। संध्या के 6 आपको पुनः लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहाँ से आप सुनेंगे मुख्य समाचार।

संध्या के 6:02 से 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम हो अखड़ा, जिसमें चर्चा की जाएगी मिश्रित खेती से लाभ के बारे में। मनोरंजन होगा हैरो दुरंग से, जगबंधु बारी और साथियों के स्वर में। भेंटवार्ता प्रस्तुत किया जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग से युवाओं को रोजगार की संभावनाएं। भेंटवार्ता कर रहे नानोसिर का, भेंट करता है महेंद्र गुड़िया। इसके अलावा आप आहिंदी लोकगीत सुनेंगे मेलानी बोद्रा और साथियों के स्वर में। 6:30 पर होगा बच्चों का कार्यक्रम नन्ही दुनिया, जिसमें चर्चा की जाएगी अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस के बारे में। साथ ही आप भेंटवार्ता सुनेंगे। 6:55 पर आपको लिए चलेंगे हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल। 7:15 से रात्रि के 8 बजे तक आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

रात्रि के 8 बजे से 8:45 पर होगा फरमाशी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा। 8:45 पर आपको लिए चलेंगे हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे समाचार संध्या। रात्रि के 9 बजे से 9:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 9:15 से रात्रि के 10 बजे तक आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। रात्रि के 10 बजे से 10:30 पर होगा गजलों का कार्यक्रम महफिल हमारे चाईबासा केंद्र से। चाईबासा केंद्र से ही आप सुनेंगे 10:30 से रात्रि के 11 बजे तक सुरु के रंग कार्यक्रम। रात्रि के 11 बजे से 11:05 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। और रात्रि के 11:05 से 11:10 तक आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से ही। और रात्रि के 11:10 में हमारे सभा समापन की उद्घोषणा की जाएगी। तो श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत।

श्रोताओं, इस समय संध्या के 5:06 हो रहे हैं। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीत का, जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। आप सबको छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, आज जावेद अख्तर के लिखे गीतों में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है तेजाब। अमित कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ें हैं, जावेद अख्तर के बोल हैं जैसा कि मैंने पहले कहा, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आपको फिर से सुनवाते हैं ये गुलदस्ता कार्यक्रम में जावेद अख्तर के लिखे गीत। कृपया थोड़ा इंतजार करें।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गुलदस्ता में एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। अभी आप सुन रहे थे 1942 ए लव स्टोरी का गीत कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, और इस गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से हम आपको सुनवा रहे हैं आज एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। श्रोताओं, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है लव स्टोरी।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे शिवा चट्टोपाध्याय के स्वर में ये गीत। फिल्म का नाम था लव स्टोरी। जावेद अख्तर के लिखे बोल थे और संगीत था आरडी बर्मन का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में चलते चलते आपको हम सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया। किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें हैं और जैसा कि मैंने पहले बताया, जावेद अख्तर के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना एक ही गीतकार जावेद अख्तर के लिखे कुछ गीत। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेती गृहस्थी।

सभी किसान भाई बहनों को कमलेंदु का सप्रेम जोहार एवं आज के खेती गृहस्थी कार्यक्रम में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। फिलहाल अचानक तेज बारिश और कभी कभी बिजली की चमक और गर्जन भी हो रही है, तो ऐसे स्थिति में अपने आप को सतर्क रहना, सजग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बिजली की चमक या फिर गर्जन हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप कभी भी पेड़ के नीचे या फिर कोई भी बिजली के खंभे के

नीचे कभी भी ना रहें, सूखे स्थान पर सुरक्षित रहें और बिजली के उपकरण कभी भी ना छुएं। या फिर अपने पास मोबाइल फ़ोन है तो इसे भी फ्लाइट मोड में या फिर ऑफ करके रखें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे कभी कभार दुर्घटनाएं भी हो जाती है और इससे बचने के लिए हमें बहुत सारे उपाय हैं जिनका पालन करना चाहिए। और किसान भाई बहनों, समय समय पर बारिश होने से अचानक कभी कभी हम भीग जाते हैं, और भीगने से अचानक गर्म शरीर में भीगने से कभी कुछ ना सर्दी जुकाम बुखार आना ये आम बात है, तो हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहना जरूरी है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो कृषि कार्यों को अंजाम दे पाएंगे, तो इन बातों को जरूर ध्यान देंगे। और अक्सर किसान भाई बहनों देखा जाता है कि खेतीबाड़ी के क्षेत्र में सभी किसान स्पर्धा प्रतिस्पर्धा के भावना से अपने फसलों को लगाते हैं और अधिक से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए या फिर मुनाफा कमाने के लिए, इसके लिए स्वाभाविक है कि वे उचित मात्रा से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल कीटनाशकों का व्यवहार भी करते हैं। और किसान भाई बहनों, रासायनिक कीटनाशक इतने प्रभावी और असरदार होते हैं कि इनके इस्तेमाल से ज़रा भी लापरवाही अगर किए गए तो फिर हमारे त्वचा हो या फिर सांस के माध्यम से हो या फिर फेफड़ों में तथा आँखों में कई तरह के हानि पहुँच जाते हैं, इसलिए इनके प्रयोग के समय सावधानी बहुत ही जरूरी है। जैसे जब भी छिड़काव करें तो शांत वातावरण हो और हाथों में दस्ताने या ग्लोव्स पहने, नाक में मास्क लगाएं, आँखों में चश्मा और माथे पर कोई टोपी या गमछे जरूर बांधें, और हवा के विपरीत दिशा में छिड़काव करना चाहिए ताकि त्वचा पर या फिर सांसों के जरिए हमारे शरीर पर ना प्रवेश करे और हम सुरक्षित रह सकें। और एक बात किसान भाई बहनों, बेहतर होगा कि आप सभी रासायनिक कीटनाशकों को छोड़ करके अगर हम जैविक यानी स्वनिर्मित घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेहतर होगा, क्योंकि ये जहरीले भी नहीं होंगे और स्वास्थ्य के लिए तथा पर्यावरण के लिए भी कोई हानिकारक भी ना होगा और अपने घर पर ही हम स्वयं निःशुल्क बना सकते हैं। तो किसान भाई बहनों, इन सभी बातों को आप जरूर ध्यान देंगे और घरेलू नुस्खों का व्यवहार ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे अपने फसलों में ताकि हम स्वस्थ रह सकें और किसी प्रकार का कोई हानिकारक ना हो मिट्टी के लिए पर्यावरण के लिए। तो इन बातों को जरूर आप ध्यान देंगे और आगे हम बहुत कुछ जानकारी देंगे इस खेती गृहस्थी कार्यक्रम के माध्यम से आपके बीच। आज हमारे मेहमान के रूप में देवेंद्र सोए जी भी हैं जो जानकारी देंगे अल्प वर्षा कम पानी में हम किन किन फसलों को खेती करके अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं प्यारा सा संथाली लोकगीत।

0: तो किसान भाई बहनों, अभी हम आनंद ले रहे थे इस संथाली लोकगीत का, और इस लोकगीत के पश्चात हम मिलते हैं एक प्रबुद्ध कृषक, हमारे अभी देवेन जी हैं। तो यूँ तो हम बारिश के समय कई प्रकार के सब्जी और अनाज फसल लगाते ही हैं, इसके साथ साथ कभी कभार ऐसा भी मौसम आ जाता है कि बारिश कम और नहीं के बराबर होती है। तो ऐसे मौसम में भी हमारे किसान भाई निराश नहीं होते हैं और कुछ न कुछ खेती करना चाहते हैं जो कम समय में, अल्प अवधि में और कम बारिश में। ये कैसे संभव हो? कौन कौन से ऐसे सब्जियां हैं या फिर फसलें हैं जिनको हम कम पानी में कर सकते हैं? तो इन सभी बातों को लेकर के आज मिलते हैं हमारे एक प्रबुद्ध कृषक जी के साथ। किसान भाई बहनों, आज हमारे बीच में है एक प्रबुद्ध कृषक जो सालों भर कुछ ना कुछ खेतीबाड़ी करते हैं, और आज हम एक खास विषय को लेकर के आए हैं, जैसे कि कम बारिश में, अल्प वर्षा में हम कोई भी सब्जी या फसल किस तरह से खेतीबाड़ी करें और क्या क्या कर सकते हैं, इन विषय को लेकर के हमारे बीच में हैं देवेंद्र सोई जी के। तो हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो देवेंद्र जी, जैसे कि आप तो सब दिन खेतीबाड़ी करते हैं, तो कभी कभार बारिश समय पर नहीं होती है, तो ऐसे कम बारिश में, कम पानी में हम लोग क्या क्या खेती कर सकते हैं?
1: देखिए, अभी तो बोलेंगे कि अभी बारिश कभी हो भी रही है और कभी हो भी नहीं रही।
0: हाँ, समय कम से नहीं हो रही है,
1: तो मतलब ऐसे अब बारिश नहीं होगी फिर भी हम लोगों को खेती तो करना ही है।
0: हाँ, हाँ।
1: तो मतलब ऐसे अभी तो बारिश है, लेकिन नए

0: जैसे कि अब ये कंद वाला हो गया आपका, सब्जी भी हो गया, जो भी
1: लत्तर वाला भी,
0: वो सब हम लोग तो झरनी से पानी देके हम लोग सब कर सकते हैं।
1: कम पानी भी उसको डाल करके कर सकते हैं।
0: जो लत्तर हो गया आपका, फिर और आपका आएगा ये सब, हाँ भरबट्टी सब,
1: जो भी लत्तर भरबट्टी है, करेला है, खीरा वगैरह सब, इसमें तो ज्यादा पानी होने से अगर उसका लत्तर भी तो सड़ जाता है ना।
0: जी
1: अच्छा, इसमें मैंने जल निकास का भी व्यवस्था करते हैं, ज्यादा अगर बारिश होती तो फिर पानी निकालते होंगे उससे से ना।
0: जी अब देखिए, वो तो मतलब लत्तर है ना, तो उसमें तो आपका पानी निकालने का जगह भी अच्छा से आ जाएगा।
1: हाँ,
0: उसमें और फिर उसमें मतलब उसमें पानी उतना रहता नहीं है,
1: रहता नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऊंचा करके उसमें बीज डालते है ना।
0: जी अब उसमें ऊंचा करके देंगे तो फिर हाँ भीग तो जाएगा,
1: नमी रहेगा,
0: पौधा को पानी भी मिल जाएगा, लेकिन पानी वहाँ टिकेगा नहीं,
1: टिकेगा नहीं। तो उस तरह का मैंने बनावट करते हैं उसका थाला, और ऐसे लगाते हैं। और जंगली क्षेत्र में भी, जैसे आप लोगों का ये ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी तो ऐसे जो हल्की जुताई में या फिर कम पानी में जो मोटे अनाज हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, गांगे और मकई, ये सब भी तो करते होंगे।
0: जी अब देखिए, ये सब तो मतलब खेती तो करने का ही है, जैसे कि आपका देखिए धान हो गया तो करना ही है। अब बारिश करे या फिर हम लोग का हल नहीं लगे, अब जैसे होगा मतलब
1: वैसे,
0: कभी अच्छा नहीं होता है, कभी होता है, वैसा होता है। अब पानी नहीं करेगा तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ता है,
1: करना पड़ेगा। जैसे भी सुविधा हो वैसे ही मैंने बीजों का आप लोग इस्तेमाल करते हैं ना। जैसे आपके क्षेत्र में क्या कम अवधि वाला कुछ ऐसे किस्में हैं, चाहे धान हो या फिर दूसरा कोई भी दलहन वगैरह सब, तो ये सब तो करते होंगे, जैसे अरहर हुआ या गोड़ा धान वगैरह भी तो करते होंगे पठार।
0: जी हाँ, अब अभी तो सीजन धान का चल रहा है, अब धान के बाद हाँ वो सब होता है, दाल, हाँ दलहन, दाल
1: और दूसरा सब,
0: हाँ दूसरा सब भी। अभी तो अभी सब तरफ धान ही लगेगा।
1: हाँ,
0: फिर सभी धान ही लगा रहा है, हम लोग भी धान लगा रहे हैं। हम लोग का इधर घोड़ा सब में बस ये कंद सब, लत्तर सब थोड़ा दिए, सब्जी सब लगाए हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो ऐसे समय में जो पहले अगर बारिश का अगर इंतजार ना करते हुए हम लोग घोड़ा धान करते हैं, जिसमें वो तो कम बारिश में मैंने और कम दिन में हो जाता है शायद।
0: जी हाँ, मतलब घोड़ा खेत में बोलेंगे ना, तो उसमें मतलब आपका जो भी लगाए होंगे पहले, सबका खाद सब भी होता है।
1: अच्छा,
0: तो उसमें बहुत ही जल्दी आपका ग्रोथ करता है ये सब,
1: सड़क वाला जो भी ये सब कंपोस्ट खाद वगैरह सब रहता ही है
0: उसमें। आपका जैसे कि आपका बीज सब ही हो गया, अब टमाटर दिए तो टमाटर का कुछ सड़ गया होगा, वो सब वहाँ पर खाद बन जाएगा, तो उसमें थोड़ा खाद ज्यादा मिलता है तो बढ़ता जल्दी है और जल्दी उग जाता है।
1: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए कोई भी मैंने पठारी क्षेत्र में, ढलान क्षेत्र में भी कोई भी मैंने किसी प्रकार का जमीन में भी कर सकते हैं ना।
0: जी हाँ।
1: अच्छा, तो उसमें सिंचाई के लिए कोई व्यवस्था मशीन या फिर ऊपर वाला का कोई जरूरत नहीं है?
0: नहीं, मतलब अब अगर सिंचाई के लिए बारिश करेगा तो ठीक, अब नहीं करेगा तो हम लोग के इधर पहाड़ी क्षेत्र में तो उतना सुविधा नहीं है। पर हाँ ऐसे ही कभी कभार अगर ज्यादा ही हम लोग का ये अब खेत में धान है, धान में तो पूरा खेत में तो आप पानी नहीं दे सकते हैं ठोके, तो बस ऐसे ही अगर सब्जी सब में ऐसा जरूरत होता है तो किसी किसी में दे देते हैं बस।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो ऐसे ही होता है तो।
1: और हल्की बारिश में अगर पहाड़ी क्षेत्र में हो जाता है तो फिर वही पानी बह करके नीचे आ जाता है।
0: जी,
1: ढलान रहता है जमीन इसीलिए।
0: जी,
1: तो ये सब कितना, 2 महीना में, 60 दिन में तैयार हो जाता है, और सब्जी तो इससे कम समय में भी तैयार होता है।
0: जी हाँ, अब हाँ धान तो वही लगभग 60-2 महीना तक में हो जाता है।
1: हाँ, ऐसे कम अवधि में होने वाला भी ऐसे किस्म है ना।
0: जी
1: अच्छा, उसका मतलब उपज कम होता होगा लेकिन हो जाता है जल्दी।
0: जी
1: से। और ऐसा घोड़ा धान आपके क्षेत्र में कैसा मांग करते हैं उसका? कोई तो पूजा पाठ करते हैं, नया भी खाते हैं, तो अच्छा दाम में बिकता होगा ये सब?
0: हाँ बिकता है, मतलब अभी धान का क्वालिटी भी होता है ना। हाँ, हाँ, ऐसा धान ऐसा मतलब जिस टाइप का धान रहेगा उस टाइप में बिकता है।
1: अच्छा, उसके हिसाब से दर।
0: तो ऐसे घोड़ा धान सबका थोड़ा अच्छा ही रेट मिलता है, और उसका भारी भी होता है। अच्छा
1: अच्छा अच्छा, हाँ।

0: लिए तो पानी का उतना आवश्यकता नहीं है, काहे कि अभी आप हाँ बर्तन तो धोने का पानी दे देने से भी वो अच्छा हो जाता है,
1: पानी जो भी होता है
0: जी।
1: और आसपास में जो झाड़ू वगैरह करते हैं तो वही जो कूड़ा करकट होता है वही उसके लिए खाद
0: खाद बन जाता है।
1: अच्छा, मैंने ये सब हम लोग अपने घर आंगन में छोटा सा जमीन में भी कर सकते हैं
0: जी।
1: अच्छा, तो ऐसे कम बारिश हुआ कभी कभार देखा जाता है कि हम लोग पानी का बचत करने के बारे में सोचते हैं, और हर किसान को सोचना भी चाहिए। तो कम बारिश के या फिर कम पानी के लिए क्या विधि अपनाते हैं आप लोग? वही बूंद बूंद वाला ड्रिप सिस्टम अपनाते हैं कि फवारा वाला, क्या क्या शुरुआत करते हैं?
0: अब हम लोग के इधर तो पानी का दिक्कत है और हम लोग बचत में चलते हैं। अब बस ऐसे पानी का कमी पूरा करने के लिए हम लोग बूंद बूंद ये करते हैं।
1: अच्छा,
0: अभी सभी में पानी मिल जाए। अब फुहारा करेंगे तो किसमें पानी आएगा किसमें नहीं,
1: हाँ जिसका जिसको मैंने सुविधा है या इस तरह का सुविधा मिला है सरकार की तरफ से, तो ये सब भी मैंने व्यवस्था आप लोग करते हैं ना
0: जी।
1: अच्छा, तो जो बलुआही जमीन है जैसे नदी किनारे आप लोग का कई जमीन है, तो सब में तो आप लोग कंद वाला सब्जी लगाते होंगे
0: जी। अब बलुआही जमीन में वही कंद वाला सब्जी
1: अच्छा
0: वही अच्छा होता है।
1: कंदा भी जल्दी बढ़ता है और मैंने उसके लिए हल्की और ऐसे ही मैंने भुरभुरा मिट्टी चाहिए ना
0: जी।
1: तो ये सब कितने दिन में लगभग तैयार हो जाते हैं? 30-40 दिन या फिर 2 महीना से भी कम लगता होगा?
0: हाँ, मतलब 2 महीना से कम ही लगता है।
1: अच्छा,
0: उतना जल्दी मतलब उतना भी जल्दी नहीं होता है, लेकिन हाँ जैसे काम के ऊपर डिपेंड करता
1: है। मतलब जैसा खाद हुआ और
0: जैसा खाद मिलेगा, मतलब जिस टाइप का बीज आएगा जैसा खाद देंगे उतना जल्दी होता है वही। बस हाँ 30-40 दिन लगता है।
1: मैंने लगाने के पहले मिट्टी की तैयारी अच्छी तरह से करनी चाहिए
0: जी।
1: जितना मिट्टी अच्छा भुरभुरा होगा और उसमें पोषक तत्व जो भी खाद वगैरह अच्छा होगा तो फिर पौधे भी जल्दी बढ़ेंगे नहीं
0: जी।
1: तो इसके लिए आप लोग बीज जल्दी से बढ़े कम समय में तैयार हो, इसके लिए बीज वगैरह सब मैंने वैसे ही विश्वसनीय या फिर अच्छे किस्म का कहाँ से लाते होंगे ऐसे
0: जी? हम लोग तो बस जितना भी खेती करते हैं बस सालों भर हम लोग एक ही आदमी से बीज लाते हैं
1: जो
0: मतलब एक ही जगह से लाते हैं हमेशा से, वहीं से ला रहे हैं और वहाँ का बीज भी हम लोग का अच्छा होता है और वहीं से करते हैं, तो उस विश्वास है कि हाँ वो अच्छा बीज देगा तो वहीं से लाते हैं।
1: अच्छा, मतलब उसमें कोई धोखा नहीं होता है और पैसा भी बेकार नहीं जाता है। कहें कि जो भी उन्नत बीज होते हैं हाइब्रिड किस्म के, ये तो बहुत कीमती भी होते हैं, ज्यादा ही इसका रेट होता है नहीं
0: जी।
1: अच्छा, और देसी किस्म में जैसे हर साल कोई लगाते थे पहले जैसे, तो वो सब भी आजकल लगाते हैं कि धीरे धीरे ये सब छोड़ते जा रहे हैं?
0: नहीं, मतलब अभी तो देखिए सभी मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहिए काम जल्दी करने के लिए तो।
1: अच्छा अच्छा,
0: लेकिन ये भी कि हाँ पहले का जैसे होता था ये गाय से हल जोतना, हाँ वो सब भी अच्छा था, पर अभी सबको समय बचाने के लिए यही ट्रैक्टर से
1: आधुनिक तरीके से जो कृषि यंत्र का उपयोग कर रहे हैं
0: जी,
1: इसमें
0: उसमें समय का भी बचत हो रहा है और फिर मतलब अपना शरीर को भी नुकसान नहीं हो रहा है, तो अच्छा
1: कम मेहनत में जल्दी काम हो जा रहा है, निपट जा रहा है नहीं। अच्छा, इसमें जैसे आप लोग जो भी जल्दी बढ़ने के लिए अच्छा उपज पाने के लिए बहुत सारे ऐसे कीटनाशक और जो भी रासायनिक खाद वगैरह सब का इस्तेमाल तो करते होंगे, तो क्या ये सब आप भी वैसे करते हैं कि धीरे धीरे इसमें कम कर रहे हैं, या फिर और भी जो नए घरेलू नुस्खे आपने स्वयं बना करके कंपोस्ट खाद हुआ जैविक खाद हुआ केचुआ ये सब का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्या?
0: जी, हम लोग तो अधिकतर जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो करना चाहिए अच्छा है और फिर जैविक खाद के उपयोग से नुकसान कुछ नहीं होता है।
1: स्वास्थ्य के लिए भी पर्यावरण के लिए भी, तो इस सब अपने से भी हम लोग बना सकते हैं, जो भी अपना फसल बेकार हो गया जुताई करके या काट फिर के, तो वही सब सड़ा गला करके हम लोग फिर से बना सकते हैं
0: जी।
1: तो उसमें तो कोई हानिकारक तो है नहीं, तो ये सब क्या आपको देख करके अन्य किसान कुछ लाभान्वित हो रहे सीख रहे हैं कि आसपास में?
0: हम लोग मतलब बोलेंगे इधर, हाँ हम लोग के इधर आसपास में सबको यहाँ जैविक खाद का उपयोग करते हैं।
1: अच्छा अच्छा,
0: मतलब आप देखिए
1: थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन बहुत असरदार होता है
0: जी,
1: मतलब काफी दिनों तक ये उपजाऊ रहता है मिट्टी ना। अच्छा, तो इसमें अंततः हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहें कि जो ऐसे ऐसे किस्म है जो बारिश नहीं भी हो तो निराश ना हो और खेती बाड़ी को लगातार वो कायम रखे, क्या कहना चाहेंगे?
0: अंत में यही कहना चाहते हैं कि अभी बारिश होगा कि नहीं वो तो कोई नहीं जानता है, तो हम लोग को आखिरी तक काम करने रहना चाहिए, खेती करते रहना चाहिए। वो तो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा खेती होगा।
1: हाँ, सोचना पड़ता है क्या मैं ये ज्यादा

0: हम ऐसा चीज खेती करें जिसमें हमारा धोखा भी ना हो और हमारा जो मेहनत है बेकार ना हो ना
1: जी।
0: तो कुछ ना कुछ तो सालों भर करते हैं, तो ऐसे सोचने के लिए भी तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ना
1: जी।
0: तो आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
1: जी। जोहार।
2: तो किसान भाई बहनों, अभी हम मिल रहे थे एक प्रबुद्ध कृषक से जो अपने क्षेत्र में कम बारिश में यानी कि अल्प वर्षा में भी हम किस तरह का खेती कर सकते हैं और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो किसान भाई बहनों, कभी कभार ऐसा होता है मौसम कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है या फिर कम बारिश होती है, तो बहुत ज़्यादा होना भी नुकसान है और कम होना तो हम खेती बाड़ी के लिए थोड़ा सोच भी नहीं सकते। इसीलिए समय के अनुसार और सही मात्रा में अगर बारिश होती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि हम पर्यावरण को संतुलित कैसे बनाएं, हमारे पारिस्थितिकी के संतुलन को कैसे कायम रखें। इसके लिए हमें सबसे पहला जरूरी है कि हम अधिक से अधिक कोई भी बंजर या खाली परती जमीन सब में वृक्षों का हम बागवानी करें, चाहे वो सीधे बढ़ने वाले हों या फिर जैसा सुविधा हो आप कोई भी इमारती लकड़ियाँ, फलदार पौधे सब चीज़ लगा सकते हैं। ये नहीं कि एक खास दिन में 5 जून को ही लगाया जाए, कभी भी लगा सकते हैं। बारिश का मौसम है, आजकल अगर कुछ भी लगाते हैं तो बहुत जल्दी बच भी जाता है और बढ़ता भी है। इसीलिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। धीरे धीरे पर्यावरण सामान्य होगा और समय पर बारिश, समय पर सब कुछ होगा, मौसम अच्छा रहेगा, तो फिर हमारा खेतीबाड़ी का कार्य भी सही तरीके से होगा। तो हमें इन बातों पर जरूर ध्यान देना चाहिए। तो बातों को विराम देते हुए पुनः हम मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा कुरमाली लोकगीत संतोष महतो एवं साथियों के स्वर में।

0: श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है। अब आपको लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से आप सुनेंगे मुख्य समाचार बस कुछ ही पलों में।
1: जमीन विवाद, आवास योजना, राशन कार्ड जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे और प्रखंड कार्यालय की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दंतोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया। इस मेले में पहुंची 13 कंपनियों ने लगभग 50 बेरोजगार युवक युवतियों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार से जोड़ते हुए ऑफर लेटर सौंपे। रामगढ़ में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत उपायुक्त ऋतुराज सहित जिले के कई वरीय अधिकारियों और समाज सेवियों ने निक्षय मित्र की भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों को पोषण पोटली उपलब्ध कराई। इस सराहनीय पहल में जिला प्रशासन के अधिकारियों और स्थानीय डॉक्टरों ने स्वेच्छा से वित्तीय सहायता प्रदान की। खूंटी जिले के साइको थाना क्षेत्र के किताहत गांव में 75 वर्षीय इतवारी देवी की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। डायन के संदेह में पड़ोसी दीनय मुंडा और मंगल मुंडा ने धारदार हथियार से हमला किया था। एसपी ऋषभ गार्ग के निर्देश पर गठित टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। धनबाद में होमगार्ड भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को उपायुक्त अजय रंजन से मिलकर मेडिकल जांच और दस्तावेज सत्यापन जल्द पूरा करने की मांग की। 2017 की लंबित बहाली का असर पड़ने की आशंका पर उपायुक्त ने भरोसा दिलाया कि वर्तमान प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी और शेष औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार
0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे मुख्य समाचार हमारे रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम हो अखड़ा बस कुछ ही पलों में।

नया आकाशवाणी रिया चाहे भाषा केंद्र तना एफएम रिया 101.7 मेगाहर्ट्ज रेवन आई में तना ना आयु पेंग छः बजाय ना ते 2 मिनट हो बस का ना कार्यक्रम हो अकड़ा आयु में चिबिन लगिन बेटा जो कि न लिंग महेंद्र गुई है सभी को अलिंग पे ते जो हर जाओ दिन लिखा गए अटकर जगर हेरो प्रोब्रिया दुरंग बेपटा जगर अंडो आंधी दुरंग इमाने मना कुलिंग सगमागो तड़े इनको मियन मियन तिलिंग आयु में चिबिन आयुम लगिन एफएम रेडियो जपा रहता है छः मरना त्रंगवन जपाव जो ना अंदर एला आई मिचे बिना लिंग सभी को ऐते अटकर आयर अटकर जगर या जगर ते यादो मिना मिश्रित केति चिकिली मिली चासो ऐते लपा नमोते या मिये टाइट या मिये जगर गे किली मिली जिनिस को अबो चासो रे अनो ऐना चासो के को मिता मिश्रित केति दो जगह जिदे अबंतारे कमगे इनका टाइट को मिना इनका चासो लगे एंड द एंटायर लगे अबेन मालची भेंडी चीन मेंडी दिरिंग अंड इन टायर लगे बरबट्टी रमा मिंतिया को अंड एन एन लगे अंड अंडो गे इनकन जिनिस को एन रबेन रुआ दिए एंड चिना हो बना ची अबेन कम जगह लगे निमिन किसुम किसुम अंडो खिली मिली बेन रुआता रद एन चासे रदो इन चासे ते अबेन पूरे नो लाभ ओनो ची लपा को बेन इडी दियो चिल के मन रदो नले कते मिये उतुइतिया जिनिस चबाव तन रदो इना इमिन लोगे अबेन ओनो पढ़ा कतिया इना तैयारी डुवा ओनो इना को बेन अतम कहते इन टायर रे ओनो बेन रोहा इडी दियो इन लेकते अबेन नेन मिश्रित कति ओनो ची किली मिली चास को बेन चास दियो किली मिली चासे रे अबेन मियन चबावतन ते अनो मियन अबेन एन रबेन रुआ अदर दिए अनो एन लेकते अबेन एन मियन टायर रगे ऐसे पूरे किली मिली चास बेन चासे निका किली मिली चास के ते अबु पूरे लाभ ओनो लपाबु इडी दिए इन्हा मंते आते हाथों दिसुम पे रे जितना मिना बुए अबु हगमिशी को ते ग्वारी मिना ची अबु कम टायर रे पूरे किली मिली चास के ते पूरे लपाई डी थी अब उड़ी छे इनका वो खेती रदो चिबु चासे रदो अब कम पूंजी एम के ते पूरे लपाबू इडी दिए तीसिंग है जगर रिया जे अटकर जगर दो निर्मूल रिगे तुंडो तने मर एला उन्हों जो का एयर पालिंग रदारा बिना हेरो प्रोब्रिया दूरंग नी नमी सिंह आई मिचे बिना

निया आंधी दुरंगलो तगे तिशिंगे हो अकड़ा कार्यक्रम इंता रगे चबाव तना हो अकड़ा अयुम केन शबन हगामिसे को पाते ग्वारी मिनाचे मर सनिडी तिनलिंग सेनो सेनो ते उन्हों मिसे अलिंग महेंद्र गोई पेते शबिन को सिविल जोहार।

बच्चों, आज की नन्ही दुनिया सुनने वाले सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को अंजु दीदी का ढेर सारा प्यार। कैसे हो बच्चों? बारिश हो रही है, बारिश में भींगना नहीं है, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, है ना? चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। एक छोटा बदलाव पर्यावरण के लिए बड़ा योगदान। मतलब क्या है बच्चों? बच्चों, मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। एक छोटा बदलाव पर्यावरण के लिए बड़ा योगदान है। आज संकल्प लें कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को कहीं ना, और कपड़े या जूट के थैले को अपनाएं। अर्थात क्या है बच्चों? जो प्लास्टिक बहुत हानिकारक है तो उसको हम लोग को ना कहना है, और जूट या फिर कपड़े का थैला अपनाना है। आइए प्लास्टिक प्रदूषण को कम कर स्वच्छ, हरित और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों बहुत सीधा और साफ है। सिंगल यूज यानी कि एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना, और उन्हें कपड़े या जूट के थैलों जैसे सुरक्षित विकल्पों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। आज का अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाने का उद्देश्य यही है बच्चों। इसका उद्देश्य पर्यावरण को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाना है, समुद्री और वन्य जीवों की सुरक्षा करना है, मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है, ड्रेनेज सिस्टम का ब्लॉक होना, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे बच्चों कि इसे आज का दिन को मनाने की शुरुआत इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। इसे जीरो वेस्ट यूरोप के सदस्य रिजेरो द्वारा शुरू किया गया था। शुरुआत में यह अभियान सिर्फ यूरोप के कुछ देशों तक सीमित था बच्चों, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दुनिया को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान का एहसास हुआ, यह विश्व भर में, यह पूरा विश्व में आंदोलन बन गया। अब इसे हर साल 3 जुलाई को सभी देश मिलकर मनाते हैं। प्लास्टिक बैग हमारे लिए कुछ मिनटों की सुविधा तो लाते हैं बच्चों, लेकिन यह हमारी धरती के लिए सैकड़ों सालों का सिरदर्द बन जाते हैं। इस दिन को मनाने का कई कारण है, जैसे प्लास्टिक बैग नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से कभी नष्ट नहीं होते। एक साधारण बैग को पूरी तरह से टूटने या गलने में विश्वास नहीं किया जाएगा बच्चों, 100 से 500 साल का समय लग सकता है। तब तक यह मिट्टी और पानी में मिलकर जहरीले सूक्ष्म कणों में बदल जाता है, जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। बताइए कितना नुकसान होता है, है ना? हर साल लाखों प्लास्टिक कचरा समुद्र में पहुंचता है। समुद्री जीव जैसे कछुए, मछलियां, व्हेल्स, है ना, अक्सर प्लास्टिक बैग को खाना समझकर निगल जाते हैं, जिससे उनके पेट में ब्लॉक हो जाता है और दम घुटने से उनकी मौत हो जाती है। ठीक इसी तरह शहरों में लावारिस घूमने वाले पशु जैसे गाय, है ना, कचरे के ढेर से प्लास्टिक बैग खा लेते हैं, जो उनके लिए जानलेवा साबित हो जाता है।
मर जाते हैं वे। और हमारे लिए भी बच्चों, प्लास्टिक, जब प्लास्टिक बैग मिट्टी में दबे रहते हैं तो इनसे निकलने वाले हानिकारक केमिकल्स जमीन के अंदर पानी में मिल जाते हैं। जब पशु या मछलियां इसे अनजाने में खाते हैं तो यह फूड चेन, जिसको हम खाद्य श्रृंखला के जरिए इंसानों के शरीर तक पहुंच जाता है, जिससे कई तरह की बीमारियां हो जाती है, हार्मोनल असंतुलन होता है, कैंसर हो जाते हैं, जैसे गंभीर बीमारियां हो जाती है। तो हमें प्लास्टिक से बचना है। आपको क्या यूज करना है, क्या उपयोग में लाना है बच्चों? आपको कपड़े का बैग या फिर जूट के थैले यूज करना है ना, प्लास्टिक को यूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं, कुछ जरूरी संदेश सुनेंगे।

0: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
1: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गई है।
2: परिवार जो बेटा क्रांति बेसरा नेहर में बोले नुकान परिस्थिति बोले सब वापस को रुआना
3: वर्मा मंगलोर गाँव बड़गड़ा आड़की थाना तो जंगल गया है तो अवका कहाँ बना है वो लोग अवका जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमारे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो नहीं तो पूरा एकदम परिवार
4: नाम है रंगबला देवी गाँव बारे हफ्ते तो घर आए में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अपन बात हो जाए है।
5: मुकुम बुरन सिंह तमसाय अनुता तमसाय भूरूपा सिन्हा करना ऐसे दुकुर वापा में अरुण तपा में अरुण वहा बेटा मिलता
6: अन्य मुकुम दो बुंदाई कोड़ा पटन मुकुम बुंदे कोड़ा अन्य हम दो कोदमरी कोड़ा
1: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण निशुल्क चिकित्सा बच्चों को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क कन्यादान हेतु अनुदान उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
7: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
8: अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
7: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
8: तो फिर सही नंबर,
7: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
8: आपने तो बचा लिया दीदी।
7: काम से नहीं।
9: RBI कहता है,
10: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
11: चलिए आपको एक जानकारी देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, परिवार सिर्फ जैविक रिश्तों से नहीं बनता या प्यार और देखरेख से भी बनता है। हमारे जिले में ऐसे कई बच्चे हैं जिनके माता पिता नहीं हैं, या फिर माता पिता तो हैं लेकिन किसी कारणवश अपने बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते, या फिर ऐसे बच्चे जिन्हें गोद लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकता, या जो वर्तमान में संस्थागत देखरेख में हैं। ऐसे बच्चे के लिए सरकार द्वारा मिशन वात्सल्य अंतर्गत फोस्टर केयर योजना चलाई जा रही है। इसे पालन पोषण देखरेख योजना भी कहा जाता है। यह योजना उन बच्चों के लिए है जिन्हें कुछ समय के लिए परिवार में देखरेख की आवश्यकता होती है, और इसके अंतर्गत उन्हें आवश्यकता अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक पालन पोषण देखरेख योजना लाभान्वित किया जा सकता है। आइए जानते हैं फोस्टर केयर या पालन पोषण देखभाल क्या है। या गोद लेने की प्रक्रिया नहीं पर एक अस्थायी व्यवस्था है जहाँ बच्चा प्यार, सुरक्षा और गरिमा के साथ रहता है जब तक वो फिर से अपने जैविक परिवार में ना चला जाए। अगर आप भी किसी बच्चे के जीवन में खुशियाँ लाना चाहते हैं तो आप भी पालक माता पिता बनकर अपना योगदान दे सकते हैं। इसके लिए भावी माता पिता की आयु का जोड़ 115 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए और यदि अकेला व्यक्ति किसी बच्चे के पालक बनना चाहते हैं तो उसकी कम से कम आयु 35 वर्ष या दोनों का सम्मिलित आयु 115 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एकल पुरुष को बालिका नहीं दी जा सकती। अगर आप पश्चिमी सिंहभूम जिला के निवासी हैं एवं आपके पास मुखिया द्वारा प्रमाणित आय प्रमाण पत्र, पुलिस स्टेशन से प्राप्त या फिर प्रज्ञा केंद्र से प्राप्त पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट हो, पालक माता पिता शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो, परिवार हर बच्चे का अधिकार है, तो आइए जरूरतमंद बच्चों को हाथ बढ़ाइए और उन्हें एक अच्छा भविष्य दें। इस योजना के तहत जरूरतमंद इच्छुक परिवारों को मासिक 4,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान किया जाता है। अधिक जानकारी है तो जिला बाल संरक्षण इकाई 9955131364 या फिर 9090700489 पर संपर्क करें या फिर जिला बाल संरक्षण इकाई जिला उपायुक्त कार्यालय 3rd तल्ला चाईवासा में आकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जिला बाल संरक्षण इकाई पश्चिमी सिंहभूम द्वारा जन सूचना जारी। इस जानकारी के बाद आइए बच्चों मिलते हैं आपके दोस्तों से।
9: आज हमारे नन्ही दुनिया में एक हमने मेहमान को आमंत्रित किया है जो कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट है, तो आपका परिचय दीजिए।
12: जी, मेरा नाम है मिलिंद योगम, मैं क्लास 7 में पढ़ता हूँ।
9: थैंक यू मिलिंद जी, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप कराटे में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, तो आप कराटे कब से सीख रहे हैं?
12: जी लगभग 1 साल होने जा रहे हैं।
9: 1 साल, तो इन 1 सालों में अभी तक, क्योंकि कराटे में क्या क्या किया जाता है, कौन सी कला है, ये सब तो आप बता पाइएगा, तो गोल्ड मेडल तक पहुंचने का सफर अभी तक आपका कैसा रहा?
12: जी चैलेंज तो था।
9: अच्छा, चैलेंज है ना, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शरीर को आपको बहुत कुछ मेहनत करना, शारीरिक बहुत मेहनत करना होता है, तो फिर शुरू में सबसे पहले अगर देखा जाए तो क्या क्या सिखाया जाता है?
12: जी शुरू में वही बेसिक ब्लॉक पंच।
9: अच्छा, पंच, पंच मतलब ये ऐसे जो घुसा मारा जाता है, पंच किया जाता है वो वाला ना?
12: जी।
9: अच्छा, वो शुरुआत में वो सिखाया जाता है। अच्छा, उसके बाद?
12: उसके बाद उसको रोकना, ब्लॉक करना।
9: अच्छा, जो पंच को सिखाया जाता है, पंच मारना सिखाया जाता है, पंच को रोकना भी सिखाया जाता है। अच्छा, ये सब कितने दिनों का रहता है, ये सारे जो कोर्स होता है वो कितने दिनों का होता है, पंच कितना दिन तक सिखाया जाता है, किस तरह से पंच किया जाता है, फिर रोकने का कितना कितना दिनों में होता है?
12: वो जो कर रहे हैं उसके ऊपर निर्भर है, क्योंकि जैसे हम जल्दी जल्दी सीख लिए।
9: अच्छा, सीखने के ऊपर में है, जो जितना दिन में जल्दी अगर सीख लेता है तो उसको पार कर देता है, फिर दूसरा चीज सिखाया जाता है ना?
12: जी।
9: अच्छा, तो आप तो बहुत जल्दी जल्दी सीख गए। अच्छा, तो उसके बाद ये पंच और फिर रोकने का, उसके बाद?
12: उसके बाद एग्जाम की तैयारी की जाती है।
9: अच्छा, एग्जाम भी होता है?
12: जी।
9: अच्छा, तो एग्जाम में क्या करना होता है? एग्जाम में
12: यही सब, ये ब्लॉक ब्लॉक सब दिखाना पड़ता है, पावर से पंच दिखाना पड़ता है, स्टांस दिखाना पड़ता है।
9: आपको जो सिखाया गया है उसी को दिखाना पड़ता है?
12: जी।
9: अच्छा, अगर आप अच्छे से दिखा पाए तो आप पास हो जाते हैं।
12: जी।
9: तो फिर क्या, शुरू से आप क्या पहुंचेगा, फिर पास हो जाइएगा तो क्या पहुंचेगा, क्या मिलेगा आपको?
12: येलो बेल्ट।
9: येलो बेल्ट मिलेगा? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद पहला जो आप पास कीजिएगा तो येलो बेल्ट मिलेगा। पंच आपने सीखा, रोकने का आपने सीखा, येलो बेल्ट एग्जाम हुआ, येलो बेल्ट भी आपको मिला, उसके बाद?
12: ये उसके बाद उससे और ऊपर के बेल्ट मिलते हैं।
9: अच्छा अच्छा, तो और उसके बाद क्या, येलो बेल्ट के बाद और क्या मिलता है?
12: येलो स्ट्राइक।
9: येलो स्ट्राइक, तो उसके लिए आपको क्या क्या सीखना होता है?
12: एग्जाम वही सर, उससे आगे का।
9: हाँ हाँ, क्या क्या, जैसे पंच साहब ने सीखा, शुरू में पंच सिखाया गया, ठीक है, फिर आपको रोकने का सिखाया गया, उसके बाद और क्या सिखाया?
12: और अलग अलग पंच को रोकने का अलग अलग ब्लॉक्स।
9: अच्छा अच्छा अच्छा, और एक काता, काता बोलते हैं हमेशा, तो काता क्या होता है, काता का मतलब क्या होता है?
12: कुमिते।
9: कुमिते वो सब क्या होता है वो सब?
12: जी कुमिते का मतलब कला है, फाइटिंग।
9: अच्छा, फाइट करने का ही एक कला है।
12: हाँ।
9: अच्छा, उसमें मतलब पैर से, हाथ से, क्या क्या होता है, कैसे होता है?
12: अपोनेंट के साथ मतलब लड़ना पड़ता है, फाइट होता है।
9: फाइट होता है, हाँ, चलिए चलिए, बहुत अच्छा। जो आपके साथ जो सामने में जो है उसके साथ लड़ना होता है, मैंने वो कला है भाई, फाइट करने का, लड़ने का कला है, यही ना? अच्छा, दोनों अलग अलग चीज है क्या, काता? हाँ, और कुमिते?
12: मतलब, कुमिते का मतलब होता है फाइट।
9: अच्छा, और काता का मतलब?
12: काता बेसिकली एक, आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इतना।
9: हाँ हाँ,
12: उसमें एक ब्लॉक होता है, फिर एक पंच होता है।
9: अच्छा,
12: फिर एक ब्लॉक।

0: आप जो अभी गोल्ड मेडल लेके आए हैं, क्या में लेके आए हैं, ऐसा क्या किया आपने, बहुत खुशी की बात है, ऐसा क्या सीखा आपने, ऐसा क्या कर दिया आपको आपने कि आपको गोल्ड मेडल मिल गया?
1: जी कुमिते में मैंने लाया, फाइट में।
0: फाइट में आपने, आपको मिला? अच्छा अच्छा, जो फाइट करने का जो तरीका है, जो स्पीड है या जो भी देखा जाता है एग्जाम में, वो आपको बड़े बहुत अच्छे से आपने किया, यही ना, इसीलिए आपको मिला। अच्छा, और क्या क्या सीखा है अभी आपने? कुमिते सीखा, काता सीखा आपने, और क्या क्या सिखाया जाता है?
1: जी यही सब सिखाया जाता है, जैसे काता का अलग अलग नाम नंबर होता है।
0: अच्छा, नंबर होता है।
1: हाँ, फर्स्ट नंबर काता सीखा है मैंने, अभी तक 6 काता सीख लिया, 7वां सीख रहा हूँ मैं अभी।
0: अरे यही सब तो बहुत नया नया चीज है, माने ये 7 7 होता है
1: जी, अभी 100 तक भी पहुँच जाता है।
0: ओहो, तो जो भी कला सिखाया जाता है उसका भी स्टेप बाय स्टेप नंबरिंग होता है ना, फिर हल्के से आपने सीखा पहला क्लास, फिर दूसरा क्लास, इस तरह से ना। अच्छा, यही सब तो समझना है ना। तो आपको काता में गोल्ड मेडल मिला है ना?
1: नहीं, कुमिते में।
0: माफ कीजिए, कुमिते में आपको गोल्ड मेडल मिला, चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे आपको, मान ले अभी आप कितने कितने दिनों में एग्जाम होता है?
1: हर 3 मंथ्स बाद एग्जाम होते हैं।
0: अच्छा, तब तक आप लोग को फिर नया नया चीज सिखा दिया जाता है ना?
1: जी,
0: फिर उसकी आप तैयारी करते हैं, फिर कहीं कराटे के लिए आपने कितना सीखा, लोग ब्लैक बेल्ट बोलने से पहले से ही डर जाते हैं, है ना?
1: जी,
0: तो अभी आपका पहला सीढ़ी है, दूसरा सीढ़ी, ऐसे बढ़ते जाइएगा और आपको बेल्ट मिलते जाएगा, आप सीखते जाइएगा, उसी से पहचान होगा कि आपने कितना सीखा है। बेल्ट देख के लोग समझ जाएंगे कि आपने कराटे में कितना आगे तक सीखा है। चलिए, तो कहाँ तक जाने का विचार है? ब्लैक बेल्ट,
1: ब्लैक बेल्ट गोदान,
0: ब्लैक बेल्ट। देखिए, आपने और एक नया शब्द कहा कि ब्लैक बेल्ट गोदान, क्या होता है
1: ब्लैक बेल्ट गोदान? हम लोग का लास्ट ब्लैक बेल्ट है।
0: अच्छा, ब्लैक बेल्ट जो होता है, हम लोग सुनते हैं ब्लैक बेल्ट, ब्लैक बेल्ट गोदान, उससे भी आगे का, यानी कि आपने वहां तक पहुंचना, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है ना, ये समझ के चलना होगा, है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आप रांची जाने वाले हैं टूर्नामेंट में, अभी आप गोल्ड मेडल लेके आए हैं, तो वहां भी आप यूं ही जीत के आइए, गोल्ड मेडल लेके आइए, हमारी शुभकामनाएं हैं। हमारे कार्यक्रम में आए, आपने बच्चों को जानकारी दी, हम सबको जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।
1: जय हिंद।

इसी गीत के साथ आज की नई दुनिया का ये सफर यही समाप्त होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अंजू दीदी को दीजिए विदा। जय हिंद।

श्रोताओं, आप अभी सुन रहे थे कार्यक्रम नन्ही दुनिया। ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे रांची केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने पर घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे सिंह, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मानसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट। 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में 30 जून से 29 जुलाई तक मतदाताओं का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर अभियान चल रहा है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर 2,64,00,000 वोटरों की जांच कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि क्यूआर कोड वाले प्रपत्र को सावधानी से भरें और हस्ताक्षर कर रसीद लें।
1: एक एक वोटर के लिए अलग अलग गणना प्रपत्र रहती है, उसके क्यूआर कोड के साथ उनका फोटो के साथ में सही रहती है। एप्लीकेंट बढ़ने के समय कुछ गलती हो गया तो उसका वहां पर बीएलओ बीएलओ करके सुधार करने की, फिर भी उसका कोई वोटर का डरने की आवश्यक नहीं है। आप फॉर्म में कोई गलती है नोटिस एंड हियरिंग पीरियड में भी उस सुधार कर सकते हैं। आप सिग्नेचर करके बीएलओ के पास जमा करने के बाद बीएलओ से दूसरा कॉपी से एक रिसिप्ट ले लीजिए, आपका ड्राफ्ट इलेक्ट्रोल रोल में आपका नाम आएगा।
0: केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय की ओर से आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर चर्चा की गई। कार्यशाला में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी शामिल हुई। उन्होंने बताया कि झारखंड को वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच लगभग 14,231 करोड़ रुपये की अनुदान राशि मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर बाउरी ने जमशेदपुर हत्याकांड को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है। रांची में प्रेसवार्ता आयोजित कर उन्होंने कहा कि इस घटना ने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। श्री बाउरी ने पुलिस महकमे में भ्रष्टाचार और ड्रग्स के बढ़ते कारोबार का आरोप लगाते हुए सभी आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार की मांग की है। उन्होंने सफल जमशेदपुर बंद को सरकार के खिलाफ जनता का बड़ा आक्रोश बताया। राज्य के
2: जमशेदपुर और आदित्यपुर ऐतिहासिक मशाल जुलूस भी किया और स्वतः स्फूर्त बंद को समर्थन जिस प्रकार से उस लोह नगरी में अपने नागरिकों का मिला है, कंपनियां भी इसमें सहयोग की है, इसका जो समर्थन किया है ये सरकार के लिए आई ओपनिंग होना चाहिए, क्योंकि जमशेदपुर के वासियों ने दिखलाया है अपने प्रतिरोध से कि यह सिर्फ एक पार्टी का प्रतिरोध नहीं है, एक आम जनता का प्रतिरोध है।
0: राज्य के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अपनी सुरक्षा में तैनात सभी 16 गार्ड और कारकेड की गाड़ियां वापस कर दी है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है।
3: ये बात सही है, मेरे पास 16 पुलिस के जवान थे, मेरी सुरक्षा में लगे हुए थे और 3 गाड़ियां थी, मैंने सबको वापस कर दिया है। क्यों किया है, जरूरत पड़ेगी तो मैं 3-4 दिनों में इस बात को भी सामने रखूंगा, लेकिन इतनी बात है कि इसमें मुख्यमंत्री जी हमारी सरकार का कहीं कोई ये नहीं है, नहीं उनके तरफ से कोई ऐसी बात हुई है, ये भी हम इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं।
0: देवघर एम्स में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए जल्द ही ECHS स्वास्थ्य सुविधा शुरू की जाएगी, जिससे उन्हें OPD और जांच में प्राथमिकता मिलेगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे के निर्देश पर प्रबंधन ने प्रक्रिया तेज कर दी है, जिससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। रक्षा मंत्रालय की सहमति से एम्स में विशेष काउंटर बनाकर यह सुविधा शुरू की जा रही है। राज्य सरकार के श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा हजारीबाग नगर भवन में दत्तोपंत ठेगड़ी रोजगार मेला सह कौशल विकास मेला का आयोजन किया गया।

0: आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के पुराना विधानसभा परिसर में आज विधायकों के लिए साइबर एवं डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद महुआ माझी और विधायक सीपी सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। विधानसभा अध्यक्ष और सांसद महुआ माझी ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से कानून को और अधिक सख्त बनाने की मांग की।
1: बहुत ही चिंता का विषय है इन दिनों जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा है, और शायद ही कोई ऐसा घर है जहां के लोग इससे त्रस्त ना हो। तो इसके लेकर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि जो लोग इस तरह का फर्जीवाड़ा करते हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो धाराओं को इस तरह से लगाना होगा कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
0: पलामू जिला प्रशासन के जन समाधान कार्यक्रम के तहत मेदिनी नगर की पूजा कुमारी की 30 साल पुरानी जमीन विवाद की समस्या का महज 24 घंटे में समाधान कर दिया गया। पूजा ने बताया कि उपायुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देश पर 1996 से लंबित ऑफलाइन जमीन रसीद को तत्काल ऑनलाइन जारी किया गया, जिससे अब उन्हें प्रमाण पत्र और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।
2: 30 साल से जो मेरे जमीन थे उनका रसीद नहीं कट रहा था, बहुत टाइम से मैं परेशान थी। तो मैंने डीसी सर से आकर के मिला और उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया एसी सर को, तो मेरा काम हो गया। काफी परेशानी हुई थी, जैसे मुझे जमीन से ही कुछ काम करवाने हो तो उसमें रसीद क्लियर चाहिए, या फिर मुझे ओबीसी बनवाना हो तो उसमें भी रसीद क्लियर चाहिए।
0: पत्र सूचना कार्यालय रांची द्वारा जमशेदपुर में वार्तालाप 2026 मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लगभग 70 पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे किसान सम्मान निधि, ड्रोन दीदी और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर विस्तृत चर्चा की। इसके साथ ही विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका और पत्रकार कल्याण योजनाओं पर भी विचार साझा किए गए। दुमका के उपायुक्त अभिजीत सिन्हा ने राजकीय श्रावणी मेले की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसुकीनाथ धाम का निरीक्षण किया। उन्होंने रूट लाइन, शिवगंगा और टेंट सिटी सहित प्रमुख स्थलों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने और श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मूलभूत सुविधाएं देने का निर्देश दिया। राज्य में मानसून सक्रिय होने से मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया। आज गुमला और लातेहार समेत कई जिलों में भारी वर्षा हुई। 5 जुलाई को पलामू प्रभाग और 6 जुलाई को रांची तथा हजारीबाग सहित मध्य भागों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है। इस बीच मौसम विभाग ने रांची, बोकारो और गुमला सहित राज्य के 10 जिलों में अगले 3 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में 2,64,00,000 वोटरों की जांच के लिए घर घर पहुंच रहे बीएलओ। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, फॉर्म में गड़बड़ी होने से घबराए नहीं मतदाता। नई दिल्ली में आयोजित 16वें वित्त आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुई मंत्री दीपिका पांडे से, झारखंड को मिलेगा 14,231 करोड़ रुपए का अनुदान। राज्य की कानून व्यवस्था पर भाजपा हमलावार, अमर बाउरी ने जमशेदपुर बंद की सफलता को बताया सरकार के खिलाफ जनाक्रोश। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने रांची में किया साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का उद्घाटन। सांसद महुआ माझी ने केंद्र से की कड़े कानून बनाने की मांग। और राज्य में मॉनसून सक्रिय, अगले 5 दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात का अलर्ट, 6 जुलाई को रांची और हजारीबाग में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इस अंक में आप सुनेंगे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारी खूंटी संवाददाता।
1: खूंटी जिले के अंचल सभागार में सोमवार को जनवितरण प्रणाली के सभी डीलरों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीएसओ खुशबू तिर्की ने राशन वितरण, ईकेवाईसी, ग्रीन कार्ड एवं चना दाल वितरण सहित विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की। उधर अड़की प्रखंड क्षेत्र के एक फास्ट फूड दुकान में मंगलवार को देर रात छापामारी कर अड़की थाना पुलिस ने विभिन्न ब्रांड के 460 बोतल अवैध शराब बेचते हुए पकड़ा। खूंटी के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मंगल सिंह जामुदा ने बताया कि हब्लू डब्लू के फास्ट फूड दुकान में गुप्त तरीके से अवैध और मिलावटी शराब बिक्री किया जाता था। इस संबंध में डीएसपी मंगल सिंह जामुदा ने बताया,
2: अड़की बाजार में कुछ अवैध शराब की खरीद बिक्री हो रही है, उसके सूचना पर हम लोग ने छापामारी की गई। उस छापामारी में कुल 460 बोतलें बरामद हुई, जो विभिन्न ब्रांड की शराब की बोतलें हैं। उसके बाद अवैध तरीके से कागजात की मांग की गई, तो उन्होंने कोई कागजात दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और FIR दर्ज की गई, जिसमें दुकान के संचालक जो लाइसेंस धारी है उनका भी नाम सामने आया है, जो अवैध तरीके से शराब की खरीद बिक्री कर रही हो रही है।
1: खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग एवं उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार आपूर्ति विभाग खूंटी द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को आयोजित किए जाने वाले चावल दिवस के तहत जिले के जनवितरण प्रणाली दुकानों में राशन कार्ड धारियों को खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस संबंध में जिला आपूर्ति पदाधिकारी भीम उराव ने बताया,
3: खूंटी के जो उपायुक्त हैं उनके निर्देशानुसार हर माह के 2 तारीख को चावल दिवस मनाया जाता है। चावल दिवस का मेन उद्देश्य है कार्डधारियों को जागरूक करना और उन्हें राशन मिलना। इसमें क्या होता है कि सारे जनप्रतिनिधियों को भी जानकारी दी जाती है, सारे कार्डधारियों को जानकारी दी जाती है और प्रचार प्रसार करके डीलर के यहाँ जो भी खाद्यान्न हो वो बांटने के लिए सभी कार्डधारियों को सूचित करता है और विशेष अवसर पर राशन का वितरण करता है। और इसे लोगों में जागरूकता आती है, कार्डधारियों में जागरूकता आती है, उन्हें जानकारी होती है कि चावल मिलना शुरू हो गया है, इसका मेन उद्देश्य यही है।
1: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जून से 29 जुलाई तक घर घर प्रगणना अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अवधि में बूथ लेवल अधिकारी BLO पूरी सक्रियता के साथ घर घर जाकर मतदाताओं के बीच प्रगणना प्रपत्र का वितरण कर रहे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण के संबंध में उपायुक्त ने बताया,
4: 30th जून से लेकर 29th ऑफ जुलाई तक हाउस टू हाउस फॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एन्यूमरेशन फेज चल रहा है। इसमें सारे BLOs को, जितने भी हमारे योग्य मतदाता हैं, सभी को आप फॉर्म जाकर डिस्ट्रीब्यूट करना है हाउस टू हाउस। उसके बाद उन्हें 2 प्रति में फॉर्म दिया जाएगा। जितने भी हमारे मतदाता हैं उनसे जो फील्ड फॉर्म होगा वो रिटर्न हमारे BLOs के पास आएंगे, उनको डिजिटाइज किया जाएगा। तो ये कार्य हमारा लगभग 1 महीने अभी चलने वाला है, 29 जुलाई तक। लोगों से भी अपील रहेगी कि जो भी आपको गणना प्रपत्र

0: दिए जा रहे हैं उसको टाइमली आप कंप्लीट करके एज सून एज पॉसिबल उसको रिटर्न कर दें।
1: इधर गुरुवार को खूंटी उपायुक्त मोहम्मद जावेद हुसैन के निर्देशानुसार कर्रा प्रखंड के जरियागढ़ पंचायत में जन समस्या निराकरण एवं परिसंपत्ति वितरण शिविर का आयोजन कर 92 लाभुकों के बीच 6,57,000 की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। ज्योत्सना शीला, आकाशवाणी समाचार, खूंटी।
2: अभी आप सुन रहे थे खूंटी जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाई पासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल हमारे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 7:16 होने को हैं। श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपकी पसंद, बस कुछ ही पलों में।

कार्यक्रम आपकी पसंद सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस रिमझिम बारिश में हम सब भींगते भी हैं और प्यार के गीत गुनगुनाते भी हैं, है ना? लेकिन श्रोताओं, बारिश में ज़्यादा भींगना नहीं है, नहीं तो तबीयत खराब हो सकता है ना? तो चलिए, आपकी पसंद कार्यक्रम में आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं कार्यक्रम इस गीत से। इस गीत को सुनना चाहते हैं छत्रपति संभाजी नगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। ग्राम पोंडाकाटा से नरसिंह महली, सावन महली, रॉकी महली, कविता महली, हर्षमणि महली, पार्वती महली, सुहानी महली, संजय महली, साजीव महली, बिरसा मुर्मू और कमलेश मुर्मू। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें हैं, राजेश रोशन का संगीत है।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, फिल्म का नाम है मुद्दत। आशु भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं और इस गीत को सुनना चाहते हैं बठिंडा रोड डबवाले से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। खमरिया छत्तीसगढ़ से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति, सत्या साहू और प्रतीक कुमार। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दंतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। चलिए इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म मुद्दत का ये नगमा।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी पसंद छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है नमक हलाल। आशा भोसले की आवाज है, अनजान की बोल है, संगीत है बप्पी लहरी का। और इस गीत को सुनना चाहते हैं मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत ग्वांडकर, राही सरिता ग्वांडकर, सिद्धांत ग्वांडकर, प्रिंस एकांश ग्वांडकर, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश ग्वांडकर, वैशाली ग्वांडकर, कुमारी ध्वनि ग्वांडकर उर्फ परी, बड़ा निमड़ी चाईबासा से तुलसी पथिक, मीरा देवी, बजरंगी ठाकुर, मीतू रंजन, राजीव रंजन, मौलिक रंजन, अमित कुमार, सुमित कुमार और शुभम कुमार, बेरडी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढूमने, वैष्णवी ढूमने, चंचल ढूमने, अर्जुन गवेनकर और धीरज सवासेरे। इन सब की फरमाइश पर चलिए हम सुनवाते हैं फिल्म का नाम है नमक हलाल।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म निगाहें का ये गीत मोहम्मद अजीज की आवाज़ में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते थे बड़ी बाजार चाईबासा से मौजम बिहारी, शमीमा खानम, जिम्मे, बिट्टू, किरण, रोशनी, मुस्कान, परी और नबीहा। खरसावां प्रखंड के अंतर्गत गांव नारायणपुर आमदा से नायडू महतो, खेत्रो मोहन साहू, कैलाश बाबा, उषा महतो, प्रिया महतो, डोली महतो, तरुण महतो, पंकज कुमार महतो एवं परिवार के सभी सदस्यगण। बड़ा बाबू सुपैसाई से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा तांती, प्रकाश तांती, ललित प्रधान, उग्रसेन प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, सुशीला, श्यामदेव नायक और सीमा। ग्राम गेली अलोहर से कोमल बेसरा, बासंती, रमेश बेसरा, अनु, बनमाली बेसरा, पूजा और सिद्ध कुमारी। श्रोताओं, अब आपको अगला गीत हम सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर। किशोर कुमार की आवाज़ है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। और इस गीत को सुनना चाहते हैं शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवली श्रीवास्तव। मौलडिया सोनवा से नंदकिशोर महतो, राधामणि महतो, रविवारी, वंदनी, संतोषी, दीपक, संतोष, राहुल, अनु, तनु, भाई नंदू महतो, गुरुचरण नायक, अनसुईया नायक, सागरिका नायक, देवाशीष नायक, गुलशन नायक और किशोर महतो। चांडिल ग्राम हारूडे से तुलसीदास महतो, मनोरमा महतो, कल्पना महतो, मनमहनी महतो और दीनबंधु महतो। सेंटुला चाईबासा से भोलाराम मधुर, बेबी देवी, नताशा, विनोद कुमार पवन और मीना पवन। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये गीत।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: हिंसा से सनी राहें न अपनाओ, बच्चों के भविष्य को नई दिशा दिखाओ।
3: झारखंड पुलिस नक्सल मुक्त झारखंड की दिशा में कृत संकल्पित है। नक्सलवाद से मुक्त झारखंड हेतु सुरक्षा बलों द्वारा सघन नक्सल विरोधी अभियान जारी है। इस संदर्भ में न सिर्फ झारखंड पुलिस बल्कि नक्सलियों के परिवार जनों के द्वारा भी सक्रिय नक्सलियों को मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की गयी है।
4: तीन नाले बड़ा परिवार जो तो बनवा इन मरन बेटा क्रांति बेसरा आले मगे नहर में ना बले नुकन परिस्थिति रे बले सब बड़ा वापस को रुड़ करना धरा रे मैं कहा कि हम बले रुड़ तबन में आले परिवार से मतलब पूरे ये ना
5: वरना मंगलोरा को गांव बरगरा आड़की थाना तो जंगल गया है तो आऊ का कहा बना है वो लोग आऊ का वो जिंदा है ना मैंने जिंदा है कोई को नाम सुन पार ली वह चलते एकदम हमरे पूरा एकदम अखन तो तुम ठीक हो है नहीं तो पूरा एकदम परिवार
6: नाम है रनबला देवी कहाँ बारे हतो तो घर आई में हमारे घर बहुत दुख के बात है तो अखन बात हो जाए
7: तुम लोग बुरा मिशन काम सोए अनिता थामसा भरूपा सेना करना ऐसे दुकुरा में नहीं है जापा में रियल तपा में रियल वाह बेटा निका
8: अन्याम तुम दो बुंबई कोड़ा पटन तुम गुंडे कोड़ा अन्याम हम दो कोदमरी कोड़ा रो पटन पटन तुम कितने ही कोड़ा दोनों में बुरी ने बागिया तो कि दोनों से यार की कोलो पुलिस कोलो में लड़ाई चलाओ तमे बुरुरम गोयां तब जाए तेरे काका गुंगो उन्हें बुको को काको मेल मिया
9: अलिंग मुनि सुरेन पे ते आप ही लेता ना लिंग से जा हुरा रे मिने रो जिता हुरा रे मिने रो तो गुगिन हुरा ते ससेन का है वो आगे बिटा हुरा इनका अली आया नु तुम ते ना मिल आप ही लेता ना।
3: झारखंड सरकार आत्मसमर्पण के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी को श्रेणीवार 6 लाख तथा 3 लाख 2 बराबर किस्तों में देगी। साथ ही गृह निर्माण हेतु 4 डिसमिल भूमि 6,000 प्रति माह की वृत्ति पर व्यावसायिक प्रशिक्षण, निशुल्क चिकित्सा, बच्चों

0: को शिक्षा हेतु शिक्षण शुल्क, कन्यादान हेतु अनुदान, उग्रवादी का 5 लाख तक का जीवन बीमा एवं इनके आश्रितों को सामूहिक बीमा, 4 लाख तक का स्वनियोजन हेतु ऋण देने तथा अन्य कई लाभ देने का भी प्रावधान है। आए आत्मसमर्पण कर झारखंड सरकार के आकर्षक एवं उत्साहवर्धक आत्मसमर्पण एवं प्रत्यार्पण नीति का लाभ उठाएं। हिंसा छोड़ मुख्य धारा में शामिल होकर समाज व राज्य की समग्र विकास में अपना भागीदारी सुनिश्चित करें। इसके लिए मोबाइल नंबर 7008088527 पर संपर्क कर सकते हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

श्रोताओं, इन संदेशों के साथ ही आज का कार्यक्रम आपकी पसंद अब यहीं पर संपन्न होता है। आशा करती हूँ सभी गीत पसंद आए होंगे। आप हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। पता फिर से एक बार दोहरा दें, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम रजनीगंधा।

कार्यक्रम रजनीगंधा सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म का नाम है तेरी कसम। अमित कुमार की आवाज़ है, आनंद बख्शी के बोल हैं और आर डी बर्मन का संगीत है। इस गीत को सुनना चाहते हैं छोटा निमडी चाईबासा से बापूराम, शांति देवी, रोहन कुमार, कोमल कुमारी और ऋतिक कुमार। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित व मोहित। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर रही, मेरा जहां, ये है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। चलिए, इन सबकी फरमाइश पर हम आपको सुनाते हैं फिल्म का नाम है तेरी कसम का ये गीत।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत हम सुनवाते हैं आपको इनकी फरमाइश पर। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, नवनीत भाटिया, पप्पी भाटिया। सरायकेला बारापुर दिशावली ग्राम पहाड़पुर से शिवम, शिवाजी मुंडरी, सुरुमानी मुंडरी, हीरामानी मुंडरी, हेमांती मुंडरी, डोबरो मुंडरी, साजन मुंडरी, सिद्धेश्वर मुंडरी, पाड़ापुर शिवाजी, डोबरो मुकेश, कुशल मुंडरी, जानुम सिंह मुंडरी, सिद्धि बोस, सोना बाबू सोना, एफएम शिवा मुंडरी। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मिका, बलविंदर बीरक, जितिन बीरक और मीका बीरक। चलिए इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं, फिल्म का नाम है खेल खेल में। किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, गुलशन बावरा के बोल हैं और संगीत है आर डी बर्मन का।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंथा छवि के साथ। अगला गीत सुनवाते हैं इनकी पसंद पर। राधा कृष्णा गोप, सुनीता गोप, उमा गोप, गीता गोप, रीता गोप, स

सरस्वती गोप, आराध्या गोप, अमित गोप, सुमित गोप, अभिषेक गोप, आशीष गोप, विक्की गोप, शुभम गोप, विनोद गोप, राजू गोप, राजन गोप, माहिर गोप, ये हैं सरायकेला गांव की तसे। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, दंतरेगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, लक्षणपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जेतिन बीरक और मीका बीरक। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म का नाम है गाइड। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत है SD परमन का।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीकंधा छवि के साथ। अगला गीत आपको सुनवाते हैं इनकी पसंद पर, आमला टोला चाईबासा से गोरख प्रसाद गुप्ता, फुलवंती गुप्ता, अभिषेक गुप्ता और अक्षत प्रसाद। तुरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो, हरी, खुशी कुमारी, रिया कुमारी और अर्पिता कुमारी। पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया। खरसवा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक, गौरव नायक और भाई एस देहुरी। इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म का नाम है अगर तुम ना होते। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलशन बामरा के बोल हैं, आरटी बर्मन का संगीत है।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे फिल्म मजबूर का ये गीत, मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल थे, संगीत था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत को सुनना चाहते थे तूरी टोला चाईबासा से मदन ठाकुर, पुष्पा देवी, रोहित ठाकुर, संगीता देवी, लाडो हरी, खुशी कुमारी, रिया, अर्पिता कुमारी, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया, संतोष कुमार भगत, श्रीमती बासंती भगत, मृणाल कांति भगत, चांदनी भगत, मास्टर आयुष भगत, राजकुमार भगत, ये हैं गांव चांदपुर पोटका से, कॉलेज रोड घाटशिला से सोना, रूपा, मोनिका, शिवम, मौसमी, संतोष और आनंद। श्रोताओं, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी। समीर की बोल है और संगीत है अनु मलिक का, और इस गीत को आवाजें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं बड़ा बाम्बू सुपाईसाई से देवेंद्र ताती, राकेश ताती, कुमारी निशा ताती, प्रकाश ताती, ललित प्रधान, सुदर्शन प्रमाणिक, श्यामदेव नायक और देवेन बाबू। ग्राम गिल्लियारोह से कोमल बेसरा, बासंती, अनु, रमेश बनमाली, सिद्ध कुमारी और पूजा और बेसरा परिवार। कुचाई बिद्री से केपी सेठ सोए, दुर्गामती, सरिता, रेशमी, राजकुमारी, विशाल, मुन्ना और सनी। ग्राम सूरा बेड़ा से बासी सरदार, कमल सिंह, वीरू सरदार और अंशु। चलिए, इन सब की फरमाइश पर हम आपको सुनवाते हैं फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम रजनीगंधा अब यही संपन्न होता है। आशा करती हूँ आपको सभी गीत पसंद आए होंगे। श्रोताओं, अब आप हमारा पता नोट करें। आप अपने सुझाव और अपने गीत हमें इस पते पर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। पता एक बार फिर से दोहराते हैं, कार्यक्रम रजनीगंधा द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी चाईबासा, पिन कोड है 833201। तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: विशाल शर्मा। सरकार ने कहा सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित, पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 32 के मैच में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
1: India's position on the Indus Waters Treaty.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख पहले की तरह स्पष्ट है। पाकिस्तान के लगातार सीमा पार आतंकवाद को मदद देने के जवाब में सिंधु जल संधि को रोक दिया गया था। पाकिस्तान को विश्वसनीय तरीके से सीमा पार आतंकवाद को मदद देना बंद करना पड़ेगा।
0: तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नाविक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10-11% की वृद्धि का अनुमान है। श्री गोयल ने कहा कि सरकार की निर्यात रणनीति में प्रत्येक राज्य, जिले और उद्योग क्षेत्र को समान महत्व दिया जा रहा है। श्री गोयल ने कहा कि 38 विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों ने भारतीय निर्यात के लिए नए अवसर खोले हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ व्यापार और आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने में दुनिया भर में रुचि बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
3: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्याकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान महत्वपूर्ण खनिज, साइबर सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला, उभरती प्रौद्योगिकी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पिछले 40 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा खरीद परिषद ने सशस्त्र बलों की क्षमता बढ़ाने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मिले इन रक्षा खरीद प्रस्तावों से सेना, नौसेना और वायुसेना की लड़ाकू क्षमता बढ़ेगी। इसके अलावा आज के दौर में बदलती सुरक्षा चुनौतियों को बेहतर ढंग से सामना करने में भी मदद मिलेगी। भारतीय सेना के लिए एंटी ड्रोन इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आकाश तरंग खरीद

0: बैठक की। श्री शाह ने कहा कि सरकार अल नीनो के कारण देश के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा और संभावित सूखे की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कृषि मंत्रालय और सभी संबंधित मंत्रालयों को सतर्क रहने और किसानों को उपयुक्त फसलों की बुवाई के बारे में सलाह देने के लिए राज्य सरकारों के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि 16वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए 80% मूल अनुदान और 20% प्रदर्शन आधारित अनुदान प्रस्तावित किए हैं।
1: 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक राज्यों में कैसे तैयारी करें, कैसे परफॉर्मेंस ग्रांट का पूरा लाभ उठा सकें, सभी बिंदुओं पर चर्चा करके सभी राज्यों को उसके लिए तैयार करने के लिए आज की यह कार्यशाला थी। 73वें संविधान संशोधन के तहत ये राज्यों का विषय है और राज्यों के सहयोग से ही हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में तोतापुरी आम उत्पादक किसानों की समस्याओं के आकलन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्देश दिया है। श्री चौहान ने कहा कि तोतापुरी आम उत्पादकों की आय और आजीविका की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मेटा को इस संबंध में विस्तृत स्पष्टीकरण देने के लिए 3 दिन का समय दिया गया है। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक, आई आयन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल एप स्टोर से हटाने का निर्देश दिया है। ये कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन एप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि पत्रकारिता को हमेशा सत्य, ईमानदारी और उच्च पेशेवर मानकों के प्रति समर्पित रहना चाहिए। नई दिल्ली में ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक पत्रिका के 80वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान ऑर्गेनाइजर साप्ताहिक और उसकी सहयोगी पत्रिका द मदरलैंड संविधान और लोकतंत्र की आवाज थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अयोध्या में श्री रामलला मंदिर में चढ़ावा चोरी की घटना की निंदा की है। संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि ये घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे पूरे समाज तथा भगवान राम के भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंची है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। कश्मीर घाटी में अमरनाथ यात्रा के पहले दिन कुल 12,168 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ जी गुफा में शिव की पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थाओं के बीच तीर्थयात्रियों ने गुफा के दर्शन किए। इससे पहले अधिकारियों ने तीर्थयात्रियों को सलाह जारी कर कहा था कि वे केवल अपनी पंजीकृत तिथियों पर ही यात्रा करें। इस बीच तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था बालतल और नुनवान बेस कैंप पहुंच चुका है और कल सुबह तड़के पवित्र गुफा की ओर रवाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजस्थान में जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी बालूतरा में लगभग 1,06,000 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री बालूतरा के पचपदरा में देश की पहली हरित क्षेत्र आधारित एकीकृत रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी जयपुर मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री गुजरात के सांणंद में भारत सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत सीजी सेमी के सेमीकंडक्टर असेंबली और परीक्षण संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। निर्वाचन आयोग ने आज 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न जिलों के मीडिया और संचार अधिकारियों का दूसरा सम्मेलन आयोजित किया। इसमें 260 से अधिक अधिकारी शामिल हुए। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग का हर निर्णय संविधान, चुनाव कानूनों और समय समय पर जारी लिखित निर्देशों के आधार पर पूरी पारदर्शिता के साथ लिया जाता है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 262 अंक बढ़कर

0: 77,764 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 95 अंक की बढ़त के साथ 24,271 दर्ज हुआ। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के कुछ और हिस्सों तथा मध्य प्रदेश के शेष भागों में आगे बढ़ गया। मौसम विभाग ने कल गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना और विदर्भ में अगले दो दिन तेज बारिश हो सकती है। अगले दो से तीन दिनों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आज भी बारिश हुई। हमारे मुंबई संवाददाता से और जानकारी।
1: आज महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिसमें तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और कोल्हापुर जिलों की नदियों में जलस्तर बढ़ गया है। आईएमडी के अनुसार कल से 7 जुलाई तक राज्य में बारिश और तेज होने की संभावना है। कई जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोंकण और नजदीक के घाट इलाकों में कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आंधी तूफान की भी संभावना है। आईएमडी ने मछुआरों को 7 जुलाई तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। इस बीच एहतियात के तौर पर एनडीआरएफ की 5वीं बटालियन ने महाराष्ट्र और गोवा के संवेदनशील जिलों में बचाव दल तैनात कर दिए हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: फ्रांस में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के दौरान पिछले सप्ताह मरने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। 22 से 28 जून के बीच लगभग 9,000 लोगों की मौत हुई है। ये पिछले सप्ताह की तुलना में 29% अधिक है। पेरिस में सबसे अधिक मौतें हुई। अस्पतालों में निर्जलीकरण, दिल का दौरा, गुर्दे की जटिलताओं और अन्य लू से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि देखी गई। कांगो में इबोला वायरस के इलाज के लिए दो संभावित दवाओं का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने बताया कि इस परीक्षण में पहले मरीज को शामिल कर लिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मौजूदा प्रकोप में अब तक 438 लोगों की मौत हो चुकी है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डे से होगा। राउंड ऑफ 32 का अंतिम मैच कल सुबह 7 बजे घाना और कोलंबिया के बीच खेला जाएगा। इससे पहले स्पेन, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने अंतिम 16 में प्रवेश किया। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से हराया। पुर्तगाल ने क्रोएशिया को 2-1 से, जबकि स्विट्जरलैंड ने अल्जीरिया को 2-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने कहा, सिंधु जल संधि अभी भी स्थगित। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की राह पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रक्षा खरीद परिषद ने युद्ध की तैयारी मजबूत करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए के रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। फ्रांस में पिछले सप्ताह रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के कारण लगभग 9,000 लोगों की मौत। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज राउंड ऑफ। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: guests in round of 32 match, Jessica dominated Spain's Boozers Maniero in a 6-1, 6-3 victory. In men's singles, third round of matches, world number one Jannik Sinner is currently facing US player Jensen Brooks-Bye, while Daniil Medvedev is taking on Jan Lennard Struff of Germany. In another, Arthur Rinconesh of France. With modest gains today, extending their rising streak for the points to close at 77,764. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government says Indus Waters Treaty remains suspended. Pakistan must renounce support to cross-border terrorism. India on track to achieve $1 trillion export target this year, says Commerce Minister Piyush Goyal. Prime Minister Narendra Modi to visit Indonesia, Australia and New Zealand on a six-day tour beginning Monday. Defence Acquisition Council enhanced combat readiness. Government to seek explanation from Meta on Instagram ads promoting child sexual abuse. France reports nearly 9,000 deaths during record-breaking heat wave last week. And in FIFA World Cup, Australia to take on Egypt in a round of 32 match at Arlington in US tonight. That is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। हुकूमत ने कहा है कि सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। पाकिस्तान को सरहद पार की दहशतगर्दी की हिमायत खत्म करना होगी। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस साल $1 खरब मालियत की बरामदात के हदफ को हासिल करने की राह पर गामजन है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोजा दौरा करेंगे। दिफाई साजो सामान की हसूलियाबी की कौंसिल ने जंगी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए 52,000 करोड़ रूपये मालियत की खरीदारी की तजावीज को मंजूरी दी है। हुकूमत ने एड्स से मुतालिक मेटा से वजाहत तलब की है। फ्रांस ने गुज़िश्ता हफ्ते रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्म लहर के दौरान तकरीबन 9,000 अमवात की खबर दी है। और फीफा आलमी कप में आज रात अमरीका के आर्लिंगटन में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला राउंड ऑफ 32 के एक मैच में मिस्र से होगा। अब खबरें तफसील से। सरकार ने एक बार फिर इस बात का इरादा किया है कि पाकिस्तान की जानिब से सरहद पार दहशतगर्दी की मुसलसल सरपरस्ती के सबब सिंध आबी मुआहिदा मुअत्तल रहेगा। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि सिंध आबी मुआहिदे पर भारत का मौकफ अटल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हमेशा के लिए और मोतबर तौर पर सरहद पार दहशतगर्दी की हिमायत तर्क कर देनी चाहिए। तीस्ता नदी के जाम बंदोबस्त और बहाली के मंसूबे पर जनाब जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में मंसूबों के लिए भारत की तरक्याती इमदाद बाहमी तौर पर मुत्तफिका रोडमैप पर मबनी है, जिसका बाकायदगी के साथ जायजा। और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत इस साल $1 ट्रिलियन की बरामदात के हदफ को हासिल करने की तरफ गामजन है। सालाना बरामदात की 15% बरामदात पहली सहमाही में ही दर्ज की जा चुकी है। आज नई दिल्ली में तिजारती बोर्ड की मीटिंग में खिताब करते हुए जनाब गोयल ने कहा कि इसके लिए अशिया की बरामदात को $1 बिलियन जबकि खिदमात की बरामदात को तकरीबन $421 बिलियन से तकरीबन $470 बिलियन तक बढ़ाने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा कि भारत की बरामदात से मुतालिक हिकमत अमली मजबूत ज्यादा जामे नुकता नजर पर मबनी है, जिसमें हर रियासत, जिला और तिजारती हल्का को यकसा तौर पर अहमियत हासिल है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी पीर के रोज से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर होंगे। आज शाम नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा में मशरकी उमूर के सेक्रेटरी रुदेंद्र टंडन ने बताया कि जनाब मोदी इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा करेंगे और उनकी असल मसरूफियात जकार्ता में होंगी। अलबत्ता जनाब मोदी वहां के एक सकाफती और तारीखी शहर योग्यकार्ता का दूसरे मरहले में वो इस महीने की

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है, एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची के कार्यक्रम। इस समय रात्रि के 10 बज रहे हैं और अब समय है कार्यक्रम महफिल का। गजलों के कार्यक्रम महफिल सुनने वाले तमाम श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। चलिए आज आपको सुनवाते हैं गुलाम अली के स्वर में चंद गजलें। तो चलिए गजलों का सिलसिला हम शुरू करते हैं इस गजल से।

श्रोताओं, इसी के साथ आज का महफिल कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने सुना गुलाम अली को, तो अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों में आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम सुरों के रंग। कार्यक्रम सुरों के रंग सुनने वाले सभी श्रोताओं को छवि का प्यार भरा नमस्कार। इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम पेश कर रहे हैं फिल्म मंजिल का ये गीत। किशोर कुमार की आवाज में राहुल देव वर्मन का संगीत है। सावन की बूंदे जब गिरती हैं तो हमारा तन मन खिल उठता है और किसी की याद भी आने लगती है ना। तो चलिए इस गीत का हम आनंद लेते हैं।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरु किरण। जब सामने कोई हो और दिल उसे देखकर धड़क जाए तो क्या बात है ना। चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म पड़ोसन का ये गीत किशोर कुमार की आवाज में।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं फिल्म नौकर का ये गीत, किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। मचरू सुल्तान के बोल हैं और अट्टी बर्मन का संगीत है। एक दूसरे से प्यार करना और एक दूसरे के नखरों को झेलना, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। तो चलिए इस गीत का आनंद लें।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों के रंग छवि के साथ। जीवन में धीरे धीरे प्यार को अगर हम बढ़ाते हैं और जीवन भर प्यार बना रहे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। चलिए आपको सुनवाते हैं फिल्म फूल और कांटे का ये गीत अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाजों में।

श्रोताओं, आकाशवाणी के चाईबासा केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरों की रंग छवि के साथ। जब किसी का मन किसी को चाहने लगे तो बस उसे ही पाने का मन करता है। आपको हम सुनवाने जा रहे हैं फिल्म मन का ये गीत, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। समीर के बोल हैं, संगीत है संजीव दर्शन का।

सुनाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है मासूम। अनूप खुशाल की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, संगीत है आर डी बर्मन का। जब हम किसी को चाहते हैं और वो बहुत दुखी होता है तो हमें भी बहुत दुख होता है, लेकिन जीवन इसी का नाम है। तो चलिए इस गीत का हम आनंद लेते हैं।

श्रोताओं, इन्हीं गीतों के साथ आज का कार्यक्रम सुरों के रंग अब यहीं संपन्न होता है। अब इस कार्यक्रम से छवि को इजाजत दीजिए, नमस्कार। श्रोताओं, ये आकाशवाणी का चाईबासा केंद्र है एफएम के 101.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब आपको हम लिए चलते हैं हमारे दिल्ली केंद्र, जहां से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया थोड़ी प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार सेवा के साथ मैं अपर्णा सिंह। भारत ने स्पष्ट किया है कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करेगा, तब तक सिंधु जल संधि स्थगित रहेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में ये जानकारी दी। तीस्ता नदी के समग्र प्रबंधन और पुनरुद्धार परियोजना पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश में भारत की विकास परियोजनाएं दोनों देशों के बीच तय सहमति के आधार पर चलती हैं।
1: India's development assistance.
2: बांग्लादेश में परियोजनाओं के लिए भारत की विकास सहायता आपसी सहमति से तय किए गए रोड मैप पर आधारित है। इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। तीस्ता नदी प्रोजेक्ट पर हमारे विचार पहले ही बांग्लादेश को बता दिए गए हैं। तीस्ता मुद्दे पर अपने समग्र दृष्टिकोण में हम इससे जुड़े सभी घटनाक्रमों को ध्यान में रखेंगे।
0: वेनेजुएला से भारत लाए गए एक भारतीय नागरिक के शव से अंग निकालने की खबरों पर उन्होंने कहा कि भारत ने इस मामले को वेनेजुएला सरकार के सामने उठाया है। भारत ने इस मामले की जल्द और निष्पक्ष जांच करने को कहा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत इस वर्ष $1 ट्रिलियन के निर्यात लक्ष्य को हासिल करने की ओर बढ़ रहा है। नई दिल्ली में व्यापार बोर्ड की बैठक में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में वार्षिक निर्यात लक्ष्य का लगभग 15% हासिल किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पहली तिमाही में वस्तु निर्यात में लगभग 15% और सेवा निर्यात में 10 से 11% की वृद्धि का अनुमान है। पंचायती राज मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में राज्यों के पंचायती राज मंत्रियों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार विमर्श किया गया। 16वें वित्त आयोग ने ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 4,35,236 करोड़ रुपए की अनुशंसा की। ये 15वें वित्त आयोग की तुलना में लगभग 84% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार से इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय में पूर्वी मामलों के

0: सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि प्रधानमंत्री 6 से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया में रहेंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने का अवसर होगी।
1: प्रधानमंत्री सांस्कृतिक और ऐतिहासिक शहर योग्यकार्ता का भी दौरा करेंगे। वे प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स जाएंगे, जहां भारत इंडोनेशिया के साथ काम करने की योजना बना रहा है। यह यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित है, इसलिए भारत और इंडोनेशिया यहां संरक्षण कार्य पर सहयोग करेंगे।
0: प्रधानमंत्री दूसरे चरण में 8 से 10 जुलाई तक ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी मेलबर्न में भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री 10 और 11 जुलाई को न्यूजीलैंड जाएंगे। सरकार बच्चों के यौन शोषण को बढ़ावा देने वाले इंस्टाग्राम विज्ञापनों पर मेटा से स्पष्टीकरण मांगेगी। सूत्रों ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को इस मामले में मेटा को तलब करने का निर्देश दिया है। इस बीच मंत्रालय के अधिकारियों ने व्हाट्सएप पर यूजर नेम फीचर शुरू किए जाने के नोटिस के बाद आज मेटा के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार ने बैट, बीएमएस, इपोक आईआईएन और लॉसिगी एप्स को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से हटाने का आदेश दिया है। यह कदम सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को देखते हुए उठाया गया है। इन ऐप्स का इस्तेमाल ई रिक्शा की बैटरी को ब्लूटूथ के जरिए दूर से बंद करने के लिए किया जा रहा था। मामले की जांच जारी है और सरकार इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज सुबह जम्मू कश्मीर के पहलगाम और बालताल मार्गों से शुरू हो गई है। पूरे देश से लाखों श्रद्धालु 57 दिनों की तीर्थ यात्रा के दौरान पवित्र अमरनाथ गुफा के दर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं दी हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में रात 11:30 बजे ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला मिस्र से होगा। एक अन्य मैच में तड़के 3:30 बजे अर्जेंटीना का मुकाबला केप वर्डी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।